0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप्स, योग को प्रतियोगिता न बनाएं। कहा जाता है कि जब हम प्रतियोगिता में अकेले ही शामिल हों, तो कैसी हार और कैसी जीत। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं, अपने आने वाले कल से करें। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से योगनी सप्ताह स्वागत करती है। आज शिविर का दूसरा दिन, जिसमें हमने पहले दिन में जो बताया यानी कि प्रवाह, प्रवाह के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, और आज शिविर का दूसरा दिन है संतुलन। संतुलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम यह मान लें और ये जान लें कि संतुलन है क्या। संतुलन का हमारे वास्तविक जीवन में, वास्तविक सामंजस्य में, वास्तविक और सामाजिक पारिवारिक सभी के संतुलन को बनाए रखने का नाम ही संतुलन है। कहते हैं मनुष्य के जीवन में यदि संतुलन बिगड़ जाए तो वह एक पशु की भांति हो जाता है। मानसिक स्थिति बहुत सारी ऐसी होती हैं कुछ लोगों की कि उसे संतुलन बिगड़ जाने का नाम भी दिया जाता है। आपने देखा होगा जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उन्हें यह कह कर के टाल दिया जाता है कि यह पागल की स्थिति में है, इसे वह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से, अपने शरीर से संतुलन बनाना जरूरी होता है। योग शिविर में जो कि 30 दिवसीय चल रही है, इसमें पहला दिन जो हमने किया वो था प्रवाह, और प्रवाह का मतलब बहना। हम इस शिविर में बह तो चुके ही हैं, अब हमें संतुलित रहना है, यानी कि हमें अपना संतुलन बना के रखना है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आज का प्राणायाम, जो कि संतुलन से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले आप अपनी मुद्रा में बैठें, किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर, कोई मैट या चद्दर पे। वातावरण को सुगंधित करने के लिए आप अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चेहरे पर, आपके मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि योग में यह कहा जाता है कि जो हम आंतरिक क्रियाओं को सोचते हैं वही हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर पर असर करती है। तो सबसे पहले हम योग करेंगे, और योग के माध्यम से सबसे पहले हम ध्यान योग में जाएंगे, क्योंकि ध्यान योग एक ऐसी मुद्रा है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती है। अभी आने वाला समय हमारा एक दूसरा प्राणायाम है, तो अगले प्राणायाम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में रखना है, उन्हें एकाग्रचित करना है, उन्हें स्थिर करना है, उन्हें संतुलित करना है। तो आइए हम एक मिनट का ध्यान करते हुए अपने प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए, बिना किसी विचार के, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, किसी भी विचार को अपने मन में न लाते हुए आंखों को बंद कर लें और मध्यम गति से सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, कुछ इस तरह।

अब हम ध्यान मुद्रा में धीरे धीरे जा रहे हैं, यानी कि हम अपने आने वाले अगले प्राणायाम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अपने मन और चित्त की सारी वृत्तियों को एकाग्र करते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना है, जैसे हमारे आसपास की वस्तुओं का, हमारे आसपास के जन जीवन का, हमारे आसपास के मनुष्यों का अपने ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने त्रिनेत्र की ओर ध्यान लगाते हुए एकाग्रचित अपने ईश्वर को याद करते हुए एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। इसी तरह श्वास की गति को आते जाते महसूस करते हुए मौन की अवस्था में जाते हुए हम साथ साथ में इस ध्यान योग को पूर्ण करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि जब हम सब लोग मिलकर के एक साथ योग प्राणायाम करते हैं तो मन की चित्तियों को, मन की सारी वृत्तियों को प्रसन्न रखना है। इसी तरह ध्यान का समय पूर्ण होते ही हम अपने हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपने आंखों पे, अपने मुखमंडल पे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और फिर हम तैयार हो चुके होंगे अपने प्राणायाम को करने के लिए। प्राणायाम पूर्ति पर एक बार ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए प्रसन्नचित होकर के अपनी आंखें खोलेंगे। तो आइए अब हम संतुलन के साथ में अपने प्राणायाम की ओर चलते हैं, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें हम पूर्ण रूप से तैयार हैं अपने प्राणायाम को करने के लिए। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले दोस्तों, हमें 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट ध्यान योग जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने आने वाले प्राणायाम के लिए स्वतः ही तैयार करती है। संतुलन, जैसा कि आज का हमारा विषय और हमारा साथ ही साथ में प्राणायाम करने का विषय है, हम जैसा कि आपको बता दें संतुलन का सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि संतुलन पर प्रणाली दबाव या तापमान में होने वाले दबाव या घटक के मूल की संख्या के अधीन है तो उस दिशा में शुद्ध अभिक्रियाय रुझान होता है और इसका बदलाव बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? औपचारिकता संतुलन और अनौपचारिकता संतुलन। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले संतुलन शब्द का अर्थ क्या है। संतुलन का अर्थ बहुत ही सरल है। संतुलन की स्थिति, वजन, मात्रा आदि का सामान वितरण संतुलन उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रति संतुलन, यानी कि अगर हम योग की स्थिति से जाने कि संतुलन का अर्थ क्या है तो हम 5 शक्ति संतुलन क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। शक्ति संतुलन वह अवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक में यह विश्वास बनाए रखने का एक सतत प्रयत्न है। यदि हम किसी पर अगर कोई आक्रमण का आरोप लगा देते हैं या हम यह कर देते हैं कि हमें ये चीज करनी है और यह चीज होनी ही चाहिए तो हम समझ जाते हैं कि वह अपने आप में संतुलित नहीं है। संतुलन को दूसरी भाषा में अगर हम देखें तो संतुलन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। संवेदी प्रणालियों में से एक है जो कि मस्तिष्क को आपके परिवेश के संबंध में संतुलन, गति और आपके सिर, शरीर के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपके आंतरिक कान में 3 लूप होते हैं जिन्हें अर्धवृत्ताकार नहरें कहा जाता है। संतुलन का अर्थ अगर हम जान जाएं कि संतुलन हमारे किसी भी प्राणायाम को एक साथ बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो संतुलन में सबसे पहला प्राणायाम आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम अगर हम संतुलित अवस्था में करते हैं तो हमें उसका समुचित लाभ मिलता है। तो आइए दोस्तों अब हम कपालभाति को संतुलित के आधार पर करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के संतुलन की स्थिति में संतुलन के साथ में कपालभाति प्राणायाम को करते हैं। सभी लोग पहले पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, अपने मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में एक संतुलित वातावरण और संतुलित व्यायाम करने की पूरी पूरी तैयारी कर लेते हैं। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों से चित मुद्रा बना लें। अब चित मुद्रा प्रारंभिक उंगली और अंगूठे के नीचे दबा करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और उसके बाद में आप एकाग्रचित होकर के ओम का उच्चारण 3 बार करते हुए अब हम शुरू करेंगे। एक गहरी श्वास अंदर की ओर लेते हुए झटके से श्वास को छोड़ेंगे कुछ इस तरह। लेकिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कपालभाति जब हम करते हैं तो क्या श्वास हमें नाक से लेनी है या मुंह से लेनी है? मुंह को हमेशा बंद करके रखना है जब हम कपालभाति करते हैं। मुंह से श्वास नहीं लेनी है, नाक से श्वास लेनी और छोड़नी है। पेट अपने आप ही अंदर बाहर होगा
और स्वतः ही श्वास हमारे नाक से बाहर निकलेगी। 5 और 10 मिनट तक ही अभ्यास करें और समय के साथ अभ्यास को बढ़ाते जाएं। इसी दौरान पेट को अंदर की ओर खींचना है और अपने आप से श्वास नाक से बाहर निकलेगी। कपालभाति 1 मिनट में कितनी बार किया जाना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। अपने दोनों घुटनों पर बैठ जाएं, यानी कि पैर को फोल्ड करके। अगर जो लोग पलथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है कि आप पैर को फोल्ड करके यानी कि घुटनों पर बैठ सकते हैं। गहरी लंबी श्वास लें और झटके से श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा कुछ मिनट तक लगातार करते रहें और एक बार में 35 से लेकर 100 बार आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है। कपालभाति के करने के बाद में आपको कितनी देर बाद पानी पीना है। कोई भी योग हो दोस्तों, आपको सारे योग प्राणायामों को करने के बाद में कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। पेट की चर्बी कम करने के लिए यह संतुलित कपालभाति बहुत ही आवश्यक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कपालभाति संतुलित कपालभाति क्यों है। कपालभाति प्राणायाम संतुलित कपालभाति प्राणायाम इसलिए है क्योंकि यह पेट को संतुलित कर देता है। कपालभाति मात्र ही एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमें पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है उसे संतुलित दशा में ला करके हमें सारी परेशानियों से निदान दिलाता है। श्वास लेने की अलग अलग गति होती है, लेकिन वजन घटाने के लिए कपालभाति को मध्यम गति से श्वास लेते हुए ही करना चाहिए। यह वजन घटाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आपको श्वास यानी कि सांस बाहर छोड़ते रहने थे और इस प्राणायाम के दौरान आपका पेट खाली होना चाहिए। 1 से 2 हफ्तों तक 15 से 20 मिनट तक रोजाना कपालभाति करने पर वजन आपका घट सकता है, इसलिए रोज कपालभाति ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है यदि आप इसे संतुलित स्थान और संतुलित आवास और संतुलित इरादे से करें। आइए अब मैं आपको बता दूं कि कपालभाति करने की फायदे क्या हैं। कपालभाति को करने से बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी विधि एक बार पुनः बताने जा रहे हैं। किसी भी योग मैट पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें, हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहेंगी। गहरी श्वास को भीतर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए पेट को खींचें। नाभि को रीढ़ की हड्डी तक खींचें और उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लगा सकते हैं। आइए अब कपालभाति के फायदे। कपालभाति को करने से बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि हम अगर गिनाने बैठ जाएंगे तो बहुत ही समय चला जाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण और जो कि सभी के लिए बहुत सुचारू है वह पाचन क्रिया। संतुलित कपालभाति को करने से जो कि इसके फायदे होते हैं वह आपकी पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। नित सवेरे उठ करके यदि हम प्राणायाम योग से जुड़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर जो होता है वह हमारे शारीरिक और मानसिक बौद्धिक दोनों की स्थितियों में पड़ता है। तो सबसे पहले पाचन क्रिया, पाचन क्रिया पे कपालभाति का, संतुलित कपालभाति का जो असर होता है वह इस तरह होता है कि आपके पूरे जीवन को संतुलन में बना देता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के शिविर में बस इतना ही। करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है।
आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियाँ जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाश में वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाश में वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाश में वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आएं, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे, पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हो या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और, जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाश में वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप पहले से अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और नित सवेरे आकर के योगशाला में योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम उचित होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे उस रोग के बारे में और साथ में जानकारी देंगे प्राणायाम के बारे में, यानी कि आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादा टेंशन करना और काम के प्रेशर को लेकर के जब काम पूरा नहीं होना या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के लोगों को चिंताएं घेरे रहती हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो अमूमन ज्यादा सा बढ़ गया है। योग का अभ्यास करने से ऐसे खतरों में बहुत ही जल्दी से सुविधाएं मिलती हैं हमें उन्हें ठीक करने की। हृदय रोग का कारण बनने वाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और उक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे हृदय गति कम करने में मदद मिल सकती है। योग करने वाले लोगों को में अन्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ये सभी को पता है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं कि हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उन्हें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। दाहिने हाथ में दर्द होना, सीने में दर्द होना। अभी हाल में ही हमने एक डॉक्टर से सलाह करी थी, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स की सलाह में, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके चेस्ट पेन हो रहा है, यानी अगर चलते फिरते चेस्ट पेन हो रहा है, तो यह कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मसल्स की दिक्कत हो सकती है, कुछ हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आप कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन है, तो ये बिल्कुल आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम अगर हमें अभी से ही शुरू कर देने हैं तो यह खतरनाक से खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती है। जो कि मुख्य आसन है भुजंगासन, गौमुखासन, मलासन, ताड़ासन और ब्रिज पोज। मैं आपको बता दूं कि भुजंगासन के बारे

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9976 9216 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो 11 89.6 FM गुंडा।

घर की धड़कना। इस सॉन्ग को सुनते वापस से आते और आने के बाद मुलाकात करते संडे स्पेशल शो में आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गुंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का आज के संडे वाले शो के ऑफकोर्स थॉट ऑफ द डे से रूबरू कराने का, क्योंकि आज है संडे और आज तारीख भी जो है वो देखते ही देखते अक्टूबर की 4 तारीख आ गई है, यानी 4th of October 2026। और मैं हूँ आपके साथ आपके मॉर्निंग शो में मॉर्निंग वाले चौक आरजे अदनान। सो क्या होने वाला आज का संडे स्पेशल थॉट, कैन यू गेस कुछ हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? हो सकता है तो कुछ स्पेशल हो सकता है, या क्या क्या बताने वाला आज का थॉट? चलिए, इतना ज़्यादा मेंटली एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं कराएंगे, हालांकि कर सकते भाई, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, चाहे आप कर रहे हो मेंटली और चाहे कर रहे हो फिजिकली। हालांकि मेंटली सच कहे तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आराम से शुरुआत ज़्यादा अच्छी होती है ना, मैं ज़्यादातर तो सही कहता हूँ। तो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं आज के मॉर्निंग थॉट की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग वाला थॉट क्या है गुड मॉर्निंग गुंडा पर विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। भाई यही तो है गुंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening Good Morning Gunda with your favorite Aajya Khan.

सो संडे का दिन मतलब ये है कि वक्त थोड़ा सा मिल जाता है एक्स्ट्रा वाला, या यूं कहते हैं कि इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त जो है वो ये दिन संडे दे देता है, और ये दिन हमारे अपनों के लिए भी कहीं ना कहीं हो जाता है। सो आज जो थॉट आ रहा है वो दरअसल अपनों से जुड़ा हुआ आ रहा है। अपनों से जुड़ा हुआ क्या थॉट है? दरअसल थॉट कहता है कि अगर हमारा मकसद एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं है तो हम किस लिए जीते हैं। अगर हमारा मकसद एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं है तो हम किस लिए जीते हैं। बहुत प्यारी सी बात कही है इस थॉट ऑफ द डे ने, और मुझे लगता है संडे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट सी बात है कि अगर हमारा मकसद एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं है तो हम किस लिए जीते हैं। और सच में ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमने फलाने के लिए ये किया, धमाके के लिए किया। शायद मुझे लगता है कि ज़िंदगी में यही है ही है, अपने आसपास के एटलीस्ट वो लोग जो आपको अपने लगते हैं या कोई भी है। मुझे लगता है कि अगर किसी के लिए कुछ भी हम चलते फिरते भी कर देते हैं और हो सकता है मुमकिन, तो क्यों ना किया जाए। कहीं ना कहीं शायद हमारी लाइफ का मकसद भी यही है ना। सोचिए हर जो इस दुनिया पर सर्वाइव करने वाली जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो सब कोई अपने झुंड को, अपने चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि जानवर में, किसी भी जानवर का हम एग्जांपल ले लें, पूरे ग्रुप के साथ चलते हैं, एक सिस्टम के साथ चलते हैं, लेकिन हम इंसानों में बड़े इख्तलाफात होते हैं। हम पता नहीं क्या क्या चाहने लग जाते हैं। हम कहते भी हैं सबसे ज़्यादा समझदार हैं, हम उस पर गर्व भी करते हैं, और हरकतें भी ऐसी हो जाती हैं हमारी कि कहते हैं जानवर इससे बेहतर। तो शायद ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम लाइफ में एक दूसरे की लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जीने का मकसद ये भी पूरा हो रहा है। क्योंकि हर वक्त तो आप 24 घंटा बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आप मार्केट में निकले कितने सारे लोग आपको मिल जाते हैं, आपके वर्किंग प्लेस पर कितने सारे लोग होते हैं, आप कहीं जब घूमने जाते हैं तो कितने सारे लोग होते हैं, जब फैमिली के अंदर आते हैं तो फैमिली में भी कुछ सदस्य आपके हमेशा होते ही होते हैं। यानी जब से आँख खुलती है और जब तक हम सोने जाते हैं उस बीच में न जाने कितने सारे लोगों से मिलते हैं, और हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, हर कोई अपने काम में बिजी होता है। और शायद थोड़ा सा अगर हम उसकी कोई हेल्प कर देते हैं या उसकी लाइफ को आसान बना देते हैं थोड़ा सा भी कुछ, तो सामने वाला शख्स कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। और अगर हमारे साथ ऐसी कोई करता है तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमको लगता है वाह यार, मतलब मज़ा आ गया, अच्छा लगा यार, तुमने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया, सच में। तो ये वाली फीलिंग जो है वो आ जाती है। तो मुझे लगता है कि लाइफ को आसान बनाना ही होगा, क्योंकि यही हमारी लाइफ के मकसद में से एक है। नहीं तो फिर क्या मतलब है, हम आए हैं और इस समाज के बीच में हैं, लोगों के साथ में हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है, जो भी हमारे परसेप्शन बने हैं, जो भी हमारे ओपिनियन बने हैं, जो भी हमारा एम्बिशन बना है, ये दुनिया के बीच में ही तो रहते हुए सीखा है ना, लेते हुए ना। अब दुनिया में बिल्कुल अकेले पैदा होते तो ना पल पोस पाते, ना बड़े हो पाते, और ना कोई ऐसे विचार आते, ना हम सोच पाते, और ना हम इंडिपेंडेंट हो पाते। तो शायद मुझे लगता है कि एक दूसरे की लाइफ को अगर आसान बनाने लग जाए सच में हम, तो सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए कि कोई अनजान शख्स भी जा रहा है, आपको पता है कि अगर एक बार आप हेल्प मांग लेंगे तो मिल जाएगी। तो शायद उस दुनिया की बात हम सोचते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जानवर तो आज तक ये चीज़ फॉलो करते आए हैं, बस हम ही लोगों ने ना जाने क्यों इससे दूरी बना ली है। पर जो लोग करते हैं और जिनके साथ आसपास का ऐसा समाज होता है, ऐसे लोग होते हैं कि भाई कोई भी बाहर है और एक दूसरे की हेल्प करता है, तो सच में वो समाज बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि चलिए हम सबके लिए नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने वर्किंग प्लेस के लिए, या जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हम होते हैं और हम कुछ कर सकते हैं, किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो शायद वो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती कि भाई रिटर्न में भी यही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको वाकई वापस से ऐसा किया जाता है, रिट्रीट, यानी उसी तरह अच्छे अंदाज में। लेकिन ये हमें शायद अपने लिए करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये समझ डेवलप अगर होगी कि सच में हमारी लाइफ के मकसद में से एक ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को जितना हो सके उतना आसान बना सकते हैं,
थोड़ी सी हेल्प करके, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके और थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करके उनके काम को लेकर के। देखिए दो चीज़ें होती हैं, किसी को हम खींचते हैं तो दुश्मनी ले लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक तो लॉस होने के चांसेस होते हैं, दूसरा होता है कि हम सारा वक्त फिर है कि दूसरे के लिए टांग खिंचाई करने का सोच रहे होते हैं। हमारा जो सारा एफर्ट होता है, जो हमारी सोच होती है, वो ध्वस्त कर देते हैं, हम खुद को मार देते हैं और एक कैसे हो जाते हैं, एक ऐसे खुकार की तरह जिसका काम है बस नुकसान करना। लेकिन जब हम शायद अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं और अपने लिए सोचते हुए उन लोगों के लिए जिनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सोचते हुए शायद हम आगे बहुत बेहतरी से आगे बढ़ पाते हैं और चीज़ें बेहतर हो पाती है। क्योंकि कोई भी शख्स जो अपने लिए करता है वो किसी के लिए बुरा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि टाइम की क्या वैल्यू है और उसके अपने जो आसपास है वो वक्त उस पर जा सकता है, अपने सपनों पर जा सकता है, कुछ नया करने पर जा सकता है, कुछ नया सीखने पर जा सकता है। सो बस शायद इन्हीं बातों को, हमको चंद बातों को ध्यान में रखा जाए तो चीज़ें समझ में बहुत क्लैरिटी के साथ आ जाती है, राइट। अब फिलहाल संडे स्पेशल शो में आप कैसे समझते हैं इस बात को और आपका क्या है मानना, ये ज़रूर आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि आज है संडे और आज तारीख भी है 4 अक्टूबर, यानी 2 का 2 हो गया, 4 हो गया। सो 2 अक्टूबर तो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स हम लोग के जहन में बैठी हुई है ये तारीख बचपन से, और आज उसकी दोगुनी तारीख है 4 अक्टूबर, लेकिन दिन जो है वो स्पेशल है, संडे स्पेशल है। तो चलिए बहुत सारी बातें आज होने वाली है, और साथ ही साथ अगर आपने सुन लिया है आज का थॉट ऑफ द डे तो आप बता सकते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा आपको, क्योंकि आज है संडे। और अगर हमारा मकसद ज़िंदगी का लोगों को, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना हो गया तो शायद हमको लगेगा कि हम जीते हैं इसलिए भी, जी हाँ। सो ये बड़ा खूबसूरत सा थॉट था और मुझे लगता है कि लाइफ को आसान बनाना ही होगा, क्योंकि तभी हमको असली मज़ा आएगा लोगों की लाइफ को आसान बनाते हुए भी, और अगर कोई हमारे लिए इस तरह कर देगा तो शायद उसको फील करते हुए भी। स्टे ट्यून्ड।

तो मन तो हमेशा बुद्धू सा होता है, और मन तो सच में बुद्धू ही रहना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, परफेक्शन के चक्कर में हर चीज़ को देखने लग जाते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। दरअसल ना नेचर ऐसा है, नेचर भी अगर पेड़ बनाता है तो एकदम सीध से नहीं बनाता है, एकदम नक्काशी नहीं करता है। सो नेचर भी देखिए किस तरह से अधूरापन रखता है, और वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि कोई शेप डिफाइंड होता ही नहीं है, और यही शायद एक अधूरेपन की भी बात सामने आती है। और कोई भी परफेक्ट नहीं है नेचर में, ये भी बात सामने आती है। चाहे किसी भी शख्स में ले लिए, कोई अपने कलर को लेकर है, कोई अपने हाइट को लेकर के, कोई मोटापे को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के, कोई पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट होता है जिसको लेकर के इंसान परेशान रहता है। तो भाई कहीं ना कहीं है नो वन इज़ परफेक्ट वाली जो बात आती है वो बिल्कुल सच है, और यही सबसे बड़ी विविधता है, और इसीलिए शायद जीवन का मज़ा है। ये बात तो सच है। तो चलिए एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आज है संडे स्पेशल, और मुझे लगता है कि भाई थॉट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद तो आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। मतलब इतनी बेहतरीन बात है, इतनी छोटी सी बात है, अगर उसको रियलाइज़ कर लेते हैं तो शायद हमको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि यार ज़िंदगी का मकसद फिर क्या है। मतलब कब तक कोई जो है एक दूसरे के लिए छोड़ करके सिर्फ अपनी अपनी देखते हुए हम पूरा आसपास का माहौल ऐसा बना देते हैं जिसमें कोई हेल्प ही नहीं करता है। हम भी ये रटते रहते हैं, हम भी दूसरे के साथ ये कर देते हैं। होता है तो हम कहते हैं हाँ मेरे साथ किया था क्या, अरे ये हुआ था क्या, छोड़ देता है। और उसके बाद फिर पूरा का पूरा ऐसा जो है वो एक वाइब वहाँ आसपास पूरे जहाँ में क्रिएट हो जाती है। बट ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी बना सकती है, थोड़ा सा भी कोई अगर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं या किसी को भी ऐसा फील करा रहे हैं तो लिटरली ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो फिलहाल जो है वो अरविंद आ गए हैं और लिखा है राधे राधे सभी को, आपको भी राधे राधे। और इसके अलावा आशु मिश्र जी हैं फ्रॉम लखनऊ, आप लिखती हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। साथ ही आपने लिखा है कि ज़िंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और आखिर में सब कुछ छोड़ कर चले जाते हैं। वाह क्या बात है। और आपने लिखा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बिल्कुल सही, अगर मैं आपकी बात से भी रिलेट करूँ तो आखिर में तो सब कुछ छूट ही जाता है, तो बस जो बीच का सफ़र है जब हम लड़ रहे हैं उसी में हम जो है प्यार से किसी के लिए कर भी सकते हैं, और यही मेमोरी हमारी लाइफ की होती है और यही हमारी अचीवमेंट लाइफ की होती है। एंड इसके बाद जो है आशु जी लिखती हैं देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। वाओ क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने छोटी सी लाइन में लेकिन बहुत अच्छा। एंड सविता दुबे जी हैं सुप्रभात सभी को, आपको भी। और लिखा है सुविचार नहीं सुन पाए सर जी, कोई बात नहीं। दरअसल आज का सुविचार सविता जी ये था कि अगर हमारा मकसद एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं है तो आखिर हम किस लिए जीते हैं। ये था आज का थॉट ऑफ द डे, जो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को इजी नहीं बना रहे हैं, उसके जीवन को आसान नहीं कर रहे हैं, तो आखिर हम किस लिए जीते हैं। मतलब जानवर भी अपने झुंड में अपने ही जानवर के लोगों के लिए सब कुछ करता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। सो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इन तो इंसान है, हम तो खुद को मानते हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठता बताने में दरअसल नहीं होती है, चीज़ों के एक्शन में हमेशा होती है। सो एक्शन में एक्चुअल में क्या है वो आपको डिफाइन करता है, क्योंकि बुरी चीज़ें या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, इंसान खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, इतना बुरा नहीं सोचना है, बस शायद थोड़ी सी भी अगर वैल्यू ऐड हो पा रही किसी के लिए लाइफ में हमारी वजह से तो ज़रूर उसके लिए कोशिश कर देना है। आई होप कि अब आप तक ये थॉट पहुंच गया होगा, और जो इस वक्त फौरन जुड़े हैं उन तक भी ये थॉट ज़रूर पहुंच गया होगा। सो आइए आपके मैसेजेस के बाद आपको हम बता दें कि भाई ये जो मैसेजेस आते हैं दरअसल ये चैट बॉक्स पर आते हैं, उन लोगों के होते हैं जो सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM को उसकी एप्लीकेशन से। सो अगर आप भी एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। करना इतना है कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको जाना है और टाइप करना है RADIO रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली GYANASTHALI स्पेस 89.6 स्पेस FM। हालांकि इससे बहुत पहले आपको
लाल और काले रंग के आइकन में उसका एप्लीकेशन नज़र आएगा बाई एटीसी लैब्स। आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है और उसके बाद जुड़ जाना है अपने एप्लीकेशन से, क्योंकि इस पे जो कुछ आप लिखेंगे चैट बॉक्स पर आकर वो हम तक सीधे पहुंचता है। इसके अलावा आप हमको सुनते हैं रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ आप हमको ट्यून करते हैं फ्रिक्वेंसी से। सो आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। एंड पूर्णिमा आ गई है, लिखा संडे वाला गुड मॉर्निंग आर जे अदनान सर, कैसे आप? अवे गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे उम्मीद है कि पूर्णिमा आप भी ज़रूर अच्छी होंगी और आपने भी आज का थॉट ज़रूर सुन लिया होगा, अगर आप भी रोटी बनाने में मशगूल ना रही हो तो। वैसे रोटी बनाते बनाते तो सुना जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। चलिए फिलहाल आपको ले चलते एक ज़बरदस्त से सॉन्ग की तरफ जो कि आपको बहुत बेहतरीन लगने वाला है, काफ़ी अच्छी सी वाइब देने वाला है संडे मॉर्निंग की। सो यस, एंजॉय करते हैं एक साथ और वापस से आते आने के बाद पूरा पिटारा है जो आपके लिए है संडे स्पेशल का।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: सो अगर आप भी परेशान हैं और आपसे मैं कहूं कि भाई कुछ स्किल्स कोर्स अगर आप भी करिए, तो आपके जहन में पहला सवाल आएगा, ठीक है स्किल कोर्स तो सही बताया, लेकिन इतना महंगा कौन करने वाला, हज़ारों रुपए कौन खर्च करने वाला है, ये तो आप सोचने वाले ना। सो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए आपको ईजी वो तरीके जिसको आप या तो फ्री में कर सकते हैं या तो बहुत ही कम रुपीज़ में आप सीख सकते हैं और एक नया हुनर ले सकते हैं, इवन आपके पास अर्निंग का और भी ज़रिया बन सकता है। और स्पेशली ये ऐसी चीज़ें हैं अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं हैं, यानी गोंडा हैं, बहराइच हैं, बलरामपुर है, श्रावस्ती हैं, बाराबंकी हैं, कहीं पे भी हैं, आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और इनसे अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आज के वक्त में हम यही सोचते हैं कि भाई ठीक है हम जो काम कर रहे हैं वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा कुछ और टाइम है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। और साथ ही साथ कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, तो कोई अपने इन फ्यूचर वाले सपने को पूरा करने के लिए कुछ सेविंग्स कर रहा होता है, कोई बचत कर रहा होता है, और जहन में आता है कि क्या ऐसी चीज़ें किया जाए जिससे कि हमारे लिए मेरी लाइफ इजी हो जाए, हम स्किल्ड हो जाए, चीज़ों को सीख ले और उसके बाद ये हमारी व्यवहारिक ज़िंदगी में काम आए। तो चलिए कुछ ऐसे ही आपको कोर्सेज के बारे में हम बताने वाले हैं, कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिनसे आप इजीली बहुत इजी चीज़ें सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे, और साथ ही साथ आपके अंदर एक नई स्किल भी डिवेलप हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा काम का है उन लोगों के लिए जो अभी स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं इस तरह से पार्ट टाइम से और कुछ नया सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल अभी सोच रहे हैं कि अब कुछ किया जाए लाइफ में, है ना। तो हर किसी के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर उनके पास वक्त है, उनको लगता है कुछ नई चीज़ों को ट्राई किया जा सकता है, उनसे अर्न भी किया जा सकता है, तो उनके लिए भी है। सो चलिए अब हम बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से कोर्सेज हैं जिनसे आप नई स्किल्स भी सीख सकते हैं और एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

अच्छी बात है कि गुड मॉर्निंग गोंडा बहुत सारे यंगस्टर्स यूथ सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे युवा हैं जो जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, इवन खेत में भी काम कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और चाहे आप किचन में काम कर रहे हो और वहाँ भी सुन रहे हो, या आप कहीं जॉब पे गई हो और अपना काम कर रही हो आप वहाँ भी सुन रही हैं। सो ये सभी लोग सुनते हैं और सभी के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि कुछ ऐसे हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि फ्री भी है और बहुत इजीली आप जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज इससे आने वाला है। और अच्छी बात है, इसके लिए आपको कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ, कोई बड़े शहर की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर सीख सकते हैं और यहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वक्त भी इसमें नहीं लगने वाला है। हाँ, आपके बढ़ते काम को वो आप खुद तय कर सकते हैं कि भाई अब इसको ज़्यादा एक्सपेंशन देना है या कम में ही आपका काम चलता जा रहा है, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। हालांकि ये जानकारी आप डायरेक्ट अपने लिए तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, आप उन तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले बहुत इजी प्लेटफॉर्म होता है और ऑफ कोर्स हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स सुनने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और यही इस्तेमाल अगर हम कुछ स्किल्स सीखने के लिए करें तो बेस्ट प्लेटफॉर्म बन करके आता है, वो है यूट्यूब। जी हाँ, सो यूट्यूब नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सभी को पता है, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जिसको यूट्यूब नाम ही नहीं पता होगा। सो यूट्यूब पे हमको पता है कि सर्च करके सीखना जो है वो बहुत आसान बना दिया है इस यूट्यूब ने। सो अब बात आती है कि क्या सीख सकते हैं। सो अगर हम आज के स्टूडेंट्स की बात करें, आज के जेन ज़ी की बात करें, जेन अल्फा की बात करें, तो उनका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जो उनकी दिलचस्पी है, वो एडिटिंग में भी आती है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो हर तरफ वीडियोज़ की भरमार है, कॉन्टेंट्स की भरमार है। ऐसे ही वक्त में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो अपनी वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं और उसके ज़रिए अपना प्रचार प्रसार करवाते भी हैं और करवाना भी चाह रहे हैं, बशर्ते उनको ज़रूरत होती है एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे की, एक ऐसे शख्स की जो उसको अच्छे से संभाल सके। सो ऐसे वक्त में अगर आपके एडिटिंग आती है वीडियो की तो बहुत बेहतर होगा, आप उससे उनकी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, उससे उनका भी काम चलेगा और अच्छी बात है कि आपकी अलग से अर्निंग होगी। सो मोबाइल से वीडियो एडिटिंग होती है, ये पूरी के पूरे कोर्सेज होते हैं जो कि यूट्यूब पे होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके अलावा कैनवा से पोस्टर बनाना भी, आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं, कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे पोस्टर मेकिंग होती है। अब आपको पता है कि भाई गोंडा में कितनी जगह पोस्टर्स लगते हैं, कोई चुनाव आता है तो पोस्टर बनता है, कोई नया ब्रांड आता है तो पोस्टर बनता है, कोई इवेंट होने वाला, अभी इतने अभी गरबा होने वाला है, कितने सारे गरबा को लेकर के कितने ऑर्गेनाइजर्स जो है वो अपने को प्रमोट कर रहे हैं, अपने इवेंट को बता रहे हैं, पोस्टर्स कई जगह लग रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कितने सारे हम पोस्टर्स देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है आए दिन रोज़ रोज़ गोंडा में। सो पोस्टर बनता है कैनवा से, CANVA कैनवा, इससे भी आप इस पर पूरा पोस्टर मेकिंग का कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये भी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। इसके बाद एक होता है थंबनेल डिज़ाइन। थंबनेल वो होता है जो हमको वीडियो स्क्रॉल करने पर सबसे पहला चेहरा वीडियो का दिखता है, जिसको देख करके हम टैप करते हैं, जो कि हमको दिलचस्प लगता है या जो हमारा इंटरेस्ट गेन करता है। तो थंबनेल डिज़ाइन भी हम YouTube से फ्री में सीख जाते हैं और ये भी एक बहुत अच्छी स्किल होती है, क्योंकि अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं या किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं तो थंबनेल डिज़ाइन भी आपको आना चाहिए, और थंबनेल डिज़ाइन करना भी यूट्यूब पर फ्री में आप सीख सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग, ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि भाई लोगों को फ़ोटो खिंचाने का कितना ज़्यादा शौक़ है और फ़ोटोज़ से बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग होती है, स्पेशली अगर हम पर्सन ब्रांडिंग की बात करें तो उसमें फ़ोटोज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। सो फ़ोटो की एडिटिंग भी आप यूट्यूब पे फ्री में ही सीख जाते हैं। इसके अलावा आप अगर टेक्निकल थोड़ा जाना चाहते हैं तो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग जैसा एक स्कोप होता है, या फिर सिलाई कढ़ाई जैसा भी स्कोप होता है, फैशन डिज़ाइनिंग का भी बहुत सारा मतलब लोगों को इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है कि उनकी ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, इसको वो कर सकते हैं इजीली, आराम से मैनेज कर सकते हैं अपने बाकी टाइम से अलग हट करके। सो ये सारी चीज़ें आपको YouTube पे सर्च करके सीखने को मिल जाने वाली हैं। और असरदार क्यों है YouTube?
क्योंकि ये आपको हिंदी और लोकल में बोल करके भी इसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, टाइप आप नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। आप माइक ऑन करेंगे और आपको जो कहना है आप कहेंगे, और वो YouTube सजेशन देख करके आपको फौरन वो कंटेंट अवेलेबल करा देगा। और इसको देख करके आप फौरन का फौरन सीखना शुरू भी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी आप उसी वक्त से चाहे तो शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, PMKVY। जी हाँ, सो इसमें क्या क्या होता है, इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ब्यूटीशियन है, सिलाई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, रिटेल सेल्स है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। सो ये क्यों सही रहता आपके लिए, क्योंकि ये आपके ज़िले में, आपके ही ब्लॉक में ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पे आप सीखते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करके, यानी बाकायदा आपके लिए मेंटर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, और कहीं ना कहीं इसके बाद आपको जॉब फेयर में भी बैठने का मौका मिल जाता है। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो साथ ही साथ 1 से 2 घंटे का ये कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कर सकते हैं और कुछ टेक्निकल सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। इससे भी सीख करके आप अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को जान सकते हैं। इसके बाद आता है स्किल इंडिया डिजिटल ऐप। इस ऐप के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। जी हाँ, क्योंकि इस ब्रेक के लिए जाएंगे और वापस से जब आएंगे तो आने के बाद आपको हम बताने वाले हैं, जिसका हमने जिक्र किया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब ऐप। आखिर ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, और इसके बारे में आपको बताने के बाद शायद आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस ऐप के ज़रिए उसका इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सीखना। और हम तो जाहिर है यही चाहते हैं कि भाई आप जो कुछ भी चाह रहे हैं उसमें अगर हम कहीं भी वैल्यू ऐड कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अच्छी बात ये है कि भाई कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं कि हर शो में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिले। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब ये नियत है तो ज़रूर नया कुछ ले कर भी जाना है, और ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ों को जो कि आपसे जुड़ी हुई होगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए काम की होगी, ऐसी चीज़ों को हम हमेशा से लाने की कोशिश करते रहेंगे और ऐसी चीज़ें आपके पास हमेशा आती रहेंगी। फ़िलहाल अब चलते हैं ऑफकोर्स अगले सॉन्ग की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि आखिर ये प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन वाला क्या है और इस पर आप क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं

0: जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी हाँ जी, इस गाने को भी ज़रूर सुन लेंगे। लेकिन आपको नाम याद है हमने क्या बताया था अभी जाने से पहले, जिस ऐप के बारे में हम बताने वाले थे? ओके, आपको याद है, स्किल इंडिया डिजिटल हब। जी हाँ, और साथ ही साथ एक ऐसे ऐप के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिससे आप बहुत गेम में खेलते खेलते अगर चाहते हैं लैंग्वेज सीखना, तो आपकी लैंग्वेज सीखने के लिए डुओलिंगो जो है ये ऐप बहुत बेहतरीन है। हिंदी टू इंग्लिश में आप ऑफ कोर्स खेल खेल में लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपनी एक स्किल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो भाई सुनते रहिए, फिलहाल इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर हो रहे हैं दोनों ऐप को लेकर के आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो 11.6 FM पर।

0: आई हो भैया, ये थोड़ा सा आग हम शांत करके अब ऑलराइट वैसे पूरी तरह से वाइब सेट हो गई ये संडे मॉर्निंग वाली इस गाने के बाद, जो मुझे लगता है वो बीपी का थोड़ा सा कुछ नंबर ऊपर जरूर गया होगा। सो चलिए भाई, जिस वादे के साथ गए थे उसके साथ वापस से आ गए। आपको स्किल इंडिया डिजिटल हब और डुओलिंगो के बारे में बताने वाले हैं, और ये दोनों ही एप्लीकेशन आपके लिए कमाल के होने वाले हैं। सुनिए तो जनाब।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई ये स्किल इंडिया डिजिटल हब आपके काम का क्या है, तो चलिए इसकी जो खासियत है वो हम ज़रा बता देते हैं, फिर आप ख़ुद तय करिएगा कि ये आपके काम का है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि 100% मुफ्त है और सेफ़ है, यानी इसमें किसी भी कोर्स या रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी है, भोजपुरी है, बंगाली है, तमिल है, इस तरह की कई जो है हिंदी भाषाओं में इसके वीडियो जो है अवेलेबल हैं, यानी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी वीडियोस अवेलेबल हैं इस स्किल इंडिया डिजिटल हब एप्लीकेशन पर। तीसरी बात ये है कि डिजिटल सरकारी सर्टिफिकेट भी इसमें होता है। सो पूरा अगर आप कोर्स कर लेते हैं, सो ऑनलाइन छोटा सा टेस्ट एक होगा, जिसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे रिज्यूमे में आप लगा भी सकते हैं और उसको आपके रिज्यूमे का वेटेज जो है उसका वज़न बढ़ा देगा ये सर्टिफिकेट। इसके अलावा जॉब फेयर लगता ही है, इसकी सीधी जानकारी आप तक आती है। सो ऐप के अंदर ही आपको आपके ज़िले या आसपास लगने वाले जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट रोज़गार मिले हैं उसकी जानकारी सीधे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। सो ये इस एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा होने वाला है स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में। अब सीख क्या क्या सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि इस एप्लीकेशन से हम सीख क्या सकते हैं, इसमें क्या क्या है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके जहन में, जिसका जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। सो इसमें जो है बेसिक कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग, और आपको पता है कि भैया कितनी सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज देनी ही होती है और हिंदी टाइपिंग का काम होता है। सो माउस पकड़ने से लेकर के एमएस वर्ड और एक्सेल में बिल बनाना और मोबाइल कंप्यूटर में तेज़ी से हिंदी टाइपिंग करना, ये सब सीख सकते हैं आप किसमें, स्किल इंडिया डिजिटल हब एप्लीकेशन में, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो है रिटेल सेल्स एसोसिएट्स हैं, यानी कस्टमर से कैसे बात करना है, सामान का हिसाब किताब कैसे रखना है, दुकान का सामान सही से कैसे सजाना है, इसकी भी आपको जानकारी इसमें मिल जाती है। इसके अलावा कस्टमर केयर और टेलीकॉलर, यानी फ़ोन पर जो कस्टमर्स है उनसे प्रोफेशनल तरीके से कैसे बात करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सुनना है और उसका सल्यूशन कैसे देना है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट और CSC का काम, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, UPI QR कोड से पेमेंट लेना और जन सेवा केंद्र के लिए जो काम होता है वो भी इस पे आप सीख सकते हैं। अब आपको बताया CSC सेंटर, अगर आप एरिया में अपने मोहल्ले में निकलते होंगे तो कम से कम एक तो दिख ही जाता होगा। ऐसे गोंडा में न जाने कितने CSC सेंटर्स हैं जिस पर ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का भी काम होता है। फॉर्म भरवाने का हम लोग 1,000, 1,500, 2,000 रुपए तक दे देते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है फॉर्म फिल कैसे होना है, और ये सब कुछ इस पे आपको सीखने को मिल जाता है। सो कितनी चीज़ें मिलती हैं, बेसिक कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मिल जाती है, इसके अलावा रिटेल सेल्स एसोसिएट, ग्राहक से कैसे बात करना है, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, कस्टमर केयर या टेलीकॉलर कैसे फ़ोन पर ग्राहकों से बात करना है, एक प्रोफेशनल तरीका क्या होता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट और CSC का जो काम होता है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना, UPI QR कोड से पेमेंट लेना और जन सेवा केंद्र का जो काम होता है, वो सब कुछ आप सीख लेते हैं। सो ये आप सीखते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब एप्लीकेशन से, जिसके बारे में हमने बताया। इसके बाद आता है डुओलिंगो की बात। सो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आसान भाषा सीखने वाला एप्लीकेशन है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, ये आपको पढ़ाई जैसा महसूस ही नहीं होने देगा। अब आप कहेंगे वाह, यही तो मैं बचपन से चाहता था। बस वही तो बात है, बचपन में था ही नहीं, अब है और अब इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ये गेम की तरह हमको लगने वाला है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, यानी इसकी खासियत क्या क्या है, सो इंग्लिश टू हिंदी, इसमें हमको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ऑफकोर्स डायरेक्शंस होंगे और सवाल है वो पूरी तरह से हिंदी में लिख कर आते हैं। सो गेम जैसा इसका इंटरफेस है। जी हाँ, इसमें जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं, लेवल्स पार करने होते हैं और लगातार सीखने पर स्ट्राइक भी मिल जाती है, तो ये जाहिर सी बात है गेम जैसा लगता है। इसके अलावा बोल करके और सुन करके प्रैक्टिस, जी हाँ, सो इसी ऐप में मोबाइल के माइक पर बोल करके इंग्लिश शब्दों का सही उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन भी चेक कर सकते हैं आप। सो रोज़ाना अगर हम सिर्फ 5 से 10 मिनट भी इसको दे दें, यानी कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेना है, बस दिन का 10 मिनट
तो भी बहुत काफ़ी है। Duolingo, Duolingo, Duolingo ये भी एक एप्लीकेशन है और इससे सीख क्या क्या सकते हैं अब इसको भी बता देते हैं। सो देखिए, रोज़मर्रा की जो डेली वोकैबुलरी यूज़ होती है, जैसे पानी, खाना, रास्ता, वक्त, रिश्तेदारी, जैसे ये जो आम शब्द होते हैं ना इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे वाक्य को बनाना, जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं अपना मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, बिना ग्रामर रटे। इसके लिए ग्रामर रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको सेंटेंसेस सीखने का मौका इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा दुकान पे या फिर इंटरव्यू में बोलने लायक इंग्लिश, सो जैसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, कैसे हैं आप, ये जो हमारे शिष्टाचार वाले शब्द होते हैं वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सिखाता है Duolingo। यानी Duolingo में आपको मज़ा ये आएगा कि आपको एक तो इंग्लिश की कोई ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी, दूसरी बात ये कि आप इजीली इससे गेम जैसा फील लेते हुए सीख सकते हैं। सो दो ज़बरदस्त एप्लीकेशंस के बारे में हमने आपको बताया, एक तो Duolingo जिसमें हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और दूसरा हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में बताया। इससे पहले हमने आपको PMKVY के बारे में बताया, और उससे भी पहले हमने YouTube पे क्या सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं ये भी बताया। यानी टोटल हमने चार ऐसी चीज़ें बताई जो आप कहीं से भी घर बैठे आप सीख सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। सो एक तो आपके अंदर नई स्किल्स आ जाएगी, और दूसरी बात ये है कि आप उस एरिया के पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, यानी उस एरिया के जो भी काम होते हैं, जाहिर सी बात है एक नई दुनिया होगी आपके लिए। और तीसरी बात सबसे अच्छी है कि उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, अलग से कमा भी सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा था पहले कि ये बहुत काम का आपका होने वाला। आई होप कि भाई आपको भी अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा होगा। फिलहाल 9:47 हो चुके हैं आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM के स्टूडियो में, और अब से बस ज़्यादा नहीं 13 मिनट बाद जो है 10 से 11 गायगा गुंडा विद आरजे अदनान में हम मिलने वाले हैं। और साथ ही आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर या तो बहुत कम में या तो बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं, और किस तरह से आप भी अपने स्किल्स को बढ़ाने का सोचते हैं। यानी आपके पास भी अगर कोई आइडिया है तो आप हमसे ज़रूर साझा करिए कि भाई आप YouTube से क्या सीख चुके हैं या क्या सीखने का प्लान कर रहे हैं, या किसी और कोर्स से आपने क्या सीखा, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके काम आया और वो ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेट था, कुछ भी ऐसा जो कुछ भी है आपके पास वो आप हमसे साझा भी करिएगा। और साथ ही साथ गाने का तो मन है तो ज़रूर सुनाइएगा। 10 से 11 हम आपकी कॉल्स लेने वाले हैं 6393 पर, 6393316429 पर। फिलहाल ये संडे स्पेशल एपिसोड है और इसको हम लोग बनाने वाले हैं और भी ज़्यादा जानदार इन सॉन्ग्स से। सो स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: वैसे एक मौका तो हम भी आपको दे रहे हैं कॉल मिला करके गाना गा लेने का, क्योंकि भैया ये मौका हर कोई नहीं देता, इवन हमारे दोस्त तक नहीं देते, कहते हैं कि यार बंद करो इतना बकवास गाना। पर मैं ऐसा हूं ना कि यहां पर पूरे पूरे मौका देता हूं। मैं कहता हूं भाई आवाज़ से मतलब ही नहीं, बस आज का संडे का फन डे होता है, मस्ती वाला दिन होता है, सो जो मन में जज्बात आते हैं हम थोड़ा सा जॉली सा महसूस करते हैं तो जॉली ऑफकोर्स कई सारे सॉन्ग्स उसी अंदाज में गाते हैं। हम कुछ सैड होते हैं तो कुछ वैसा सुनाते हैं, हम हैप्पी होते हैं तो कुछ वैसा सुनाते हैं, कुछ उम्मीदों से परे होते हैं तो कुछ वैसा होता है, और उम्मीदों के साथ होते हैं तो कुछ वैसा होता है। तो चलिए फाइनली आपका वक्त हो गया है हमसे बातचीत करने का, और ऑफ कोर्स अब आपके तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई किसकी कॉल है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और आज का जैसे कि मैंने बताया भी भाई कि किन किन अलग अलग चीज़ों से आपने सीखा है, इसके रिगार्डिंग भी आप हमको बता सकते हैं कि भाई आपका तरीका क्या है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। सो उस तरीके में आपका तरीका क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी हम जाहिर सी बात है जानने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। सो चलेंगे भाई अपने लिसनर की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि अगली कॉल पर हमारे साथ में आखिर कौन है और क्या है उनको कहना। हाँ जी हेलो।
1: सबर ऐसा करो कि लोग हैरान हो जाए,
0: वाह
1: दुआ ऐसा करो कि खुदा मेहरबान हो जाए। काबिले सद एहतराम जनाब अदनान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी प्यार भरा आदाब और नमस्कार विजय पांडे जी, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, और मैं कुछ कहना चाहूँगा
0: जी
1: इसी पर, जो मैंने शायरी कही है इसी पर हम कुछ कहना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहा गया है कि दुआ पर एतमाद ही नेकी है,
0: दुआ पर एतमाद ही नेकी है। वाह।
1: जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगे तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह यानी ईश्वर तन्हाई में हमारे पास है और वो खामोशी की जबान भी सुनता है। दुआ में खुलूस आंखों को पूर्णम बना देता है, यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुआ मोमिन की सबसे बड़ा सहारा है, दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ गर्दिशे रोजगार को रोक सकती है, दुआ आने वाली बलाओं को टाल सकती है, दुआ में बड़ी ताकत है। जब तक सीने में ईमान है दुआ पर यकीन रहता है, और जिसका दुआ पर यकीन नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमारी दुआओं को पूरा करके हमें मायूस ना होने दे।
0: वाह क्या बात है, मतलब आपने तो सुबह होते ही पहली कॉल पर इतनी सारी दुआएं हम सबको दे दी, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। क्या बात है, और जब सुबह सुबह दुआ मिल जाती तो आप समझते होंगे कि कैसा दिन फिर बीतता होगा।
1: जी जी जी, धन्यवाद आपको।
0: और सच बताएं तो हम कुछ सीखे ना सीखे, हम तो स्किल्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह दुआ देना जहाँ से भी सीखा हो मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद आया लिटरली। जी,
1: और इसी पर सभी इंसान को अमल करना चाहिए। पता नहीं किसकी दुआ हमारे ऊपर असर कर जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, और आज का थॉट भी कुछ ऐसा ही था विजय जी।
1: जी,
0: आज का थॉट भी यही बताता था कि भाई अगर हमारा जीवन एक दूसरे की मदद करना नहीं है तो हम आखिर किस लिए जीते जा रहे हैं, अगर हम दूसरे की ज़िंदगी आसान नहीं बना सकते तो। और आपने जैसे बताया कि भाई दुआ करना चाहिए ताकि एक दूसरे की लाइफ आसान हो, और वही चीज़ मिलती जुलती लगी मुझे, बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, जी हाँ, यही होना चाहिए सभी को।
0: बिल्कुल,
1: हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी गरीबों का मदद नहीं कर पा रहे हैं, यतीमों का नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ईश्वर से हमको दुआ करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है ना विजय जी की अगर मान लीजिए हम किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे पा रहे हैं, किसी का मदद नहीं, तो मुझे लगता है कि बस एक अच्छा सा नमस्ते, एक अच्छा सा सलाम स्माइल के साथ में, और बस ये कहना कि तुम कर रहे हो कोशिश, मुझे अच्छा लगता है तुम कोशिश करते हो, इतना कह देना मुझे लगता है इंसान को सब कुछ दे देता है। क्या ख्याल है आपका?
1: दे देता है, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं और यही हम सभी को करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, यही सबसे बड़ी इंसानियत का तरीका है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपने जिस तरह कॉल करके जिस अंदाज में दुआएं दी है, मैं कहूंगा कि भाई लाइफ टाइम मैं एक ऐसा आपको कार्ड दे दूं, एक ऐसा पास जिससे आपको भी पूरी जिंदगी दुआएं मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप शख्सियत ऐसे हैं ना कि आप जब बात कर ले जाते हैं, आप चले जाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों के दिलों और जहनों पे रह जाते हैं, तो ये आपका तरीका है। बहुत आप कुछ डायरेक्ट तो नहीं देते, लेकिन आप जो अपनी बातों से दे देते हैं वो डायरेक्ट देने से कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि छोटी सी भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए किसी की लाइफ बना सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एंड बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी कि आपने हमको कॉल किया और इतनी सारी दुआएं दी।
1: धन्यवाद आपको
0: जी, बहुत शुक्रिया। सो भाई ये थे हमारे प्यारे विजय पांडे जी जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और देखिए क्या अंदाज था भाई साहब, मतलब सच में लिटरली बता रहे कि कितने हमारे अंदर जज्बात होते हैं। देखिए हम कह नहीं पाते, बस शायद एक ऐसी जगह, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जहाँ पर हम अपनी बात को रख पाए। और फिलहाल रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM इसकी पूरी पूरी आपको आज़ादी देता है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस भी हमसे साझा कर पाते हैं थ्रू कॉल इन प्रोग्राम या थ्रू मैसेजेस। और मुझे लगता है कि ये सबसे आला है, सबसे उम्दा है, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर आखिर कौन आ रहा है। और फिलहाल मैं सच कहूं तो आज ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप कुछ अलग स्किल्स भी सीख रहे हैं, यानी आपने कुछ सीखा हो उस स्किल से और साथ ही आप सोचते हो कि भाई एक्स्ट्रा अर्निंग भी आप इससे कर लेंगे। सो अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है या कहीं भी आपने ऐसा वक्त बिताया है, कोई ऐसी जगह जानते हैं, कोई ऐसा कोर्स जानते हैं, क्योंकि इस वक्त इस शो को सुनने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल अभी रोज़गार से किसी भी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, हमारा एक छोटा सा आइडिया किसी की लाइफ बदल सकता है। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है, आपने भी कोई ऐसा आइडिया इम्प्लीमेंट किया है और आपको फ़ायदा मिला है, तो डेफिनेटली आप हमसे साझा करिए। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: मैं नाम सविता दुबे हूँ और मेरा मन बहुत दुखी है।
0: अरे भैया क्या हो गया आपको?
2: मेरा रेडियो खराब हो गया 8 दिन से। 3 दिन मैंने दुकान में दे आई, दुकान वाला सही नहीं किया, तो फिर मैंने ले आई रेडियो। अब चाह रही की कोई नया रेडियो लू, तो रेडियो रेडियो के बिना जानते हैं कल झगड़ा भी हो गया उनसे, तो 2 दिन से बात ही नहीं कर रहा। मेरे फोन में फोन आ रहा बार बार, बड़े भैया है नहीं अभी गांव पे, गए हैं जगन्नाथपुरी, तो वहां से फोन आ रहा बार बार, आपका शो में सुन ही नहीं पा रही हूँ ढंग से।
0: माय गॉड, मतलब आपकी पति से लड़ाई हो गई सिर्फ इसलिए कि रेडियो नहीं चल रहा है?
2: रेडियो नहीं, मोबाइल पर फोन आ रहा था ना, आपका शो अच्छा। चल रहा था, मैंने बोल दी थी कि 11 बजे के बाद फोन करने, बस अच्छा। इस बात को लेकर हो गया। आप वहां से देखो कैसा है, ससुराल वाले जो है ना
0: नहीं, मुझे हंसी इस बात की आ रही कि मतलब कितना बचपना, कितना कितनी प्यारी बात लगी कि रेडियो नहीं सुन पा रही थी और आप फोन से सुन रही थी, तो उससे आपको डिस्टर्ब हुआ, तो आपने पति से कहा 11 के बाद कॉल करना, जिससे आपका झगड़ा हो गया। लेकिन मतलब वो मोहब्बत मैं देख रहा हूँ रेडियो से जुड़ाव जो आपको, सच में देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपकी चीज को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि आपके लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ये रेडियो। मतलब किसी की लाइफ के लिए क्या हो सकता है ये कोई नहीं जान सकता है। किसी के लिए खाली गाना, किसी के लिए खाली गाना सुनना हो सकता है, किसी के लिए कोई रेसिपी सीखना, लेकिन आपके लिए जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा फैमिली मेंबर है कि आप उसको बिना उसके रह ही नहीं पाते, ये इसलिए मैं हंस रहा था, और कोई बात नहीं है।
2: ताकि मैं हिंदी बोलना सीखी हूँ आपसे बोल बोल के, फिर मैं डिप्रेशन में भी थी, उससे भी थोड़ा मेरे को दवाई नहीं खाना पड़ा, ये सोचिए।
0: अरे वाह, तो बहुत
2: अच्छी है। हाँ, दवाई नहीं खाना पड़ा, मैं रेडियो सुन सुन के, आपका शो सुन सुन के थोड़ा सही हुआ हूँ, तो वही तो इसके लिए तो ज्यादा ही तो मानना पड़ता है ना। रेडियो तो मैं बचपन से ही रेडियो ही सुनते आई हूँ,
0: वाह,
2: विविध भारती हो चाहे कहीं का भी चैनल हो, रेडियो ही सुनते। हमारे घर में टीवी था नहीं, टीवी तो 2010 के बाद आया, तब तक तो मैं अपना ससुराल गई तब जाके टीवी था, नहीं तो मैं रेडियो सुनता रही बचपन से, तो
0: अच्छा,
2: रेडियो से तो
0: मतलब
2: मोहब्बत हो गई।
0: तो जो मतलब रेडियो ज्ञानस्थली ने आपको दिया, फिलहाल वो भी किसी रेडियो पे नहीं मिल पाया था
2: जी
0: आपका।
2: जी जी
0: ओह
2: जी
0: माय गॉड,
2: जी
0: चलिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हम सभी आरजेएस के लिए, पूरी
2: जी
0: टीम के लिए, और रेडियो ज्ञानस्थली के जो भी ऑफ कोर्स जुड़े हमारे मेंबर्स हैं उन सब के
2: जी
0: लिए।
2: जी वो तो सबसे विशेष करके दीपेंद्र सर को
0: हाँ बिल्कुल, बेशक उन्हीं का लगाया हुआ, उन्हीं का विजन, और आज हम सब एक ही उस पेड़ के नीचे हैं, और वो पेड़
2: जी
0: हमारे दीपेंद्र सर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड बहुत शुक्रिया इतने सारे जज्बातों को
2: और
0: बयां करने के लिए। जी
2: सुनिए,
0: बताइए।
2: और मैं यूट्यूब पर मैंने रिसर्च करी थी कि ज्ञानश्री चैनल,
0: हाँ
2: तभी मैं आप लोगों का सारा वीडियो पहचानी हूँ, आप लोगों को देखी हूँ पहली बार
0: अच्छा, नहीं
2: यूट्यूब
0: तो हम लोग पर्दे में थे पहले, मतलब जान
2: पे।
0: नहीं
2: पर्दे में ही
0: हाँ हाँ
2: तो
0: बिल्कुल
2: थे, मैं
0: पर्दे
2: देखी
0: में
2: सुनने
0: ही
2: के 10 दिन के बाद,
0: वाओ
2: एफएम चैनल से जुड़ने के 10 दिन के बाद मैंने
0: क्या
2: रिसर्च
0: बात
2: की
0: है
2: कि ज्ञानस्थली चैनल, तो सारा
0: जी,
2: सबका वीडियो वगैरह आ गए सामने।
0: वाओ क्या बात है। तो भैया यूट्यूब की हम बात कर रहे थे, और यूट्यूब ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर दी ना। चलिए ऐसे ही यूट्यूब आपकी ज़िंदगी में हेल्प करता रहे, और आप रेडियो ज्ञानस्थली की फैमिली मेंबर बनी रहिए, ये हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने।
2: शुक्रिया सभी को, शुक्रिया।
0: जी थैंक यू। सो भाई ये थी हमारी सविता दुबे जी, और गोंडा से ही ऑफ कोर्स बात कर रही थी, और जैसा कि आपने सुना कि भाई ये है दीवानगी, देखो देखो ये शाम नहीं बल्कि शाम सुबह दोपहर रात सब जो है वो दीवानी होती है रेडियो ज्ञानस्थली पर अलग अलग शोज़ के साथ में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, और देखते हैं कि भाई अगली कॉल आखिर किसकी आ रही है, और उन्होंने अलग से क्या सीखा है, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म या वो ऐसा कोर्स या वो ऐसी सीख जो फिलहाल आज वो हमसे साझा करना चाहे, और जिससे दूसरों को भी उससे बेनिफिट हो पाए, मतलब हो सकता मुझे भी कोई आइडिया मिले या आपको कोई आइडिया मिले। तो चलिए फिलहाल अगले कॉलर की कॉल लेते हैं, और जानते हैं कि ये कॉलर कौन है और कहाँ से ये बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी हम ज़रूर बात करने वाले हैं। हाँ जी हेलो।
3: हेलो, उजड़े हुए चमन में मौसम बहार आ गया,
0: हाँ
3: उजड़े हुए चमन में मौसम बहार आ गया,
0: हाँ
3: आपसे बात क्या हो रही है, मेरे दिल को करार आ गया। गुड मॉर्निंग सर।
0: अरे क्या बात है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आपने ऐसा शेर सुनाया, सुन रही हैं आप, आपने ऐसा शेर सुनाया कि बहार आ गया और सरयू नदी देखा तो उसमें दरार आ गया। मजाक कर रहे थे, मतलब ये बहुत घटिया जोक था वैसे, लेकिन ठीक है हंसाने के लिए ठीक था। अनूप, हाँ अच्छा
3: जोक
0: है,
3: अच्छा
0: दरा नहीं आ नहीं सकता, आ चुका है इसीलिए हमने कहा। इतने दिन से हम गोंडा अपडेट में यही बाढ़ के बारे में तो बता रहे थे कि कितनी ज्यादा बाढ़ आ गई है और कितना नदी उफान पर है, उसी बारे में तो बता रहे थे लिटरली। एंड थैंक यू सो मच अनु कि आपने हमको कॉल किया हुआ। ये बताइए कि आपने कभी कुछ ऐसा सीखा है अलग से अनु, जो आप हम सब लोगों के साथ साझा करना चाहे, जिससे शायद हम लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए।
3: पहली बात तो सर मॉर्निंग वाली वाइब सेट हो गई आपकी ना, तो इसके लिए हमको पार्टी चाहिए।
0: मॉर्निंग वाली वाइब सेट हो गई तो उसकी पार्टी चाहिए, चलिए ले लीजिएगा। आप भी क्या याद रखेंगे पक्का।
3: और एक बात सर,
0: हाँ जी,
3: मैं इधर गांधी खाती हूँ, बतीसी मेरे दिखती है ना,
0: हाँ।
3: और आवाज वीडियो में से आती है, मैं सोचू ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है,
0: स्पेशल
3: फिर
0: दांत,
3: ध्यान से सुना,
0: हाँ
3: फिर ध्यान से सुना तो कहा अच्छा आवाज भी थोड़ी बदली तो ठीक है अभी।
0: अच्छा, नहीं मुझे लगा कि ये कोई वो वाला दांत था जो चूहा वाला था ना कॉन्सेप्ट, कि अपना दांत रख दो चूहा ले जाता और अपना दांत दे जाता है।
3: अरे चूहा वाला नहीं, मैं हंस रही थी, मेरा दांत दिख रहा था और आवाज वीडियो में से आ रही थी।
0: अरे कसम से बताइए, ये एक हमारे बाद एक हमारे साथ एक मसला हो गया था, हमने इसीलिए रखा था कि चूहा आएगा मेरा दांत ले जाएगा अपना रख जाएगा, पता चला छछुंदर रख गई अपना और हमारा ले गई। अब बताओ ऐसा भी कोई करता है क्या।
3: इसीलिए आपको हंसी आ रही थी कि आपका जान बदल गया।
0: इसीलिए मेरी हंसी सबके जैसी होती, हम सबकी मिमिक्री इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मेरे पास चूहे का दांत नहीं, छछुंदर का दांत है।
3: तो आप फिर बहुत अच्छे, फिर आपको ले सॉरी।
0: बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपने कई सारे अलग अलग शोज से भी बहुत कुछ सीखा है। एंड अनु, आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर के कोई नई स्किल सीखने के बारे में, जिसके बारे में आज हम बता रहे थे, ऐसा कुछ कभी जहन में आया आपके?
3: जी सर, मेरे दिमाग में तो सारी बातें आती रहती है और इसीलिए मैं अलग अलग जुड़ती रहती हूँ
0: जी।
3: और मैं रेडियो स्टेशन से चैनल से भी सीखती रहती हूँ और जैसे मेरे फ्रेंड भी मिलते हैं तो मैं उनसे भी ना कुछ सीखती रहती हूँ। जैसे कल एक शो आ रहा था वो अपने यहाँ का नहीं था, मतलब बाहर का था, पर मैं सुन रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिली, जैसे स्वच्छता पे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, बहुत अलग अलग बातें सीखने को मिली तो हमको बहुत अच्छा लगा।
0: नहीं तो बात तो स्वच्छता पे आपने सीखी, लेकिन आज ब्रश किया है कि नहीं, बस हम ये जानना चाह रहे थे।
3: किया था।
0: अच्छा, तो हंस के बता रही, थोड़ा सा डाउट लग रहा हमको।
3: अरे सर, मैं हंस देती हूँ ना तो सब लोग यही बोलते हैं, पर क्या करूं, नहीं, नहीं, जाती है,
0: हंसी आ नहीं जाती। हंसी इंसान अक्सर छिपाने के लिए हंसता है, जान लीजिए हम भी यही करते
3: हैं। हम भी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अब ज्यादा हो जाएगा, तीन बार करेंगे तो दांत ही घिस जाएगा, तो इतना घिसना भी नहीं, सुबह और शाम ठीक है, दो टाइम बढ़िया है। बाकी टाइम कुल्ला करके काम चल सकता है ना? हाँ ये सही रहेगा, ये सही रहेगा।
3: लेकिन सर आज आप क्या खाए थे?
0: आज हम क्या कहते, रुकिए सोचने दीजिए, आज हमने कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाए थे और साथ ही चाय पी थी और हाँ चना की घुघरी खाई थी जो मुझे बहुत पसंद आती है।
3: किसकी
0: घुघरी? घुघरी चने वाली।
3: ओ, हम सोचे सर कुछ अलग खा के आए हैं जिससे मेरी धुलाई कर रहे हैं।
0: नहीं धुलाई तो आपका, फिर तो हमें निर्मा सर्फ पी के आना पड़ता, तो खा के नहीं। तब वो बात
3: है। आज अगर निर्मा से नहीं धुलाई की जाती, पानी से भी हो जाती।
0: कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छा आपने बताया है एंड थैंक यू सो मच अनु कि आपने भी कॉल किया और इतने प्यार से इतनी सारी चीजों को हमको डिफाइन किया।
3: पहली बात ना, कल का जो थॉट था आपका,
0: हाँ जी,
3: वो थॉट हमको बहुत अच्छा लगा।
0: वाओ।
3: और आज का थॉट भी सर हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, जैसे कुछ बड़ा मैं किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ, मैं खुद कोशिश करती हूँ और ये थॉट हमको बहुत अच्छा लगा।
0: वाओ क्या बात है, मतलब आप भी मानती हैं कि दूसरे की जिंदगी में हम लोग छोटी भी अगर कोई हेल्प कर देते हैं तो ये काफी हमारे लिए है ना। वाओ ये बहुत अच्छी बात है और आज का थॉट कुछ ऐसा था भी, आपने बिल्कुल सही कहा एंड बहुत मुबारकबाद आपको कि आप ये पहले से ही करते चले आ रहे हैं और ऐसा ही जारी रखें आप, ऐसी हम कामना भी करते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच अनु कि आपने हमको कॉल किया।
3: अच्छा एक बात और, अभी ना पता नहीं किसने मेरी मदद कर दी है।
0: किसने?
3: और अभी अभी किसी ने मेरी मदद की है ना।
0: अच्छा
3: तो सुन लो, तो सुनने के बाद मैं ढूंढती हूँ वो कौन है जिसने मेरी मदद की है। मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था, अभी 10 बजने में 2 मिनट कम था, पता नहीं किसने रिचार्ज कर दिया है।
0: बहुत बढ़िया, ऐसी महात्मा को तो अलग से सम्मानित करना चाहिए।
3: सर अभी कोशिश करूंगी ढूंढ के सम्मानित करूं कि कौन है।
0: कोई बात नहीं, रिचार्ज हो गया, आप अपना काम करिए। थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु पांडे जिन्होंने हमको कॉल किया था गोंडा से ही और इन्होंने जैसा कि बताया कि इन्होंने थॉट से भी काफ़ी कुछ सीखा और साथ ही साथ कई ऐसी जगह होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लगातार सीखते रह जाते हैं। एंड फिलहाल चूंकि हम दोनों बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आज का मॉर्निंग थॉट भी था और थॉट में साफ बताया गया था कि हमारा अगर मकसद एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं है तो हम किस लिए आखिर जी रहे हैं, पहला सवाल। एंड दूसरी बात ये कि क्या हम कोई अलग से ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ में और बेटरमेंट लेकर के आ रहे हैं, कुछ नया सीख पा रहे हैं और दूसरों के भी आज शायद हम बता सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी हेलो।
4: हेलो गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग अविनाश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बस बढ़िया है। और आज आपका कार्यक्रम सुन रहा था, आज तो आप और भी तरोताजा लग रहे हैं।
0: आए है, है। मतलब आपको पता चल गया हम की तरोताजा अंदर से आज है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वाह अच्छा ये कहते हैं मतलब आप चाहे कोई बयां करें ना करें लेकिन आप जब अंदर से बेहतर फील करते हैं तो वो चीजें बाहर किसी को भी पता चल जाती है,
4: महसूस हो जाता है, वो अपने आप ही महसूस होता है।
0: सही बात है, सही बात है। लेकिन ये गड़बड़ एक चीज चाय के साथ होता है अविनाश जी।
4: जी जी बिल्कुल।
0: अंदर से कितनी गर्म है कप के बाहर से ज्यादा नहीं पता चलता, वो तो मुंह में लगाने बाद जल जाता है।
4: जब जुबान जल जाता है तब पता चलता है।
0: वही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की आदत है कि पहले हल्का टच कर दे, बहुत हल्का सा, कि वहीं से पता चल जाएगा भैया। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं अमिनाश जी कि कभी आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है जिससे आपने नई कुछ चीज़ें सीखी हों और उसके बाद आज आपकी वो अर्निंग में या आपकी लाइफ में कहीं पे भी वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा हो?
4: जी जी बिल्कुल, मैंने सीखा है, मैंने तो आकाशवाणी से ही सीखा है क्योंकि देखिए मुझे कमेंट्री करने का ज़्यादा शौक है, तो मैंने आकाशवाणी से ही इस अंदाज से सीखा है, तो मुझे और इस प्लेटफॉर्म को मुझे अच्छा भी लगता है। और इसलिए देखिए कल भी जो मैच आ रहे थे तो क्या बोलते हैं रेडियो में तो टेलीकास्ट नहीं हो रहा था इसका, लेकिन मैंने यूट्यूब में जाकर वहाँ पर जो कमेंट्री आता है वो मैं सुन रहा था क्योंकि देखिए मुझे कमेंट्री सुनने का शौक है, इसलिए मैं मैच देख नहीं रहा था क्योंकि मैच तो चल रहा था वो बाकी चैनल पर दिखा रहा था, लेकिन मैं उधर से यूट्यूब में जाकर जो कमेंट्री चलते हैं वो मैं सुन रहा था।
0: वाह क्या बात है। एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया क्योंकि इससे पहले हम आपकी कमेंट्री सुन चुके हैं, तो आपने जो है वो रेडियो से ही सीखा है कमेंट्री करना और ये भी एक स्किल है। सही बात है।
4: जी जी जी। और कल देखिए स्वच्छता के ऊपर जो अनु जी ने अभी बता रही थी तो मैं प्रेसिडेंट को उन्होंने एक बात छुपा दिया, उन्होंने पता नहीं क्यों तो उन्होंने ये छुपा दिया कि उस शो में वो आरजे खुद बनी थी।
0: अच्छा
4: जी जी, वहाँ पर वो आरजे बनी हुई थी और हम सब कॉलर के रूप में वहाँ पर अपना वो महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर दर्ज करा रहे थे और वो वहाँ पर सलाह दे रही थी, खुद
0: सलाह दे रही थी। अच्छा इतनी बड़ी हो गई अपनी अन्नू।
4: अभी
0: आपको पता चला
4: अच्छा।
0: और उन्होंने क्या बात, बहुत बढ़िया। वाह और यूं ही आप भी सीखते रहे, बड़ा अच्छा लगता आपसे बात करके। आप जब बताते हैं तो बड़ी ऐसा लगता है ना, जब कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है कि ये बातें नहीं बना रहे हैं, ये दिल से मतलब जो कुछ अंदर है बस वो उसको बाहर ला रहा है। एंड हमेशा जब भी आप बोलते हैं बहुत जेन्युइन फील होता है, तो इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया कि आप ऐसा फील करा पाते हैं हमको और हमको बहुत अच्छा लगता है।
4: जी जी, आपसे भी बात करके हम सबको मतलब कि पूरी सुबह के टाइम जब आते हैं तो हम सबको पूरे दिन मतलब कि वो इतना खुशी मिल जाता है कि बोलते हैं ना कि एक जादू की छप्पी जैसे मिल जाता है।
0: अरे क्या बात है, अब तो एक जादुई प्रश्न आपसे पूछना पड़ेगा फिर तो हमको। एक गाना मैं गा रहा हूँ उसकी लाइन में एक डैश बोलूंगा खाली जगह, उसको आपको भरना होगा एक शब्द से।
4: अच्छा देखते हैं, कोशिश करेंगे, अगर सुना सुना गाना होगा तो बिल्कुल कर देंगे।
0: अरे बहुत सुना हुआ गाना है।
4: अच्छा ठीक है।
0: छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे डैश है,
4: हमें जताना मोहब्बत है।
0: नहीं नहीं, ये तो हाँ ये तो गाने की लाइन है, अब इसको आपको कुछ और डालना है यहाँ पे, वही तो हमने कहा ना।
4: अच्छा
0: इसमें अब आप अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करके डालिए, क्या हो सकता है आपके लिए।
4: ठीक है ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। नहीं आता,
0: क्या बात,
4: जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे प्यार है, बताना भी नहीं आता।
0: ये जो पर्यायवाची का इस्तेमाल करके आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरह का। ये तो हम करने वाले थे, कोई हमारे साथ करता तो।
4: बल्कि दोनों का मतलब एक ही है, वहाँ पर मोहब्बत थी, प्यार आ गया।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं, फर्क बहुत ज्यादा फर्क है, मोहब्बत में बहुत फर्क है, इश्क में बहुत फर्क है और प्यार में बहुत फर्क है, पता है नहीं पता है। वो जब अब वो जब पर्सनली आप मेरे साथ जब कभी चाय पे बैठेंगे तो मैं बताऊंगा।
4: अच्छा,
0: वो चेक करके बैठेंगे।
4: फूक फूक
0: कर पीता है बिल्कुल। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत प्यारे इंसान है एंड कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
4: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिए भाई, बड़े ही प्यारे इंसान अविनाश जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमको कॉल किया और बताया, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब लिटरली, मतलब जब आप अपने जज्बातों को गानों के ज़रिए या कविताओं के ज़रिए व्यक्त करते हैं तो शायद ये आपके लिए एक आर्ट फॉर्म बन जाती है। और मेरे लिए सॉन्ग्स हैं, क्योंकि मैं, मुझे लगता है बाकी चीज़ें मेरे अंदर बड़ी ही ख़राब है, बड़ी बेहुदा है, तो मैं सॉन्ग्स ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब गा लेता हूँ ठीक ठाक, मतलब दो लाइन से ज़्यादा उसके बाद फिर गड़बड़ा जाती है, लेकिन दो लाइन तक तो थोड़ा संभल के गा लेते हैं। सो ऐसी आपकी भी कोई ना कोई आर्ट फॉर्म ज़रूर होगी। फिलहाल चलिए देखते हैं भाई अगले कॉलर को कि कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी, हेलो हेलो, ऑल राइट। सो भाई फिलहाल लगातार कॉल्स आती जा रही है और आप भी अपने जज्बातों को हमसे बयां करते जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भाई जज्बातों को बयां करने का पूरा पूरा मौका मिलता है आपको रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के अलग अलग शोज़ में। सो फिलहाल लगातार हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत का अंदाज़ भी आपको बता रहा है कि आप फील क्या कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो,
5: तारीफ कैसे कर रहे हैं आपकी सर, हर लफ्ज को खुशबू आ रही गुलाब की।
0: ये शेर आपने सुनाया है या शेर फेंक के मारा है? लेकिन अच्छा था।
5: फूल बड़े नाजुक होते हैं।
0: अरे चलिए अब भाई, इतना अच्छा आपका, इतना अलहदा अंदाज है, इतना अलग अंदाज है, तो अपना नाम हमारे श्रोताओं को खुद ही बता दीजिए।
5: नाम भी ऐसे ही सर, हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: जी क्या बात है, देखिए इंदौर से आप वापस से आ चुकी हैं। इंदौर जागा है क्या, इंदौर अभी सो रहा है, क्योंकि गोंडा तो जाग चुका है।
5: इंदौर भी सबसे पहले जागता है सर।
0: ये कैसे मान ले कि इंदौर सबसे पहले जागता है,
5: क्योंकि ये मशहूर है, जो भी यहाँ का सुनता वो तारीफ करता है सर, तो जागता ही होगा ना।
0: ये बस आपका कहना है कि इंदौर मशहूर है, उसका तो नाम किताबों में है और हम दो लोगों के दिलों में हैं, गोंडा वाले। तभी तो देखिए इंदौर से भी आप आ गए गोंडा तक, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, है ना
5: जी। मेरे को अनु जी ने बताया था ये, तो मैंने लगाया फिर कॉल था।
0: बेशक, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि क्या कभी आपने कोई ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज किया है जिसपे आपने कोई नई स्किल्स सीखी हो और वो आपके लिए अभी लाइफ में काम आ रही हो, कुछ ऐसा रहा है आपके साथ में?
5: जैसे नए प्लेटफॉर्म का भी जन नया, हमारे यहाँ पर भी जो नया बना है सर, पहले था पुराना, वहाँ पर बहुत गंदगी करते थे, मगर इतना पर्यावरण अच्छा कर दिया कि बहुत जाते थे, बहुत खुशी मिलती है और अच्छा साफ सुथरा हो गया सर।
0: मुझे लगता है शायद मैं
5: प्लेटफॉर्म पहले गंदे ही रहते थे, क्योंकि चाहे जहाँ कचरा फेंकते थे, थूक देते थे, वो बहुत, अब में ना पेड़ पौधे भी ज्यादा लग रहे हैं और बहुत खुशी मिलती प्लेटफॉर्म देख के सर।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है ये, आप, मैं आपके जज्बात की पूरी कद्र करता हूँ, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म ये वाला नहीं था। मेरा प्लेटफॉर्म है कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपने, जिससे कुछ सीखा हो, कोई नया कौशल, कोई नई स्किल और वो आपके जीवन में काम आ रही हो, जैसे यूट्यूब से लोग सीखते हैं, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
5: ये मोबाइल ज्यादा चलाते नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता सर, मैं जॉब करती हूं
0: तो। अरे वाह, तो कोई कोर्स ऐसा किया आपने कभी शॉर्ट टर्म में?
5: नहीं।
0: अच्छा, ऑलराइट। सो मैं भाई, आज ऐसे यंगस्टर्स जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब करियर चूज करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता रहा था यूट्यूब से कैसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज सीख सकते हैं, या स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में मैंने बताया, डुओलिंगो लैंग्वेज सीखने के बारे में। तो मैं वही बता रहा था कि देखिए डिजिटली भी हम कैसे चीज़ों को घर बैठे सीख सकते हैं, उसके लिए बड़े शहर जाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो चलिए सेम सॉन्ग आपसे भी, और आपको भी एक अलग शब्द यहाँ रखना पड़ेगा, मैं लाइन बताऊंगा, इसमें आपको कोई अलग शब्द रखना पड़ेगा जो गाने में है, वो नहीं, उससे इतर कुछ, ठीक है? छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे डैश है, बताना भी नहीं आता।
5: नो,
0: क्या
5: ये तो गाना ही है मगर आप
6: हाँ लेकिन इसमें कुछ डालना है अपना वाला छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता हमें तुमसे जानना है ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना भी नहीं आता है ना ऑलराइट सो चलिए फिलहाल बहुत बढ़िया बातचीत होती जा रही है और फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है क्यों ना आपको एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले चला जाए और वापस से लाते हैं लगातार कॉल्स लेने वाले हैं लगातार आपसे बातचीत करने वाले हैं आप बने रहिए अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान

0: पर आखिर कौन है मौजूद और आखिर उनका क्या है कहना। सो हाँ जी, हेलो।
1: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है?
1: जी मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओ वाओ, हैदराबाद तेलंगाना से आसिफ साहब, आपका बहुत स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। सो आखिर इतनी दूर से ये गुंडा तक का सफर थोड़ा बताएंगे हमारे श्रोताओं और मुझे कि कैसे रहा आपका?
1: सर एक्चुअली मुझे बचपन से ही रेडियो का सुनने का बहुत शौक है।
0: अच्छा,
1: तो एक्चुअली मैं रहने वाला राजा कटरा, छोटा सा गाँव है वो, बाराबंकी जिले में पड़ता है, उधर का हूँ। इधर 6-7 साल से इधर काम कर रहा हूँ सर। और गोंडा सुनने का रीजन ये है कि हमारी एक एफएम की दोस्त है, सिस्टर लगती हैं, रोशनी दीदी हैं चंडीगढ़ से और एक गुलाब साहब भी हैं, उन्होंने बताया कि एक ज्ञान स्थली नाम का रेडियो है, वो बहुत अच्छी जानकारी देता है। तो हम फिर सुनना स्टार्ट किए, तो फिर आज कॉल भी लगा लिए।
0: वाह क्या बात है, आप रहने वाले बाराबंकी के।
1: काफी, हाँ काफी अच्छा लगा ये ज्ञान स्थली, बहुत इसका नाम भी ज्ञान स्थली है और ज्ञान की बातें ही बताते हैं।
0: वाह चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत पसंद आया और हैदराबाद रह करके आप इतने सारे काम के बीच में अगर रेडियो ज्ञानस्थली सुन रहे हैं तो लिटरली हम आपके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
1: और हम आपके
0: और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ रोशनी रावत जी का भी और गुलफशा जी का भी, जिन्होंने आपको जोड़ा और हमारी फैमिली को और बड़ा किया। सो आसिफ जी, कुछ सवाल थे आपसे, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
2: हेलो।
0: जी जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, हमारे ख्याल से हमारे साथ में जो है वो जुड़ गए हैं हमारे कमल नयन जी। कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं सर।
0: देखा, आपका अंदाज बता देता है कि कमल नयन जी आ गए हैं। वो क्या, कौन सा कैरेक्टर बन के आते हैं आप? पिंकी नहीं, तो हमें लगता है उनसे लंबी चौड़ी दुआ मिलेगी तो उनसे लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपके लिए होगा।
2: वो हमारा बच्चा लग जाएगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें यकीन भी था कि आप ऐसे ही हरकत करने वाले हैं।
2: नहीं सर, असल में क्या ना, बड़ी देर से कॉल कर रहे थे कि बहुत दिन हो गया आपसे बातें नहीं
0: हुई। जी,
2: इसलिए सर कॉल कर रहे थे कि सर आज क्या बात है, इग्नोर कर रहे हैं हमें।
0: अरे इग्नोर आपको मतलब भगवान नहीं कर सका, हम लोग कैसे कर सकते?
2: नहीं सर, भगवान तो कर ही रहे हैं ना, भगवान तो कर ही रहे हैं।
0: वाह क्या बात है।
2: अगर भगवान अगर इग्नोर ना करते तो आपसे मुलाकात करने के लिए सालों बीते जा रहे हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुलाकात नहीं होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और जब होना होगा तो वो तो होगी ही होगी जाहिर है।
2: वही कह रहे हैं कि जब भगवान जब कहेंगे तभी होगा मुलाकात।
0: नहीं बिल्कुल बेशक। और कैसे हैं, अपना हालचाल बताएं, आप कैसे हैं?
2: सर हम तो अच्छे, अपने आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कमल नयन जी कि कोई ऐसी चीज आपने भी अलग से सीखी है किसी कोर्स से या प्लेटफॉर्म से या किसी भी जगह, तो आप भी अपने बारे में बता सकते हैं।
2: हाँ सर, बहुत सी ऐसी चीजें जैसे मतलब यूट्यूब पे और फेसबुक पे और ये गूगल पे सर क्या है, जिससे खेती के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी मिली है और जैसे जानकारी ऐसी हुई है सर कि जैसे आपके रेडियो से तो हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी मिला, जैसे मतलब हर एक चीज के बारे में, कोई ऐसा चीज नहीं की जो बचा ना हो।
0: मतलब रेडियो के बारे में आपको हर चीज की जानकारी मिली, इसके अलावा गूगल और यूट्यूब से आपको खेती के बारे में भी बहुत मिला है।
2: हाँ खेती के बारे में सर और मतलब बहुत सारी जानकारियाँ मिली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे जो हमें रेडियो से मिला है, अब रेडियो से हमें सर एक चीज और मिला है
0: जी,
2: कि जैसे किसके साथ में कैसे बात करना है, कैसे के मतलब साथ में मतलब बात करने की उसको अच्छा लगेगी क्या क्या नहीं। हाँ मतलब आपसे
0: थोड़ा। वाह क्या बात है, किससे कैसे बात करना, ये भी आपने कहा कि भाई कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ऑलराइट, सो चलिए फिलहाल चलते हैं कॉलर की तरफ। हाँ जी, मेरे ख्याल से आसिफ जी दोबारा से जुड़ गए, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं सर, फोन कट गया था, दोबारा ट्राई किया।
0: हाँ हाँ कोई बात नहीं। सो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आपने भी कभी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से सीखा है जो आज आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो या आपकी लाइफ में वो काम आ रहा हो?
1: जी बिल्कुल, एक्चुअली हम काम ही वो फैशन डिजाइनर का करते हैं, सिलाई का, बुटीक पे जॉब करते हैं, तो उसमें ज्यादातर तो सोशल मीडिया पे ही देख के, यूट्यूब पे ही देख के पैटर्न बनाना रहता है सर।
0: वाह, मतलब

0: वो कहीं ना कहीं उससे आप कमाई भी आपकी हो रही है और आपने सीखा भी इससे ऑनलाइन है।
1: जी बिल्कुल।
0: वाओ, क्या
1: बात। क्योंकि आजकल नए नए डिजाइन आ रहे हैं, पाइथन नया नया निकल रहा है, तो लोग यूट्यूब पे ही डिजाइन दिखाते हैं, तो फिर हम लोग यूट्यूब पे ही देख के, एक बार तो देख के उसके बाद ही बनाना पड़ता है।
0: क्या बात है, मतलब बहुत खूब बात आपने कही कि YouTube फिलहाल आपको इतना हेल्प कर रहा है कि आप फैशन डिजाइनिंग के अपने कई सारे डिजाइंस और कटिंग वगैरह YouTube से भी सीख रहे हैं। सो एक ये मुझे लगता है आप एक बहुत बड़े एग्जांपल हैं कि मतलब आप उसका काम भी कर रहे हैं और आप सीखते भी जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: सो कई बार ऐसा लगता है मुझे आसिफ साहब कि जो चीजें हमको फ्री मिलती है कई बार उसको हम उसकी कदर कर नहीं पाते, हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल है, जिस फ्री मिलती है उसकी कदर नहीं रहती है।
0: हाँ, क्योंकि आपने उसको यूटिलाइज किया है यूट्यूब जो कि फ्री है, और आप आज उससे कमा भी रहे, उससे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: जी एक्चुअली मैं यूट्यूब में जब मैं चला था गांव में, जब पढ़ाई पूरी की सर, तो हमारे पापा की खाद और बीज की दुकान है, तो उस पर बैठते थे, तो खाली टाइम हम फोन चलाते थे, तो उस पर ही देख के मेरे को वो आइडिया आया कि क्यों ना स्टिचिंग का काम किया जाए, अच्छे डिजाइनर बन सकते।
0: वाओ,
1: उसी से एक मेरे को प्रेरणा मिली कि तभी मैं हैदराबाद आया, उसके बाद इधर आके फिर पूरा सेटल हो गए।
0: अच्छा, हैदराबाद में जब आसपास लोग वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें से कुछ ऐसे शब्द जो आपको बहुत बढ़िया लगते हो कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी जी बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि तिन्ना ना बोले तो खाना खा लिए, एकड़ा उन्नारू किधर हो भैया, ऐसे बोलते
0: एकड़ा उन्नारू।
1: हाँ, इकड़ा उन्नारू, चाला बाउंडी, बहुत अच्छा काम किए, ऐसा बोलते। चाला अच्छा। बोले तो बड़ा। हाँ,
0: और अगर
1: बहुत रिस्पेक्ट सर, बहुत
0: लगा के,
1: बहुत
0: लगा कर। चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: आप अगर नहीं छोटे हो तो अन्ना ही बोलते, अगर कोई लेडीज हो तो उसको अक्का ही बोलते, अक्का बोले तो बड़ी बहन बोलते।
0: अरे वाह, क्या बात है। हाँ, साउथ का ये बहुत अच्छा कल्चर है,
1: इधर का कल्चर भी बहुत अच्छा है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: आओ सर कभी,
0: बाराबंकी से होते हुए आएंगे, बताइए घर से कुछ लाना हो तो लेते आएंगे आपके घर से भी।
1: सर, हम अभी आए थे पिछले हफ्ते, लेकिन एक हफ्ते के लिए आए क्योंकि हमारी एंगेजमेंट थी।
0: अरे वाह, शादी हुई नहीं क्या अभी आपकी?
1: अभी शादी नहीं हुई सर।
0: अरे तो करना नहीं चाह रहे या हुई नहीं अभी?
1: नहीं नहीं सर, अब करते
0: हैं। अच्छा, आप करने वाले हैं, चलिए
1: सेटल हो गए तो अब कर लेते हैं।
0: अरे वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा जीवन आपकी नई शुरुआत हो, ऐसी हम दुआ करते हैं आपके लिए।
1: थैंक यू,
0: एंड थैंक यू सो मच आसिफ साहब की आपने हमको कॉल किया। सो भाई, ये थे हमारे आसिफ साहब जो की हैदराबाद से सुन रहे थे, और जैसा की उन्होंने बताया कि फिलहाल वो रहने वाले तो बाराबंकी के हैं, लेकिन पिछले 6 से 7 साल हो गए उनको वहाँ पे वर्किंग हैदराबाद तेलंगाना में, और फिलहाल उनसे बातचीत में बड़ा मज़ा आया, बड़ी सारी बातें हुई। फिलहाल हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: राकेश जी कैसे हैं आप? फिलहाल राकेश एक और नाम है, आपको याद आया?
2: जी जी।
0: अंतरिक्ष जाने वाले राकेश साहब की हम बात कर रहे हैं।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं रेडियो ज्ञानस्थली के गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सबसे पहले तो हालचाल बताइए, फिर मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ।
2: जी हमारे हाल चाल भी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं।
0: तो भाई जी, आपने सवाल सुना, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ?
2: सवाल तो सुना था, लेकिन थोड़ा लेट और रेडियो ऑन किया था, पर सुन रहा था।
0: कोई बात नहीं,
2: और किसी जरूरत था? हाँ जी
0: जी जी, दोबारा हम बता देते हैं। तो मेरा सवाल राकेश जी ये है कि क्या कभी आपने YouTube से या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके या कहीं से भी कुछ ऐसा सीखा है जो आज आपकी अर्निंग में, आपकी कमाई में वो आपका साथ दे रहा हो, आपने कुछ नया सीखा हो?
2: जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा परिचय देता हूँ, और मैं राकेश, तो आप सब में शिमला से बात कर रहा हूँ। तो हिमाचल में तो काफी जो है ऐसी ऐसी चीजें बनती है, तो YouTube से हमने ये सीखा है कि अब हम जैसे कि आपको पता है हम सेब की खेती करते हैं,
0: जी,
2: तो
0: जी,
2: हमें
0: जी.
2: YouTube से ये सीखा है, तो जैसे कि बाग पेड़ों में है किस तरह से छिड़काव करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से नई चीजों से हमें प्रयास करना चाहिए, तो YouTube देखते कि तो हमें इसका प्रयोग भी क्या है और प्रयोग भी क्या और कुछ प्रयोग जो है काम भी आया कुछ नहीं आया, लेकिन जो प्रयोग काम आया तो उस प्रयोग से है हमें बड़ा लाभ मिला है.
0: अच्छा, मतलब आपने जो उसका YouTube देख करके उसका इस्तेमाल किया उससे आपको फायदा भी हुआ काफी?
2: बिल्कुल, काफी फायदा, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीजें जो है YouTube पे बता देती है कि जिससे हमें जो है बिल्कुल जो है फायदा होता है, खासकर जो है बाग बगीचे में जो है कि किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए,
0: बागों का ध्यान रखना चाहिए. वाह क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि किस तरह से हिमाचल में, जब शिमला की हम बात करते हैं तो कुछ रिसोर्सेज वहाँ के हैं जैसे खेती आपने बताया, और उसमें आपने यूट्यूब का सहारा लिया, उसको आपने जब इम्प्लीमेंट करके देखा तो ग्राउंड पर यानी जमीनी स्तर पर आपको उसका फायदा भी मिला.
2: जी.
0: कितना लाजवाब आप कर रहे हैं इस्तेमाल. अच्छा, आने वाले समय में कोई प्लान, कोई नई चीज सीखने का यूट्यूब से ही कुछ ऐसा सोच के रखा
2: है? अलग सीखने का है, जैसे कि अगर मान लो कि ऐसा तो मैं ढोलक हो जाता हूँ बचपन से, यूट्यूब से ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है उस ढोलक को बजाने का निखार अपने में आ जाए, तो अगर मौका मिले तो यूट्यूब से पहले मैं ऐसा कि ढोलक तो मैंने बचपन से सीखी है लेकिन और नहीं सीखी, तो यूट्यूब से अगर सर्च करके हम सीखेंगे तो फिर और भी क्या बोलते हम अपने निखार को आगे बढ़ा सकते हैं.
0: क्या बात है भाई, इतना अच्छा लगता है कि आप ऐसी जगह रह करके भी कई कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं हमेशा, और मुझे लगता है जिंदगी में आपको जवान रखने के लिए ये सीखने वाली जो चाह है ना, ये बहुत काम आती है.
2: देखो सबसे बड़ी बात ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती. हाँ ये है कि अगर करियर के लिए अगर आपने सीखना तब तो चलो उम्र के हिसाब से सीखना पड़ता है, अगर मानो कि मेरी एज 36 साल की तो अभी मैं अभी भी क्या 40 की हो जाएगी हम सीख सकते. हाँ करियर के तो ये है कि करियर के लिए तो समय होता है कि हमें कब तक सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शौक के लिए सीखना तो उसमें कोई एज नहीं, हम सीखती जाती है सीखती जाती है जब तक हमारे अंदर जो है ताकत है.
0: सही बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी ताकत यूं ही बनी रहे और आप नया नया हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे और हमसे साझा भी करते रहिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: एंड थैंक यू सो मच राकेश जी हमको शिमला से कॉल करने के लिए.
2: जी जी धन्यवाद
0: धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. सुबह ये तो थे हमारे साथ में हमारे राकेश जी जो हमसे जुड़े शिमला से, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर खेती है और खेती में भी किस तरह से उनको ये काम आया YouTube पर ऐसी वीडियोस को देखना, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई लोग हैं हम लोग जो इस तरह की चीज़ों को अपने YouTube पर ट्यूटोरियल में देखते हैं और सीखते हैं. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई YouTube का प्रमोशन नहीं हो रहा, बस ये कहने का मतलब है कि फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम बहुत परेशान हैं तो क्यों ना कुछ नया सीखा जाए, हो सकता हो कि कुछ स्ट्रेस हमारा उस नए सीखने से बस्ट हो, और ऐसा होता भी है, स्ट्रेस बस्टर भी कहते हैं. फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ में कौन है मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं. हाँ जी हेलो.
3: हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी.
0: इसका जवाब मुझे कैसे देना, मैं ही सोच रहा था. अभी मैं भी लंबा सा खींच करके बोलने वाला था लेकिन मुझे ही शर्म आ गई कि नहीं मैं बोल ही नहीं पाऊंगा. क्या बात है, हेलो गुड मॉर्निंग, अपना नाम जरूर बता दे भाई, इतने अच्छे से आपने.
3: मेरा नाम है रोशनी रावत और हम ये प्रोग्राम आपका जो चंडीगढ़ से सुन रही हूं.
0: अच्छा, यही है साजिश जिन्होंने हमारे इस फैमिली मेंबर को बड़ा किया है. देखिए कैसी है आप?
3: मैं बहुत अच्छी सर, आप बताइए कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, हमें लगा था कि आज अंदर से हम ही अकेले खुश हैं तो आप भी ऐसी हमको फील कर रहे हैं. मतलब आपकी आवाज से लग रहा है कि आप भी अंदर से काफी अच्छे हैं.
3: जी सर, अब जरूरी थोड़ा कि दुख दिखाना ही चाहिए, ऊपर से खुश रहो अंदर भी किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहिए.
0: ये जेब बात है, बहुत होशियार हो गया अभी.
3: अब ज्ञान के लिए सुनते सुनते हमारे अंदर भी ज्ञान प्रवेश कर चुका है.
0: वाह क्या बात है, चलिए ज्ञान की बात पे पहुंच गए, तो अब जरा आप भी बता दी कोई ऐसा कुछ सीखा आपने अलग से किसी प्लेटफॉर्म से?
3: मैं तो हर रोज सीखती ही रहती हूँ सर.
0: अच्छा.
3: क्योंकि मेरा जैसे कि सभी को पता है, जितने भी रेडियो लिसनर हो तो ज्यादातर सभी को ऑलमोस्ट पता ही है कि मेरा साइबर कैफे है, और मैं जो काम करती हूँ तो हर कोई किसी को सिखाता नहीं बताता नहीं है कि हाँ आप ऐसे करो या ये करो ये करो, क्योंकि ये काम जो खुद ही सीखना पड़ता है, तो इसमें मेरी मदद जो करता है वो यूट्यूब करता है.
0: वाह क्या बात है, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहेंगे फिलहाल?
3: जी सर बिल्कुल, जैसे कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना सीखा है यूट्यूब से, और जैसे पासपोर्ट हो गया अप्लाई करना, इनकम कार्ड हो गया, पीएफ निकालना हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हमने यूट्यूब से सीखे हुए सर।
0: वाओ, मतलब फॉर्म को जो बताया आपने फिल करना, डीएल वगैरह के
3: का हो गया, डीएल का हो गया, पासपोर्ट का हो गया, और भी मतलब बहुत सारे काम है जो हम यूट्यूब से देख के पहले एक बार एग्जांपल लेते हैं उसके बाद फिर करते हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता सकती हैं कि जब कोई डीएल के लिए अप्लाई करने आता है और पासपोर्ट के लिए, तो लगभग कितने पैसे अलग से चार्ज होते हैं?
3: सर हमारी फीस एक्स्ट्रा होती है, जैसे मान लो अभी तो पासपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए हैं, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2 महीना पहले लगभग 1500 फीस थी, तो जिसमें मैं 2000 लेती थी, और अभी जो है वही फीस हो गई है, गवर्नमेंट की जो फीस है वो 2500 हो गई, 2500 समथिंग, मैं 3000 ले रही हूँ सर।
0: हाँ एग्जैक्टली, तो वही कहने का मतलब है कि आपने खुद उस चीज को सीखा इस तरह से, और जो चीजें आपके लिए मतलब नामुमकिन थी या नहीं थी, बट आपने उसको उससे मुमकिन बनाया।
3: क्योंकि सर कोई भी काम होता है तो हम अगर किसी पर्सन से पूछते तो वो नहीं बताता ऐसे, और यूट्यूब एक ऐसा सहारा है जिसमें हम कुछ भी सीख सकते हैं,
0: तो आपको
3: ये नहीं कि सीखने की मतलब इच्छा होनी चाहिए सबके अंदर।
0: अच्छा, आपको कभी फील आया जैसे कोई घमंड आया कि कोई कहे हम नहीं बताएंगे, तो आपने कहा चलो चलो जाओ जाओ मुझे पता चल जाएगा?
3: नहीं नहीं सर, हमने ऐसे नहीं किया किसी के साथ, फिलहाल
0: नहीं नहीं नहीं, मतलब
3: सलाह देती रहती हूँ और बताती भी रहती हूँ।
0: मतलब
3: सारे हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं सर
0: जी
3: कि जिनको मतलब फोन के बारे में नहीं पता होता या कुछ भी नहीं पता, तो मैं फ्री में ही अपोस्ट उनको मतलब सलाह दे देती हूँ, बता देती हूँ, और कई बार तो वो काम करके भी दे देती हूँ।
0: अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा था जैसे कि कभी कोई ना बता रहा हो आपको कुछ और आपको पता हो कि भाई तुम नहीं बताओगे तो YouTube पे हम जान लेंगे, तो मन में होगा हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ हम तो अब देख ही लेंगे।
3: नहीं वैसे तो किसी से ऐसे पूछते नहीं है, फिलहाल अगर पूछते भी हैं किसी तो बता देते हैं ऑलमोस्ट, और उसमें भी कंफ्यूजन होते तो फिर यूट्यूब के पास चले आते हैं।
0: वाओ क्या बात है। तो वैसे आप चूंकि साइबर कैफे संचालित करती है, मुझे जब कोई साइबर कैफे कहता है तो उससे जुड़ा हुआ पीसीओ याद आ जाता है, जो उस बॉक्स में खड़े होकर लोग कॉल करते थे बाहर लाइन लगा करके, याद है?
3: जी सर याद है।
0: तो एक दौर मतलब शायद बचपन से जो हम लोगों ने दौर, ऐसी जनरेशन है जिसको काफी कुछ हम लोगों ने देख लिया है, और आज सब कुछ इतना बदल गया है वो भी हम लोग देख रहे हैं जिसके साक्षी है, और अब AI तक मामला पहुंच गया है, इससे आगे देखते हैं कहां तक है अब।
3: हाँ जी।
0: वैसे कभी आपको ही ख्याल है जैसे वीडियो कॉल तक हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया है, अब मोबाइल के अंदर घुस करके दूसरे जगह निकल जाने वाला कुछ ऐसा आइडिया? मुझे तो आता रहता है ऐसा ख्याल।
3: होता है सर, हमें भी कई बार ऐसा ख्याल आता है कि जैसे आप वीडियो कॉल पर बैठे हो ना सर, ऐसा लगता है कि कई बार हम सामने टीवी की तरह नहीं देखे कि आप वहां से प्रोग्राम कर रहे हो और हम सामने आंखों से देख रहे बैठे।
0: सही बात है, वैसे ये मसला हो जाएगा जैसे अब कोई आराम कर रहा है तो हर कोई घुसते ही चला आएगा घर के अंदर आपके। तो इसमें अगर ऐसा सिस्टम होता है तो एक कुंडी होनी चाहिए इसमें भी खड़खड़ाने वाला, जब तक खोले ना आदमी तब तक वो बाहर ना आ पाए, क्या ख्याल है?
3: वही फिर लगेगा पासवर्ड लगेगा या फिर 1 10 पासवर्ड
0: ओटीपी चलेगा। वाह भैया, आप जो है वो सिर्फ साइबर कैफे नहीं संचालित करती बल्कि आपका जहन भी काफी एक्टिव है, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके रोशनी जी।
3: मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ और उनको गुड मॉर्निंग विश करना चाहती हूँ।
0: अरे बिल्कुल प्लीज, लेकिन अपने अंदाज में करिए, ऐसे सिंपल सिंपल नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ हाँ वैसे ही जैसे बोला था आपने।
3: अनु जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बोला सभी गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद गुड मॉर्निंग, तुम भी गुड मॉर्निंग, और जितने भी मतलब सुन रहे हैं हमारे सभी भाई और बहनों को गुड मॉर्निंग।
0: लेकिन एक बार पंजाबी में भी हो जाए।
3: अरे सर पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ।
0: चलिए जल्दी सीख करके हम लोग को जरा पंजाबी भी सिखाइए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
3: ओके सर, थैंक यू
0: जी, थैंक यू। सो भाई ये जो है हमारे साथ में, जैसा कि आपने सुना, रोशनी रावत जी जुड़ी चंडीगढ़ से, और फिलहाल अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, और देखिए लगातार कॉल्स आ रही है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, हम कहते हैं ना छोटा सा भारत है ये, सो लिटरली ये छोटा सा भारत है जो पूरे इंडिया में इस वक्त सुना जा रहा है और जुड़े हैं लोग इससे। फिलहाल अगले कॉलर को हम लेते हैं और देखते हैं कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो।
4: हेलो
0: जी कौन?
4: सुन लो भैया, सुन लो भावी, सुन लो दादा, सुन लो दादी, भाषा जिसकी सीधी सादी, और जिसके हो गए हम आदि, ज्ञान सिखाए मनोरंजन कराए, ज्ञान स्थली रेडियो वही सबके मन को भाए। ये है गोंडा ज्ञान स्थली।
0: ये तो मतलब आपने तो एकदम क्या कहते हैं माहौल ही बदल दिया, जज्बात ही बदल दिया।
4: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपने बारे में प्लीज बताएं, हम सभी लोग अब जानने के लिए आतुर हैं।
4: मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से बात कर रहा हूँ, नरेश प्रजापति।
0: वाह क्या बात है नरेश जी, मतलब आप तो ऐसा लगता है जैसे आरजेज अपनी स्क्रिप्ट लिख करके आते हैं कि आज क्या क्या करना, आज आप एंट्री लेकर आते हैं संडे की कि कैसे करना है।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ।
0: क्या बात है, वाओ बहुत प्यारी बात। सो नरेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है दिल से आपका करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
4: एंड सर, और आप, आपने मेरा कॉल रिसीव किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।
0: थैंक यू सो मच। सो उसी
4: अच्छा लगता है ये गुड मॉर्निंग गोंडा जो आपका शो है, और बड़ा ही लाजवाब है ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को और ज्यादा लाजवाब बना देती है आपकी ये प्यारी सी मधुर सी आवाज।
0: सच बताइए।
4: जी बिल्कुल सच कह रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये एक सवाल था
4: जी,
0: जैसे कई बार कई लोगों ने तारीफ की आवाज की, तो मुझे लगता है जैसे चेहरे की कोई तारीफ करता है तो काजल लगा लिया जाता है ना, या काला टीका लगा लिया जाता है, घर के लिए नींबू लटका दिया जाता है। अब अगर कोई आवाज की तारीफ करे और उसको नजर से बचाना हो तो इसके लिए नींबू कहाँ, जबान पे लटकाना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा?
4: क्या बात
0: है, जस्ट प्रश्न है।
4: इसके लिए तो ये है कि ऐसी खान पान की चीजों से बस परहेज करना है जो हमारे हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक होती है।
0: क्या बात है भाई, इतना स्मार्टली जवाब मुझे लग ही रहा था नरेश जी की तरफ से आ सकता है।
4: बस इसके लिए
0: क्या बात है।
4: और मौसम तो बिल्कुल बिल्कुल सर्दी आने वाली है, और अभी तो फिलहाल तो यहाँ उमस ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि ये जो कुंवार का महीना होता है, जैसे हमारी हिंदी भाषा में कुंवार बोलते हैं, वैसे अश्विन भी, अश्विन जैसे कैलेंडर में बोले ना तो अश्विन होता है ये।
0: जी जी।
4: और अभी हम बस कुछ दिनों बाद यानी 11 तारीख से नवरात्रि जो त्योहार है हमारा, बड़ा ही बेहतरीन त्योहार होता है, और यहाँ तो जो गरबे होते हैं
0: बिल्कुल
4: बड़े लाजवाब होते हैं। जी हाँ, तारीफ के काबिल होते हैं यहाँ के गरबे। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं आपको कि जिस दिन से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है उसी दिन यहाँ पर इंडिया और वेस्ट इंडीज का T20 मैच भी है।
0: यानी दोनों का मजा है, कॉम्बो पैक।
4: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका तरीका मैं बार बार कहूंगा कि बहुत लाजवाब था, और बड़ा अच्छा लिखा आपने ज्ञानस्थली के बारे में।
4: जी जी, नाम ही इसका ज्ञानस्थली और ज्ञान का भंडार है। बाकी
0: ज्ञान का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। और दरअसल ये जो कॉलेज है ये भी इसी सोच के साथ बनाया गया था, और न जाने कितनी सारी बालिकाओं को ज्ञान दे करके यहाँ से उनकी लाइफ में उनको इंडिपेंडेंट किया गया, और आज वही काम रेडियो ज्ञानस्थली पूरे भारत के लिए कर रहा है।
4: बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच नरेश जी, बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू
0: सर। सुबह ही मुझे लगता है फिलहाल अब चलने का वक्त बात करते करते फाइनली आ गया है। कुछ मैसेजेस हैं जो कि हम लेने वाले हैं आपके मैसेजेस में, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपने लिखा है और क्या भेजा है जो हमने अभी तक मैसेजेस नहीं ले पाए थे, यानी बाद में जो मैसेजेस आए हैं सुबह के बाद में। सो यस, हमने जो पढ़ा था वो पूर्णिमा का लास्ट मैसेज था, उसके बाद अरविंद जी का है, जीवन में शांति पाने के लिए दूसरों की शिकायतें करने के बजाय स्वयं को बदलना अधिक सरल है। आरजे अदनान सर, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात, और बहुत अच्छी लाइन कही, थैंक यू सो मच अरविंद जी। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे हैं रेगुलर लिसनर, हमारे आवास विकास से सुनते हैं, लिखते हैं अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी। लिखते हैं, संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। क्या बात है, वाओ। एंड आशु जी ने भी सभी को ऑफ कोर्स विश किया है, हमारी प्रीति जी आ गई हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, आपको भी वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। और सविता जी ने अपनी कुछ दुखों को बताया है कि बीड़ी नहीं मेरे मन जल रहा है, रेडियो नहीं सुन पा रही हूँ, ससुरी 8 दिन से जो है वो मोबाइल फ़ोन ख़राब है और कुछ नहीं, तो ये आपका जो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो। एंड आनंदिता मैम हैं, आपने लिखा है कि आज का शो बहुत प्यारा था, फुल ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन, सुनकर बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड आरजेतान, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इसके बाद जो है गुलफशाह सिद्दीकी जी हैं, आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम अदनान सर, वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ धर्मेंद्र जी लिखते हैं, सर जी ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे इस स्टेट पर लाने वाली जो है वो आरजे आकांक्षा है, उनका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत जी हैं फ्रॉम उन्नाव, जो कि नहीं फिलहाल अभी हम कह सकते हैं चंडीगढ़। सो आपने लिखा है कि भाई गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और आसिफ जी से कॉल करके जो आपने बातचीत का अंदाज़ था वो काफ़ी आपको पसंद आया, आपने तारीफ भी की, थैंक यू। हमारी रेखा कुशवाहा जी भी रोज़ की तरह आज अपनी हाजिरी के साथ आ गई हैं और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी संडे, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है रेखा कुशवाहा जी मॉर्निंग वाले शो में। एंड अदनान सर आपकी हंसी हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये सीखिएगा नहीं क्योंकि ये मेरी पर्सनल है और इस पे मेरा कॉपी का राइट है वैसे कॉपीराइट मार नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं, आप जहाँ पे भी इसको हंस रहे होंगे मैं क्या ही जान पाऊँगा। खैर हंसते रहिए, सच तो ये है कि हम भी कहेंगे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दिन अपना बनाते रहिए। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली क्योंकि आज है संडे और बैक टू बैक हैं स्पेशल, कई सारे शोज लगातार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली पर। और जाते जाते भाई ये जबरदस्त वाइब सेट कर देने वाला मॉर्निंग वाला सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM पर।

भाइयो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है संडे स्पेशल हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी वाले प्रोग्राम में। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई, इसी प्रोग्राम की होस्ट अपनी गीता दीदी के पास चलते हैं और उनका वेलकम करते हैं।
1: हेलो अदनान।
0: आज तो आप घास का मैदान बन के आई हैं। कैसी हैं दीदी आप?
1: और आप घास के सफेद फूल।
0: सही बात है, आज तो बिल्कुल प्राकृतिक हो गया है पूरा स्टूडियो के अंदर का माहौल। तो दीदी अपना पहले तो हालचाल आप बता दीजिए, कैसी
1: हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और हालचाल तो मुझे अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स का लेना चाहिए कि आप लोग कैसे हैं, और मैं तो आपको सुबह की नमस्ते बोलती हूँ।
0: वाह क्या बात है। सो गीता दी ने अपने स्माइल के साथ में आपको विश कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये स्माइल आप तक सीधे दिखी होगी। पता है दीदी, आप जब स्माइल करती हैं तो सुनाई नहीं पड़ती बल्कि वो दिखाई भी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: ये खासियत है आपकी।
1: मेरा तो बस हंसने हंसाने का भी, मतलब मैंने उद्देश्य बना रखा है कि एक छोटी सी बात कहो तो दूसरा अगला जो है वो खुश हो जाए।
0: मान ली दीदी, मान ली एग्जाम्पल के तौर पे, मान ली आपने कोई जोक मारा, ठीक?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और सामने वाले के ऊपर कोई हलचल नहीं हुई तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हंस दो या जा करके गुदगुदी लगा देते।
1: बस मैं यही करूंगी कि जा करके उसे गुदी गुदी गुदी गुदी गुदी गुदी।
0: क्योंकि ये बचपन में उन्होंने बहुत किया, अभी भी करते दोस्तों।
1: बिल्कुल,
0: दोस्तों
1: बिल्कुल, अभी भी करते। कोई अगर थोड़ी देर तक बात नहीं करता तो लगता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, और जा करके अचानक उसको कहते गुदी गुदी गुदी गुदी, बस वो हंस पड़ता है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: देखिए रुलाना तो बहुत आसान है आज के समय में, लेकिन हंसाना थोड़ा सा
0: मुश्किल है।
1: तो
0: लेकिन प्यारा बहुत है।
1: हाँ, खुशियाँ बांटो उतना ही हमें लगता है कि बेटर है।
0: बिल्कुल सही है। तो खुशियाँ बांटने से पहले कहानी भी तो बांटते हैं हम लोग आज के दिन।
1: हाँ, तो बिल्कुल, बिना कहानी बांटे तो मेरा दिल नहीं भरेगा ना।
0: बिल्कुल, वही मैंने सोचा भाई, गीता दीदी आई है, खाली हाथ आती नहीं है, कहानी जरूर आती है।
1: तो चलिए बहुत टाइम ना लेते हुए और शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है।
0: वाओ,
1: चलिए मन लगा के सुनते हैं इस कहानी को।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत समय पहले इंद्रावती नदी के किनारे घना वन था, इतना घना कि दिन में भी रात नजर आती थी। वहाँ एक चिड़िया और एक चिड़वा कह सकते हैं रहा करते थे, और उनके दो अंडे भी थे। एक दिन क्या होता है कि भयंकर तूफान जैसा अभी चक्रवात आया था, और बिजली उनके घोंसले पर गिर पड़ती है। लेकिन देखिए तो ईश्वर की कृपा, इसको चमत्कार ही कहना चाहिए कि दोनों पक्षी के अंडे बिल्कुल सुरक्षित उस तूफान में भी बच गए। कई महीने बीत गए लेकिन बच्चे जो थे अंडों से बाहर नहीं निकले थे। चिड़िया और जो चिड़वा था वो बहुत परेशान था। और फिर क्या हुआ कि ज़्यादा दिन हो गया बच्चे नहीं निकले अंडे से, तो चिड़वा ने उन्हें खराब समझकर वन के दूसरे हिस्से में छोड़ करके उनको चले गए। कुछ समय बाद पहला अंडा फूटा तो उसमें से चूजे के बजाय एक बछड़ा निकला, और दूसरे अंडे से एक बच्चे का जन्म हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भाई माना और फिर साथ साथ रहने लगे। बछड़ा 10 पल बड़ा था, यानी पहले हुआ था, इसलिए वह स्वयं को बड़ा भाई मानता था, और जो बच्चा था, बालक था, वो थोड़ी देर में पैदा हुआ था इसलिए वो छोटा भाई था, इसलिए बड़े भाई का फर्ज वो बछड़ा बखूबी करता था। बालक ने उसका नाम प्यार से बैल भैया रखा। कुछ समय बाद बैल ने बालक का नाम ननकू रख दिया क्योंकि वो छोटा था। ननकू को धूप और सर्दी से बचाने के लिए बैल ने उसे एक झोपड़ी बनाने को कहा। ननकू ने अपने साथ बैल के लिए भी एक झोपड़ी खूब प्यारी सी बना दी। भाई का प्रेम देखकर बैल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पूंछ से ननकू की झोपड़ी को छुआ तो वह एक सुंदर से घर में बदल गई, और उसमें गृहस्थी का सारा सामान भी आ गया। बैल ने अपने लिए बनी झोपड़ी को वैसा ही रहने दिया। कुछ समय बाद बैल ने ननकू के विवाह के बारे में सोचा तो वो उसे एक पोखर के पास ले गया जहाँ पर परियां स्नान किया करती थीं। वहाँ ननकू को एक सुंदर परी पसंद आ गई और परी भी ननकू को चाहने लगी। ननकू ने कहा कि वह अपने बड़े भाई की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा। बैल ने दोनों की खुशी से शादी कर दी। एक दिन उसी वन में एक राजा आया। अब परी की सुंदरता देखकर वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने ननकू को धमकाते हुए कहा कि मेरे लिए सूरज की तरह चमकने वाला लाल पत्थर लाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को मैं उठा ले जाऊंगा। बैल ने ननकू की रक्षा का वचन दिया। परी ने अपनी जादुई शक्ति से वह लाल पत्थर लाकर दे दिया। बैल ने ननकू को समझाया कि राजा को बताना कि पत्थर वह स्वयं लाया है। राजा को विश्वास हो गया कि जब तक बैल जीवित है वह परी को नहीं पा सकता है, तो उसने अपने शक्तिशाली भैंसे से बैल का युद्ध करा दिया। भयंकर युद्ध हुआ। लड़ाई के बाद बैल ने भैंसे को भी हरा दिया। राजा की दूसरी चाल भी असफल हो गई। अब राजा ने एक गुनिया से विषैली बूटी लेकर बैल को मारने की योजना बना डाली। उसने मित्रता का बहाना करके ननकू के घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया। भोजन के समय राजा ने बैल का ध्यान भटकाकर उसकी थाली में बिस्मिला भोजन रखने की कोशिश की, लेकिन बैल भी बहुत चतुर था। उसने अपनी थाली पर बने छोटे निशान पहचान लिया और राजा ने थालियां बदल दी। बैल ने चालाकी से राजा की को उसकी ही थाली खाने पर मजबूर कर दिया। राजा को कुछ पता ही नहीं चला। भोजन के बाद राजा महल की ओर जाने लगा और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा विष का असर होने लगा और वो वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। ननकू ने पूछा, भैया राजा का क्या हुआ? बैल ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने ननकू को राजा की पूरी दुष्ट योजना बता दी। अब दोनों भाई खुशी खुशी घर लौट आए। परी भी बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद परी ने दो बच्चों को जन्म दिया। अब बैल, ननकू, परी और उनके दोनों बच्चे प्रेम से रहने लगे। तो क्या समझे अदनान? सच्चा प्रेम हो जहाँ जहाँ पे भाईचारा हो और जहाँ पे बुद्धिमानी हर कठिन परिस्थितियों में रक्षा करती हो। जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है अंततः उसे अपनी ही करनी का फल भुगतना पड़ता है। बात समझ में आई?
0: बिल्कुल। ये बात तो सही कहा आपने कि जो जैसा करता उसको भुगतना ही पड़ता
1: है। हाँ, आगे पीछे थोड़ा देर से, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है।
0: सच्ची
1: ये तो प्रकृति का नियम है।
0: करेक्ट, सही बात है। और फिलहाल गीता दीदी का नियम है, पहले स्टोरी सुनाना फिर आपसे पूछना कैसी लगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बनता ही है कि भाई आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो आकर के चैट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी।
0: कैसी लगी, बिल्कुल सही बात है। आप आके फटाक से कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ ये भी गीता दीदी का रूल है कि वो जाती तो हैं लेकिन बस कुछ राइमिंग सुना करके बच्चों के साथ वापस आती है।
1: हाँ, जाती हैं और फिर भीड़ लेके वापस आती
0: है। भीड़ लेकर वापस आती, पूरा अपना काफिला बच्चों के साथ लेकर के। तो चलिए भाई, गीता दीदी को देते हैं इजाज़त ताकि वो बच्चों को ला सके। लेकिन आप ज़रूर बताइए कि भाई आपको ये कहानी कैसी लगी।

0: घर जाएके नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएके।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: पलट के जादूगर नू ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ?

के राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।

0: WXYZ. Now I know my ABCs.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो सब?
0: बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई मैं तो आ गई हूँ अपने इन शैतान हम्प्टी डम्प्टी की टीम को लेकर के हम्प्टी डम्प्टी के मंच पे, और समय हो चुका है हमारे प्रोग्राम शुरू करने का। तो हमारे साथ है हमारी प्यारी सी सानिध्या, हमारे साथ है हमारी प्यारी सी रीता।
1: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते। और हमारे साथ है हमारे क्यूट से अमित जी।
0: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते। और सत्यम तो है ही साथ
3: ही,
2: बहुत सारे बच्चे। भाई समय हो रहा है, सबकी मतलब परिचय मैं कराती रहूंगी, लेकिन अभी जो है मुझे कोई बहुत घूर घूर के देख रहा है। बताओ तो कौन है बच्चों, कौन घूर घूर के देख रहा है?
3: सानिध्या।
2: सानिध्या को ये रहता है कि मैं आ गई हूँ टाइम से और दीदी मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं करवा रही हैं।
1: जी दीदी, बहुत अच्छी।
2: और इतनी तैयारी से वो आती है तो फिर घूर घूर के देखना तो बनता ही है।
1: बनता है दीदी।
2: तो चलो भाई मैं देर नहीं करूँगी, और मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए हमारी सानिध्या को। तो सानिध्या आज क्या सुनाने वाली हो?
4: दीदी भजन।
2: ये देखो भाई, भजन सुनाने वाली। प्रोग्राम की शुरुआत आज बहुत प्यारे से भजन से होने वाली है। तो चलो सब लोग भाई सानिध्या का साथ दे देना, क्योंकि भजन तो मिलजुल के किया जाता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो चलो।
4: मैंने तेरे ही भरोसे

0: बहुत प्यारा भाई, तालियां हो जाए सानिध्या के लिए, इतना प्यारा भजन सुनाती है कि मजा आ जाता है। तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा शांत हो गई हैं सानिध्या, क्योंकि उनका इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस था कि मेरा तो मन कर रहा मैं फिर से यही गाना गाने लगूं।
1: जी दीदी, बहुत सुंदर।
0: तो चलो चलते हैं सत्यम की ओर। और सत्यम, आज क्या सुनाने वाले हो, क्या बताने वाले हो? सुनाने वाले नहीं, बताने वाले क्या हो?
2: दीदी आज मैं कहानी बताऊंगा, एक मोटिवेशनल कहानी।
0: अरे वाह, कहानी
2: जी।
0: चलो तो ठीक है, सुना दो।
2: एक लड़का बार बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहा था।
0: हाँ।
2: हर बार लोग कहते अब छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा।
0: अरे ऐसा?
2: हाँ दीदी। एक दिन वह बहुत टूट गया। उसने अपने पिताजी से कहा, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ।
0: ये तो डिमोटिवेशन हो गया ना।
2: जी दीदी। पिता उसे खेत में ले गए और एक बीज हाथ में देकर बोले, इसे जमीन में डालो। कुछ दिनों बाद बीज से छोटा सा पौधा निकल आया। पिताजी ने कहा, बीज ने मिट्टी के अंधेरे को देखकर हार नहीं मानी, उसे पता था कि ऊपर रोशनी है। लड़का समझ गया। उसने फिर से कोशिश की। इस बार पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन उसका चयन हो गया। उसने अपने पिताजी से कहा, मैं जीत गया पापा। पिताजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम उसी दिन जीत गए थे जिस दिन असफल होकर भी तुमने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया।
0: बहुत अच्छी बात भाई। यही तो मैं कहती हूँ कि अगर कम नंबर आ गए हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, फिर से मेहनत करनी चाहिए और फिर से आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, है ना? क्यों?
1: कभी हार नहीं माननी चाहिए। जी
0: बिल्कुल, बिल्कुल। जिंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए।
3: एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता।
1: प्रयास कभी ना कभी दीदी सफलता तक जरूर पहुँचाता है।
0: बिल्कुल। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और एक दिन आप लोग भी सफल व्यक्ति कहलाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी।
2: इस समय हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए कुछ बच्चे थोड़े परेशान होंगे, इसलिए मोटिवेशनल कहानी।
0: थोड़े नहीं, बहुत परेशान होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े परेशान होंगे, होता ऐसे कि जैसे कि अगर कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स ले आया है
2: जी,
0: तो अपने को लगता है कि अब मेरा कम रह गया है, अब मैं क्या करूं, है ना? और फिर पेरेंट्स भी कहते उसका कैसे ज्यादा आ गया, तुम्हारा कैसे?
1: बिल्कुल।
0: तो ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को हौसला देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसको कुछ प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ता रहे। और ऐसा नहीं है कि कभी कोई सफल नहीं होगा, अगर एक आगे जा रहा तो हम भाई देखिए, हमें तो प्रतियोगिता में शामिल ही होना है।
2: जी दीदी।
0: आप अगर आगे दौड़ रहे हैं तो मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको भी क्रॉस कर जाऊं, आपको भी पिछाड़ दूं।
2: जी दीदी।
0: तो चलिए बातें होती रहेंगे, अब तो बातें बातूनी बहुत है ना।
1: दीदी बच्चे इतने सारे हैं, तो आप दीदी हैं तो आप ही से तो बात करेंगे हम सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो चलते हैं अब रीता की ओर। रीता आज क्या सुनाने वाली है?
1: जी जैसे कि पितृ चल रहे हैं इस समय।
0: हाँ हाँ हाँ। तो मेरे घर भी आज दावत है और यहाँ पे मैं सुगंध ले रही हूँ, खूब अच्छा अच्छा सामान मेरे घर बना होगा।
3: आज लगता है आपने खीर बनाई है।
0: खीर मैंने नहीं बनाई है, लेकिन खीर बनी है।
3: बनी है।
1: तो दीदी उसी
0: मैं तो यहाँ
1: असर पर
3: खीर की महक यहाँ तक आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। महसूस कर रही हूँ कि अभी जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं घर जाऊंगी और सारे लोग खा चुके होंगे।
1: दीदी हम सब भी तो हैं।
0: बिल्कुल, सबको लेके चलते हैं घर।
1: दीदी अकेले कैसे आप
0: खाएंगे? नहीं, आज तो सभी मेरे घर जाएंगे, सभी।
1: बिल्कुल दीदी। तो उसी अवसर पर हम चार लाइनें भजन की गाना चाहते हैं दीदी।
0: बिल्कुल।
1: पितरों का मन से तू ध्यान धर ले, कुल के देवों का सम्मान कर ले। पितरों का मन से तू ध्यान धर ले, कुल के

0: ये हरदम सहाई है, ज्योति जला के शुभ काम कर ले, कुल के देवों का सम्मान कर ले, पितरों का मन से तू ध्यान धर ले, कुल के देवों का सम्मान कर ले, कट कष्टों से हमको बचाते हैं, विपदा का भान कराते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कष्टों से

0: कर ले ओ, पितरों का मन से तू ध्यान धर ले, कुल के देवों का सम्मान कर ले, मन से जो इनको ध्याता है सुख संपत्ति वो पाता है, मन से जो इनको ध्याता है सुख संपत्ति वो पाता है, पितरों का नाम सुबह शाम जप ले, कुल के देवों का सम्मान कर ले।
1: बहुत बहुत बहुत सुंदर बात कही और भजन के माध्यम से, और मुझे तो लगता है कि ये एक दिन की तो बात नहीं होनी चाहिए।
0: जी दीदी, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
1: हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, है
2: जी दीदी बिल्कुल,
1: जीते जी हमको उनको ध्यान उनका करना चाहिए, है ना
3: जी।
1: मरने के बाद देखिए, मेरा अपना तो ये है कि जैसे कि कौवों को एक दिन खाना देने से क्या होगा, कुत्तों को एक दिन खाना देने से क्या होगा, गायों को एक दिन खाना देने से क्या होगा,
0: बिल्कुल दीदी,
1: है ना। तो भाई जो हमारे आसपास जो ये जानवर हैं, मूक जानवर जो कह नहीं सकते मुझे कितनी भूख लगी है, किसी को बता नहीं सकते हैं अपनी पीड़ा, हमें थोड़ा सा उनका एहसास करना चाहिए कि वो भी भूखे होंगे, और अभी क्यों, हमेशा उनके लिए हमें।
0: जी दीदी, आपको बताएं, हम छत पे बाउल में पानी रखते हैं मिट्टी के प्याले में,
1: बहुत,
0: और अनाज रखते हैं, और जैसे नमकीन है थोड़ी पुरानी हो गई तो हम सोचते हैं इधर उधर डालने से अच्छा पक्षियों को डाल दिया,
1: डाल देना तो चाहिए, वो खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है,
0: रहते हैं दीदी हमेशा।
1: तो चलो भाई एक बार रीता के लिए ताली तो बजाना।
0: थैंक यू।
1: देखिए जो बच्चे ऐसा करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं तो ऐसे ही एनिमल लवर्स हूँ, कोई भी जानवर हो, कोई भी बर्ड हो, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, हम हमेशा उनका ख्याल रखते हैं।
2: जी दीदी,
1: देखो मेरे बैग में हमेशा कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह पड़ा ही रहता है जब भी मैं जाता, और मुझे मालूम है, एक मैं तुम लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे 4-5-6 कुत्ते जो हैं मुझे फॉलो करते हैं।
0: ओ दीदी,
1: और मुझे चौराहे तक छोड़ने जाते हैं, और जब मैं किसी ऑटो ऑटो में बैठ जाती हूँ तो फिर वो वहाँ से वापस आ जाते
0: हैं
1: मुझे बैठाल करके, और सारे लोग बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि देखो भाई इनकी सेना चल पड़ी है इनको छोड़। और जब वापस मैं आती हूँ तो वो वहीं पहुँच जाते हैं, वहाँ से मुझे ले करके घर तक आते हैं। तो ये प्रेम होता है, अगर हम उनका उनकी देखभाल कर रहे हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत सोचते हैं।
0: जी दीदी जी, बहुत वफादार होते हैं।
1: देखिए वो मतलब प्रोटेक्ट करते हैं हमको, वहाँ तक छोड़ने जाते हैं, वहाँ से लेने जाते हैं, ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है।
2: जी दीदी,
0: और दीदी अगर उन्हें एक बार खिला दो ना तो आपको जब मिलेंगे तब वो मुंह उठा के ऐसा लगेगा जैसे मुँह से कह रहे हैं मुझे फिर से दो, मुझे फिर से कुछ दो।
1: मैं तो रखे रहती हूँ बिस्किट विस्किट, जैसे मुझे घर में
0: मेरे रात में यही होता
1: रखा
0: है,
1: रखा गया तो मैं बैग में डाल लेती हूँ।
0: जी दीदी, नहीं अच्छी बात है,
1: बिस्किट है, टॉफी है, कुछ ना कुछ मेरे बैग में ऐसे पड़ा रहता है, कोई बच्चे भी बाहर जैसे छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो एक बार,
0: इसलिए तो आपको दीदी कहते हैं हम लोग।
1: दुकान पे गए, देख बच्चा इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, और शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे लोग वहाँ पे। अच्छा। जो उनके साथ थे, तो फिर वो बच्चा ऐसे रोता जा रहा था, मुझे भी देख रहा था, मैंने बस झट से टॉफी निकाली और उसको यूं दिखाया,
0: बस चुप हो
1: बस
0: गया।
1: वो चुप हो गया और यूं हाथ बढ़ा करके टॉफी ले ली, मैंने उसको गोद में भी ले लिया और तुरंत वो चुप भी हो गया। तो जब हम बाहर चलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमको भी अपने बैग के अंदर रखनी चाहिए।
0: दीदी हमको लग रहा है सानिध्या को भी चाहिए, आप ही को देख रही है।
1: सानिध्या भी फिर से दोबारा कुछ लेकर के बैठी हुई है कि अब मैं ये सुनाने वाली हूँ। सानिध्या क्या सुनाओगी इसके बाद?
4: दीदी कहानी।
1: देखा मैंने क्या कहा था?
0: दीदी कहानी।
1: देखिए कहानी,
3: बहुत सारी अच्छी चीजों का खजाना लेके आती है अपने साथ,
1: बिल्कुल
3: कहानी, भजन, कविता।
1: एक जी नहीं भरता, वो पूरा एकदम अपना स्कूल बैग लेकर के साथ में चलती है। तो चलो सुनते हैं सब लोग सानिध्या की कहानी। वैसे सानिध्या की बोली कितनी प्यारी है ना,
3: बहुत अच्छी लगती है।
1: तो चलो सुना दो सानिध्या प्यारी सी कहानी।
4: एक गांव में मूर्तिकार रहता था, उसके पास दो एक जैसे पत्थर थे। उसने पहले पत्थर से कहा, मैं तुझसे भगवान की मूर्ति बनाऊं। पहला पत्थर बोला, नहीं, छानी हथौड़ी की चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर दूसरे पत्थर ने कहा, हाँ बनाओ, चाहे जितनी भी चोट लगे मैं सहूंगा। मूर्ति तार ने दूसरे पत्थर तो तराश कर कृष्ण की सुंदर मूर्ति बना दी और मंदिर में स्थापित कर दी। पहला वाला पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगा दिया। एक दिन सीढ़ी वाला पत्थर बोला, लोग तेरी पूजा करते हैं, मुझ पर पैर रखते हैं, ऐसा क्यों? मंदिर वाला पत्थर बोला, तूने चोट से बचने के लिए थोड़ा तो तोड़ने नहीं दिया, इसलिए लोग तुझ पर और पैर रखते हैं, मैंने चोट सही, इसलिए पूजा हो रही है।
1: देखो कितनी अच्छी कहानी की, मतलब दो तरीके के पत्थर थे, एक ने कहा कि नहीं मैं चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उसको भाई कम ठोक पीट करके सीढ़ियों पे बिठा दिया गया, और दूसरा वाला बोला ठीक है आप जैसा चाहे मुझे आकार दे दीजिए, मैं चोट सहने के लिए तैयार हूँ। तो वो मूर्ति बन गया, कहने का मतलब समझ में आया। इतनी शानदार कहानी कहाँ से लेके आती हो भाई आराध्या, बहुत प्यारी कहानी है। तो कहते हैं कि जो मेहनत और संघर्ष से दूर भागता है
5: जी वो कुछ नहीं,
1: तो दुनिया में दुनिया उसे जो है सीढ़ी बना लेती है, मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे सीढ़ी जैसे पत्थर बन जाओगे, लेकिन जो हर चोट सहकर खुद को तराशता है दुनिया उसी की पूजा करती है।
5: जी दीदी
1: ये बिल्कुल बात, तो हमें क्या करना चाहिए, मेहनत से घबराना चाहिए?
5: नहीं दीदी,
1: हाँ मेहनत से बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है हमारी आराध्या ने, सानिध्या ने, आराध्या आज, हाँ आज भी आराध्या नहीं दिखाई दी है, आराध्या भी
0: दीदी आजकल सिराज चल रहे हैं ना,
1: हाँ बच्चे इधर
0: तो बच्चे का घर पे रहना भी जरूरी है।
1: एक और कहानी सुनाना चाहती हो?
4: जी दीदी।
1: तो भाई देखो ले लेते हैं एक छोटा सा अर्धविराम, उसके बाद सुनते हैं तुम्हारी कहानी, क्योंकि समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।

आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो भाई ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हो गए हैं और अब तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी मौका देना है। लेकिन अभी सानिध्या लेकर के बैठी है कि कुछ और सुनाना चाहती है, पर थोड़ी से देर रुक जाओ सानिध्या प्लीज, है ना। आपके भैया लोग हैं, उनका भी तो नंबर आने वाला है ना, तो इसके बाद हम आपको नंबर देते हैं, फिर आप सुनाइएगा और सब बच्चे सुनेंगे ना। इसकी अभी बहुत अच्छी सी बातें सुनाने वाली है, तो चलिए अमित के साथ चलते हैं। और अमित आज क्या सुनाओगे हमें?
1: जी मैं जैविक कृषि के बारे में बताऊंगा।
0: जैविक कृषि,
1: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर।
0: तो जो हम लोग घर पे थोड़ा बहुत मतलब शौक पूरा करते वो कैसी कृषि होती है? जैविक ही होती है ना?
1: जी जैविक ही होती है।
0: कि कुछ मैं तो क्या करती हूँ ना कि जो उपले होते हैं ना उसको एकदम चूरा बना करके और अपनी जो भी
2: खाद बना करके समझ गए दीदी।
1: वो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा असरदार तरीका है।
0: अच्छा अच्छा, तो घर पे भी भाई देखिए हम आजकल लोगों के पास रहने की जगह नहीं है तो वृक्षारोपण
2: करें तो कैसे?
0: हाँ, कैसे करें? लेकिन जो शौकीन लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपना सपना थोड़ा बहुत पूरा
2: कर
0: ही लेते हैं, अपने गमलों में ही लगा लेते हैं। और हमें तो बड़ी खुशी मिलती है जब कोई चीज गमले में पेड़ लगाओ फिर धीरे से वो बड़ा होता
2: है,
0: फिर
2: पत्ती देखते हैं दीदी, हम
0: फ्लावर निकलता है, फिर उसमें से फ्रूट भी आते हैं, तो देखते देखते
1: मेहनत का फल देखने में अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छा लगता है सच में,
2: पर डे सुबह जाकर देखने का मन होता है आज कितना ग्रोथ हुआ।
0: तो चलो अब मिलते हैं हम अमित जी से और देखते हैं क्या वो जानकारी देते हैं कि हम कितना उससे फायदा उठा सकते
1: जी। हम बात कर रहे हैं ऐसी खेती की जो सिर्फ खेत में फसल नहीं उगाती बल्कि मिट्टी पानी और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। नाम है जैविक कृषि दोस्तों।

0: कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डालते हैं। भारत में जैविक खेती कोई छोटी पहल नहीं है। सरकार के NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 22.54 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि प्रमाणिक जैविक थी और लगभग 17.14 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती में परिवर्तन की प्रक्रिया में थी, यानी करीब 39.68 लाख हेक्टेयर भूमि NPOP के अंतर्गत इन दोनों श्रेणियों में थी। इसी अवधि में लगभग 43.91 लाख टन प्रमाणित जैविक खेती उत्पादन दर्ज किया गया है और भारत ने 2024-25 में लगभग 3.68 लाख टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया है।
1: जी,
0: यानी जैविक खेती अब सिर्फ खेत की बात नहीं है, यह एक बड़ा कृषि और व्यापार क्षेत्र भी बन रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां कोई चीज लोकप्रिय होती है वहीं गलत लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैविक उत्पादों के मामले में ऐसी समस्या सामने आती है। कभी कभी सामान्य उत्पादों को ही ऑर्गेनिक या 100% जैविक बताकर अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश की जाती है, जबकि वो नॉर्मल रहते हैं लेकिन उसके पैकेट पर लिख दिया जाता है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट।
1: तो उसमें कोई ना कोई वो जो मिक्सिंग और मतलब और कुछ भी गलत चीज।
0: सामान्य उत्पादों को भी उसका मूल्य बढ़ाकर बेचा जाता है।
1: तो इस हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप मतलब हम लोग तो बड़े स्तर पर नहीं करते हैं, लेकिन जो भी घर में है, बहुत से लोग शौकीन होते हैं अपने खेतों के ऊपर भी खेती करना शुरू कर दिए, तो उसे कुछ नहीं मिलता है तो घर के लिए छोटी मोटी सब्जियां जो हमारे यहाँ जितनी जरूरत होती उतनी तो हमें मिल सकती है,
0: उसको अपने होम किचन के लिए उगा सकते हैं। इसको पहचानने का एक तरीका भी है कि भारत में प्रमाणिक जैविक उत्पाद के लिए जैविक भारत जैसी आधिकारिक पहचान और प्रमाणन तंत्र मौजूद है, इसलिए खरीदते समय प्रमाणन और लेबल की जानकारी को जरूर देखना चाहिए। और एक राज्य ऐसा भी है सिक्किम, जो 2016 में पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है।
1: जी,
0: सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है।
1: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो भाई ताली तो बनती है अमित जी के लिए। तो अब किसको मौका देना चाहिए? सानिध्या कह रही है मुझे मौका दे दीजिए, तो चलो दे देते हैं, है ना?
2: चलिए दीदी,
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो सुना दो भाई। देखिए, अभी 2 अक्टूबर बीता है, यानी दो जो है देश के महा नायक कह सकते हैं, एक तो शास्त्री जी, दूसरे हमारे गांधी जी, उनकी जो जी। लेकिन आज जो सानिध्या जो मन बना के आई, मुझे बता रही थी कि आज मैं शास्त्री जी के बारे में बात करूंगी।
2: जी दीदी, हमें भी जानकारी मिलेगी।
1: बिल्कुल, सभी सुनिए भाई। देखिए, सानिध्या हमारी बताने वाली है छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे शास्त्री जी का जीवन परिचय।
3: लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही बहुत साधारण और ईमानदार थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह मेहनत और आत्मसम्मान तो बहुत महत्व देते थे। एक बार उन्हें अपना विद्यालय जाने के लिए नदी पार करनी थी। उनके पास नदी का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी से पैसे मांगने के बजाय नदी तैर तैर पार करने का निर्णय लिया।
1: वाह,
4: ये मतलब बहुत ही फेमस कहानी है।
3: तैर स्टूल जाने लगे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह मानते थे कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आगे चलकर यही साधारण बालक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका जीवन में हमें सादगी, ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल बच्चों, भाई ऐसे ही मेहनत करिए। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं तो कोई भी परिस्थितियां जो होती हैं वो बिल्कुल आसान हो, मतलब कर सकते हैं हम।
2: बिल्कुल दीदी,
1: है ना? ये नहीं, ये तो बहाने होते कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। और ये कब की घटना है, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, ये इतनी पुरानी घटना है। तो बस यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे जितनी भी कठिन हो, हमें क्या करना है, हमेशा परिश्रम करना है, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास का साथ हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही हमको हमारी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बन जाते हैं, है ना बच्चों?
2: जी दीदी।
1: तो

0: हमारे अथर जी बता रहे थे थोड़ा सा मैं अभी बता,
1: हाँ, तो ये जो कहानी है जो जब वो विद्यालय जाते थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो उस नदी को वो तैर के पार करते थे। तो जैसे कि हम लोग, ये बहुत ही फेमस कहानी हम सभी ने सुनी होगी, तो यही दिखाता है कि मेहनत, लगन अगर आपको पढ़ाई के लिए है तो आप पढ़ाई में एक सबसे कह सकते हैं हाई लेवल अचीवमेंट पा सकते हैं। तो यही मेरा
0: अच्छा एक छोटा सा जो है एक मतलब विश करना है किसी को, एक प्यारी सी बच्ची है राधिका, जल्दी ही वो हमारे हम्प्टी डम्प्टी की मेंबर बनने वाली है, आज उसका बर्थडे है, तो सब लोग बच्चों बोल दो एक बार हैप्पी बर्थडे राधिका, हैप्पी
2: बर्थडे राधिका बेटा।
0: तो चलिए बहुत अच्छी। और हमें मालूम है, मैंने पढ़ा था एक पुस्तक में कि शास्त्री जी जो थे, जब जिस स्कूल में जाते थे वो उनके घर से काफी दूर था और बीच में गंगा नदी थी और उस पार इनका विद्यालय था
3: जी दीदी।
0: तो जब ये पैसे तो थे नहीं इनके पास, नाव वाला यूं ही क्यों बैठा लेगा, तो इन्होंने कहा कि किससे रोज रोज हम मांगेंगे, छोड़ो हम तैर करके गंगा नदी जाएंगे। तो इनकी शर्ट भीग जाया करती थी हमेशा, और शर्ट भी इनके पास ज़्यादा नहीं थी
3: जी,
0: एक ही शर्ट से गुजारा करते थे, और इसलिए वो बहुत पहले घर से निकलते थे और पैदल चल करके गंगा नदी तक, और उसके बाद वो उसको क्रॉस करते थे नदी को, फिर वहाँ पर ये थोड़ी देर शर्ट उतार करके उसको सुखाने का भी काम करते थे, यानी धूप में बैठ जाया करते थे ताकि उनकी शर्ट थोड़ी सूख जाए। तो इतनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना विद्या अध्ययन किया और देखिए क्या बने देश के। हाँ
3: जी दीदी,
0: मेरे ख्याल से दूसरे प्रधानमंत्री थे ये
3: जी, दूसरे नंबर
0: हाँ, नेहरू जी के बाद यही बनाए गए हैं। तो चलते हैं हम अथर्व के पास, और अथर्व आज क्या बताने वाले हो?
1: तो दीदी आज जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही फेमस कह सकते फ्रीडम फाइटर के ऊपर है, जो हमारी इंडिया से ही है, और ये जैसे कि एक वूमेन है, और अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे, वैसे बहुत से लोगों ने इनका नाम तो सुना होगा लेकिन इनके पूरे जीवनी के बारे में नहीं जाना होगा, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है इनकी पूरी जीवनी जानने का, लेकिन हम लोग संक्षिप्त में इनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड में। आज मैं जिन वूमेन के बारे में बात करने वाला हूँ, इन्होंने आज से लगभग कह सकते हैं 500 साल पहले, जब ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, ना कोई इनके पास मॉडर्न आर्मी हुआ करती थी, और ना कोई ऐसे कह सकते कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी जैसे आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब एक तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, लेकिन उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने आज हमारी इस भारत को, हमारी जो मॉडर्न इंडिया है, इसको मतलब कह सकते हैं इंस्पिरेशन दिया, और इनका जो नाम है वो बहुत ही फेमस नाम है
0: भाई, नाम बताओ मुझे तो व्याकुलता होने लगती है कि कौन ऐसी पर्सन है कि हम लोग नहीं जानते हैं उनको।
1: तो 2026 में इनके नाम पर यूनिवर्सिटीज बनी थी, टाइगर रिजर्व्स जैसे कह सकते हैं, टाइगर के सुरक्षा के लिए इनके लिए इनके नाम पर ही टाइगर रिजर्व्स बने थे, और कह सकते हैं बहुत सारे सेमिनार्स होते थे और पब्लिक इनिशिएटिव्स होते थे इनके नाम पर। और इन फेमस वुमेन का नाम है,
4: जी एक गैस है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज में पढ़ता रहता हूँ, टाइगर रिजर्व की आपने अभी बात की
1: जी,
4: तो मैं भी अभी आपने थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हिंट दे दी है मेरे हिसाब से, सो मैं भी एक गैस है रानी दुर्गावती मैं भी
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा यश ने, रानी दुर्गावती के बारे में।
1: और टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है, अगर आप टाइगर रिजर्व किसी के सामने बोलते हैं, वैसे उसको इनका नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं उनके सामने अगर आप बोलेंगे कि इनके नाम पे टाइगर रिजर्व हैं, तो वो तुरंत बता देगा कि ये रानी दुर्गावती हैं।
4: मैं जनरल नॉलेज में अपडेटेड रहता हूं, तो मुझे थोड़ा सा ही।
1: तो आज हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन महिला के एक मतलब 500 साल बाद भी इंडिया उन्हें उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज़ बनाता है, उनके नाम पर रिसर्च कर रहा है, उनकी एक मॉडर्न लेगेसी भी है जो इंडिया लेकर के चल रहा है
0: जी।
1: तो जानते हैं हम लोग इनके बारे में। देखिए इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 21 जून 2026 को प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36th कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया था, मतलब एक कह सकती हैं जब उनका 36th कॉन्वोकेशन का एक सेमिनार चल रहा था, तो उसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने हिस्सा लिया था उसमें, और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ रानी दुर्गावती जी की अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताया था बल्कि एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन बनाया था, जैसे कि एडुकेशन का, ट्राइबल कम्युनिकेशन का और कल्चरल आइडेंटिटी का। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, जो उनके ट्राइबल की जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उसको और क्राफ्ट्स को और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारे इतिहास थे जो हम लोग के ऊपर जब गुलाम बनाया गया हम लोगों को, तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग से इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली गई थी, तो हम लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब हम लोग के ऊपर पूरा फोकस है कि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको प्रिजर्व रखें ताकि कोई और बाहर देश का आदमी इस जो इन्फॉर्मेशन इसको चुरा के ना ले जाए। तो इसी सब के प्रिजर्वेशन के लिए ये सेमिनार करवाया गया था। अब जरा सोचिए रानी दुर्गावती जी की लेगेसी का एक मॉडर्न वर्जन। उन्होंने उनकी जो कहानी है सिर्फ बैटल फील्ड में ही नहीं बल्कि उनकी जो पहचान है वो लीडरशिप, गवर्नेंस और अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही है। और अब आता है 2026 का एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न डेवलपमेंट। 24 जून को जबलपुर में उनके 463rd बर्थडे पर, उसके अवसर पर जो मध्य प्रदेश के CM हैं यानी कि मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। अब ये प्रपोजल है लेकिन फाइनल रीनेमिंग नहीं हुई है इसकी अभी, ये सिर्फ एक प्रपोजल भेजा गया था कि जो जबलपुर एयरपोर्ट है उनका रानी दुर्गावती जी के नाम पर रखवाया जाए, लेकिन एक प्रपोजल था, अभी फाइनल रीनेमिंग नहीं हुई है। और इसके साथ ही रानी दुर्गावती की जो लेगेसी है उसको डेडिकेट किया गया, लगभग 100 करोड़ का एक इंस्टीट्यूशन है जो मदन महल के पास में बनाया गया था इन्हीं के नाम पर, और जिसे अभी भी डेवलप किया जा रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, और उनके नाम पर जू और वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे खोले जा चुके हैं मध्य प्रदेश में ही, और उनका मुख्य किला भी मदन महल ही है, जो मतलब उनका एक मदन महल उनका मुख्य किला है जो जबलपुर में ही है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसे कि ये हैं हमारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, अब इनको याद करने के लिए दो अलग अलग टाइप्स के पीपल होते हैं। पहले वो होते हैं जो इनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं मतलब कि माला चढ़ाते हैं और अगले दिन इनको भूल जाते हैं, और दूसरे टाइप के लोग ये होते हैं जो इनकी वैल्यूज़ को, इनकी द्वारा दी गई इंस्पिरेशन को याद रखते हैं, और इन्होंने जो कुछ भी कहा हम लोग को इंस्पिरेशन दिया उसको लेकर के चलते हैं और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
0: जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए वास्तव में कि अगर जो भी जिन्होंने भी हमारे देश के लिए आज मतलब इतनी सोचिए कि इनके नाम पे यूनिवर्सिटीज बन रही हैं,
4: टाइगर रिजर्व
0: बन रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होंगी ना।
3: बिल्कुल,
1: तो जैसे
0: भूलना नहीं चाहिए देश
1: तो
0: के।
1: कंक्लूजन में ये देना चाहूंगा कि अगली बार जब आप रानी दुर्गावती जी का नाम सुने तो सिर्फ अपनी पुरानी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के चैप्टर की तरह इसको मत समझिएगा, उसे एक क्वेश्चन की तरह देखिएगा कि अगर 500 साल पुरानी एक भारतीय महिला आज भी एडुकेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, रिसर्च और पब्लिक इनिशिएटिव्स को इंस्पायर कर सकती हैं, तो उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री शायद कोई युद्ध नहीं होती, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही सारी हैं। और उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री थी कि अपने समय से आगे सोचने की क्षमता, जैसे कि अगर आज
3: दूरदर्शिता थी उनके
1: जी अंदर। अगर हम लोग आज अपने भारत को देख रहे हैं, अगर हम लोग इसी भारत को 100-200 साल बाद देखें, तो यही जो एक हम लोग की अंदर एक इंस्पिरेशन, एक क्यूरियोसिटी आई है कि 100-200 साल बाद हमारा इंडिया कैसे होगा, तो यही गुण इनके अंदर भी था, तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है हमारे बीच में,
3: बहुत ही महान महिला थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम तो शत शत नमन करते हैं रानी दुर्गावती जी को।
3: जी,
0: और चलते हैं हम यश की ओर, और यश आज क्या बताने वाले हैं आप?
4: आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि मतलब आप समझ जाइए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आज हमारी इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना डेवलप कर पाने में, बहुत ही बड़ा एक पल था। देखिए, आज जिस देश को हम रसिया बुलाते हैं पहले वो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता
0: था। जी बिल्कुल,
4: हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है एंड इससे कई सारी कंट्रीज भी अलग अलग हुई थी, जैसे फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन एक्सेट्रा। एंड आज रसिया लगभग उतना ही बड़ा था जितना सोवियत यूनियन था, लेकिन सोवियत यूनियन उस समय पर अपने से मतलब उस समय को अगर हम ले कर चलें उस समय पर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, और ये आज हम बात करने वाले हैं स्पुतनिक वन के बारे में। ये जो हमारी स्पेस एज है, हम आज चांद पर, मार्स पर, वीनस पर, ऐसे कई सारे जो प्लैनेट्स हैं पूरे हमारे स्पेस को एक अच्छे तरह से स्टडी कर पा रहे हैं। उसकी धरोहर ये जो नींव थी वो सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक वन के द्वारा ही रखी थी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष रेडियो प्रोग्राम और आज का टॉपिक है स्पुतनिक वन। आज हम सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और इंटरप्लैनेटरी मिशंस को सामान्य बात मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इंसान ने अर्थ के बाहर केवल नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज को ही देखा था, जैसे चांद या वीनस या हमारे जिसे हम कहते हैं वीनस, जैसे इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार देखा कहते हैं, जो कि आसानी से दिख जाता है। लेकिन आज हम इतने एडवांस टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स, इन सब टेलीस्कोप सैटेलाइट्स, इन सब के द्वारा जो हम चीज़ों को, दूर दूर चीज़ों को देख पाते हैं, ब्लैक होल्स को स्टडी कर पाते हैं, ये सब शुरुआत, इन सब की शुरुआत ही स्पुतनिक वन ने की थी 4 अक्टूबर 1957, और आज के दिन ही इसे लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर आज ही है इंसान ने पहली बार एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस किया था। उसका नाम था स्पुतनिक वन। अब आइए जानते हैं स्पुतनिक वन असल में है क्या। स्पुतनिक वन को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल अर्थ सेटेलाइट था। इसका आकार लगभग 58 सेंटीमीटर डायमीटर का स्फेरिकल बॉडी था, और 58 सेंटीमीटर लगभग हमारी जो टेबल है उसका भी आधा। सोचिए, सिर्फ इतना आधा डायमीटर का एक स्फेरिकल बॉडी था, और इसका मास लगभग 83.6 किलोग्राम था। इसके बाहर 4 लॉन्ग रेडियो एंटीनास लगे थे, जिनकी मदद से सैटेलाइट ने पृथ्वी पर सिग्नल्स ट्रांसमिट किए। स्पुतनिक वन का लॉन्च बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम से हुआ था। ये भी एक रॉकेट टाइप ही था, सोवियत यूनियन ने उस समय पर डेवलप किया था। अब इसकी फिजिक्स क्या है, लेकिन एक सवाल था, स्पुतनिक वन अर्थ पर गिरा क्यों नहीं। इसका आंसर है ऑर्बिटल मोशन। अब देखिए, ये सवाल आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, या फिर बहुत साधारण सा है। सैटेलाइट्स जाते हैं, वहाँ पर प्लेस कर दिए जाते हैं, हमारे अर्थ की जो लो ऑर्बिट है वहाँ पर प्लेस कर दिए जाते हैं, एंड वो अपना काम करते रहते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट किया करते हैं, जो नई इन्फॉर्मेशन या फिर
0: पहुँचाते रहते हैं,
4: जितने भी चीज़ें हैं, जियो स्टेशनरी चीज़ें, वो जितनी है इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाते रहते हैं थ्रू द सिग्नल्स। बट उस समय पर ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि अर्थ के लो ऑर्बिट में, जहाँ पर ग्रेविटी होती है, कम होती है लेकिन होती ज़रूर है, उस जहाँ पर आप ये क्वेश्चन उस समय पर पूछ सकते थे, और जो कि बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन था कि वो घिरा क्यों नहीं। हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो क्यों नहीं गिरा, उस पर भी तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा ना। तो यही चीज़ है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। इसका आंसर है ऑर्बिटल मोशन। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्पुतनिक वन को लगातार अर्थ की ओर खींच तो रहा था, लेकिन स्पुतनिक वन के पास बहुत हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इसलिए वह लगातार अर्थ की ओर फॉल करता रहा, लेकिन अर्थ की कर्व्ड सरफेस भी उसकी नीचे से दूर होती रही। इस बैलेंस के कारण वह अर्थ की ऑर्बिट में बना रहा, यानी सैटेलाइट वास्तव में कंटिन्यूसली फॉलिंग अराउंड द अर्थ तो हो रहा था, लेकिन इतनी हाई वेलोसिटी होने के साथ। देखिए, जब भी आपने अभी पढ़ा होगा,
0: दो फोर्सेस काम कर रहे थे,
4: एंड आप देखिए, कोई भी मान लीजिए सर्कल है, उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ है, अब वो जो ऑब्जेक्ट उस सर्कल को जो रिवॉल्व कर रहा है, अब वो ग्रेविटी लगा रहा है उस सर्कल, मान लीजिए वो सर्कल अपनी तरफ उसको खींच रहा है, लेकिन वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो खींचते तो जा रहा है लेकिन वो एक दिशा में नहीं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ है वो अगर एक सर्कल में रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है, रोटेट तो अलग चीज़ होगी, रिवॉल्व अगर करती है एक सेंटर के पॉइंट के अराउंड, तो वो लगातार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है। वेलोसिटी आप सोच रहे होंगे, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी।
0: हाँ, तो यही कारण था कि जो
4: इसलिए, क्योंकि देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास एक डायरेक्शन होती है, लेकिन जब हम एक सर्कल में चल रहे होते हैं तो हमारी डायरेक्शन जो है अलग अलग चेंज हो रही होती है, अब इसीलिए हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। अब हम बात करते हैं द फेमस बीप की। स्पुतनिक वन ने अर्थ पर सिंपल रेडियो सिग्नल्स भेजे, बीप बीप बीप। ये सिग्नल्स पूरी दुनिया में रेडियो रिसीवर्स द्वारा डिटेक्ट किए गए थे। ये छोटा सा सिग्नल ह्यूमैनिटी के लिए एक जाइंट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट था, क्योंकि पहली बार इंसान ने अर्थ के बाहर एक मशीन भेजकर उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी, और ये उस समय पर बहुत ही बड़ी चीज़ थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों था, अब देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, खुद में ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था। इसने स्पेस एज जो है हमारा, मॉडर्न स्पेस एज, हम आज चांद तक पहुंच पा रहे हैं, हमारा तिरंगा चांद पर है, हमारे रोवर्स चांद पर हैं, हम मार्स तक अपने रॉकेट्स को भेज पा रहे हैं, वो भी साल 2013 में। तो ये तो सिर्फ इंडिया ने किया, बाकी कंट्रीज ने बहुत कुछ अचीव भी किया है, और हम सब ने मिलकर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन इसकी जो पहली नींव थी वो स्पेस एज की जो स्टार्ट थी वो स्पुतनिक वन ने ही रखी थी।
0: तो वो समझे कि हमारी बहुत बड़ी धरोहर है
3: जी।
4: ये उसने ह्यूमैनिटी की जो स्पेस एज है ना, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, नहीं तो हम अर्थ तक ही सीमित रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ से बाहर दूर दुनिया में हमारे सोलर सिस्टम में ये इंटरस्टेलर क्या होता है, इंटरस्टेलर सिस्टम्स और जो हम डिस्टेंस कहते हैं ये होता क्या है, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। हम समझते हैं कि बस सोलर सिस्टम है एंड इस सोलर सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ अभी तो लगती है, लेकिन उस समय पर जब तक स्पुतनिक 1 को हमने नहीं भेजा, उसने इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं भेजी, हम इसको नहीं जान पाते। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़
0: थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सब के लिए। तो वही इस तरीके से देखिए कितनी जानकारियाँ आपको हमारे इस मंच के माध्यम से मिलती रहती हैं और आप ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम सुनते रहिए और जानकारियाँ पाते रहिए। और समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, और तब तक आप चुस्त रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और सुनते रहिए
1: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचक चो गिलिगिलि मल सुलुसुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम जगरदुम चिकिचक चो।

ये लो, ये आपका, ये आपका और ये आपका।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216 9876 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: हाँ जी, और इसी के साथ में फिलहाल संडे स्पेशल ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम जो है वो शुरू हो चुका है। और इस प्रोग्राम में आपको यानी कि हमारे लिसनर्स को पूरा मौका होता है हर संडे दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आकर के अपना टैलेंट शोकेस करने का। यानी अगर आप स्टोरी टेलर हैं या फिर आप अपनी कोई कविताओं को लिखते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या आपकी खुद की कोई स्टोरी गढ़ने वाले हैं, आप स्टोरी टेलर हैं तो भी आप बता सकते हैं, सिंगर है तो भी आप गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है तो प्ले कर सकते हैं। ये सारे मौके मिलते हैं आपको इसी ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम वाले संडे स्पेशल शो में। सो फिलहाल आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। और हमारे साथ में हमारे कुछ कैंडिडेट्स भी जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते भी आप रहने वाले हैं। वैसे आज का संडे थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये जो है ये अक्टूबर का पहले संडे है। जी हाँ, सो कई लोगों की शुरुआत तो 1 तारीख से होती है जनरली, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनकी शुरुआत जो है वो पहले संडे से होती है। अब अगर इस मंथ का पहला संडे देखें तो वो आज ही है और आज से अगर शुरुआत हो रही है सो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और इसीलिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि भाई संडे की जो शुरुआत मानी जाती है बड़ी इत्मीनान के साथ मानी जाती है। सो ऐसा नहीं कि आज तारीख 4 है तो आप मानिए कि भाई 4 तारीख हो गई, बल्कि आप ऐसा भी मान सकते हैं कि पहला संडे है सो आपका अक्टूबर आज से शुरू हो रहा है। इसे कैसा रहेगा ये आइडिया, मेरे ख्याल से ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाला है। सो चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपने को होस्ट आरजे मनु की तरफ और देखते हैं भाई, चूँकि हम दोनों मिल करके इस शो को होस्ट करते हैं सो हमारे साथ में आरजे मनु भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी हालचाल ले लेते हैं। भाई कैसे हैं?
1: जी जी, बस आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं।
0: और आप जैसे जवानों की जवानी बेकार है, तभी तो आशीर्वाद देना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, आपकी दुआओं के बिना हम कैसे रह पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सो मैंने यही कहा, जैसे मैं बता रहा था अपने श्रोताओं को, आपने भी सुना कि भाई कुछ लोगों का दिन तो 1 तारीख से शुरू होता है लेकिन आज 4 तारीख है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका संडे से शुरू होता है। सो इस महीने का पहला संडे, मतलब कह मान सकते हैं कि आज ये महीना शुरू हो रहा है। क्या ख्याल है?
1: आज ही शुरू हो रहा है, और संडे के बिना तो सब, संडे के ही दिन तो फंडे होता है साहब।
0: राइट, संडे के दिन ही तो फंडे होता है और इस फंडे को और भी ज़्यादा स्पेशल आज मिल करके मनाएंगे। सो भाई ये बताइए कि इस संडे का क्या आपका खास प्लान है?
1: इस संडे का खास प्लान ये है कि अभी मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ आप बाटी चोखा खाते हैं वहाँ ले चलिए हमको भी और हमको भी खिलाइए।
0: ओहो हो, बाटी चोखा खिलाना है?
1: जी खिलाना है।
0: हाथ से अपने?
1: नहीं नहीं, हाथ से नहीं।
0: चम्मच
1: अगर
0: से?
1: अगर आप हाथ से भी खिला देंगे तो हम खा लेंगे, इतना तो मोहब्बत में चलता है।
0: मोहब्बत में तो बहुत कुछ चलता है
1: जी,
0: और मुझे लगता है बाटी को देख के खाने की फीलिंग नहीं आती है।
1: हाँ, तब कौन सी फीलिंग आती है?
0: खींच के मारने की। सही बता रहे, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ऐसा लगता है हथेली में पूरी आ जाए।
1: हाँ,
0: तो ऐसा लगता बस अब ये इससे अब निशाना लगाना है बस।
1: लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप काला जाम के साथ और स्पंज के साथ भी लागू कर सकते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: मतलब
0: वो छितर जाएगा। और ये जिसको पकड़ेगा वो बिखर जाएगा।
1: बिखर जाएगा मतलब ये छितरना बिखरना, मतलब जरूरी है कि थोड़ा सा जो स्टफ आपने हाथ में लिया हो वो हार्ड हो,
0: कह सकते हैं। इससे सामने वाले के बिखरने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
1: तो मतलब आज आप हमको काला जाम खिला रहे हैं, स्पंज या फिर बाटी चोखा,
0: जो चाहें आप खा लें।
1: ठीक है, मतलब चाहे बिखर जाए, चाहे छितर जाए, चाहे
0: चाहे घर जाए,
1: चाहे घर जाए।
0: तो भाई हमारे श्रोताओं को आप बता दिए कि आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में ओपन माइक में कौन मौजूद हैं?
1: जी हाँ, वही जिनको कोई जीत नहीं पाया आज तक। हाँ? जो
0: नेपाल ऐसे कहते हैं कि नेपाल को अंग्रेज कभी जीत नहीं, या कोई भी रियासत कभी उस पर
1: हाँ
0: चला नहीं पाई अपनी हुकूमत, तो क्या नेपाल यहाँ मौजूद है?
1: नहीं, नेपाल नहीं, सोचिए मतलब जिनको जीता नहीं जा सके वो कौन हो सकते हैं?
0: जिनको जीता ना जा सके वो हार हो सकती है।
2: अरे नहीं सर, अजीता हूँ मैं।
0: ओ अजीता जी, क्या बात है। अरे मतलब मुझे पता था, ये तो बस जबरदस्ती की ओवर एक्टिंग थी। सो हाय, कैसी हैं आप?
2: सर बहुत अच्छी हूँ मैं।
0: वाह, अच्छा मैं जानना ये चाहता हूँ अजीता जी, कि जैसे आरजेस का संडे तो हम और आरजे मनु जानते हैं कैसा होता है, एक आम इंसान का कैसे होता है, जॉब गोइंग वालों का कैसे होता है, या बिजनेस वालों का कैसे होता है। अब बिजनेस वालों का आरजे मनु हमको पता है कि भाई ज्यादा उनके बिकने के चांसेस होते हैं, लोग फ्री होते निकलते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, खाने का हो, क्लोथिंग का हो, फैशन का हो। सरकारी जॉब या हो गई या प्राइवेट जॉब वाले आराम करते हैं, एक दिन जस्ट मिला है, और जो थोड़ा सा फ्री टाइप होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, हम लोग भी इवेंट देते हैं। और जो अजीता जी टाइप के होते हैं लिखने वाले, क्या अंदाज़ा है आपको, जो लिखने वाले होते हैं उनका संडे कैसा जाता होगा? आरजी मनु पहले आप बताइए, फिर हम खुद ही अपने लिखने वाली से पूछ लेते हैं।
1: मतलब किस वाले संडे की बात करें?
0: मैंने कहा संडे सबका अलग जाता है, आरजेस का होता है कि भाई वो भी चिल करते हैं जिनकी ऑफ होता है, या काम बढ़ जाता है कई बार, ठीक है, संडे संडे जैसा लगता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। बिजनेसमैन का होता है कि उनका बिजनेस ज़्यादा चलता है संडे के दिन, क्योंकि लोग फ्री होते हैं, आते हैं उनके शॉप्स पे। और अजीता जी टाइप लोग जो लिखने वाले होते हैं, इनका संडे कैसा होता होगा, जस्ट इमेजिन।
1: हाँ मतलब हमको तो लगता है ओपन माइक के बिना अधूरा रहता होगा।
0: अच्छा हाँ जी, कुछ कह रही हैं अजीता जी, आप बताइए।
2: सर मेरा संडे
0: जी, आपका संडे?
2: सैटरडे तक तो संडे का वेट रहता है।
0: हाँ।
2: नाइट में जब सोती हूँ तो लगता है कल संडे है, फिर उसके बाद मैं जब सुबह उठती हूँ कपड़े धोने होते हैं सर। क्योंकि पूरे हफ्ते भर के संडे में ही तो कपड़े धोने होते हैं।
1: तो क्या हुआ, एक ही सेट तो धुना रहता होगा?
2: नहीं सर, देखिए 7 दिन का हफ्ता होता है। हाँ। 6 दिन में पहनती हूँ कपड़े।
1: हाँ,
2: फिर संडे को 6 कपड़े धोने होते हैं।
1: अच्छा, मतलब जोड़ी आप हो जाते हैं। एक जोड़ी कपड़े एक हफ्ते नहीं पहनती है?
2: नहीं सर, रोज रोज पहनती हूँ ना अलग अलग कपड़े।
1: अच्छा, हमारे अदनान सर तो एक कपड़े में पैंट शर्ट में एक हफ्ता निकाल देते हैं।
2: नहीं तो सर रोज रोज धोते होंगे।
1: नहीं, वही कपड़ा, मतलब एक हम लोगों का सिद्धांत है कि एक पैंट एक शर्ट निकली तो वो हफ्ते भर चलेगी, संडे को धोया जाएगा।
2: नहीं सर,
1: आप भी यही अपना लीजिए,
2: मंडे को एक पहनिए, ट्यूसडे को दूसरा पहनिए,
0: असल में
2: तीसरा पहनिए।
0: आरजे मनु कह रहे हैं कि संडे को कपड़े धोने का वक्त होता है, एक हफ्ते में एक दिन मिलता है।
1: हाँ।
0: बाकी 6 दिन वो धोए जाते हैं।
1: अच्छा हाँ, मतलब बाकी दिन मुझे धोया जाता है, एक दिन मैं धोता हूँ। ये हम दोनों की एक ही कहानी है, जान लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, कहानी आपकी तो डबल पटरी पे चल रही, हम तो सिंगल पटरी वाले इंसान।
1: नहीं, ट्रेन हमेशा डबल पटरी पे चलती होगी। अब ये हो सकता है कि कुछ परमानेंट वाला डबल पटरी हो, कुछ जरा सा वो वाला हो, क्या कहते हैं परमानेंट का उल्टा।
0: नहीं नहीं, अब जब जरा सा हो गया तो बात ही करते
2: हैं। टेम्परेरी।
1: हाँ वही, वर्ड नहीं याद आता।
0: नहीं याद आएगा।
1: हाँ नहीं,
0: हरकतें इतनी आपकी, कैसे याद आएगा।
1: डबल पटरी पर हमारी ट्रेन चल रही है, हमारी दोनों पटरियाँ भैया परमानेंट हैं, और इनकी एक तो टेम्परेरी है, लेकिन पटरी दोनों चल रही है।
0: अच्छा,
1: तो क्या मतलब आप अपना कपड़ा स्वयं धुलते हैं इतना सा?
0: ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कि सेल्फ केयर की जो चीज़ें होती है वो खुद से वैसे भी करना चाहिए।
1: हाँ, और मैं तो मैनुअल ही धुलता हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन में भी नहीं धुलता हूँ।
2: सर वो सबसे अच्छा रहता है
1: ना,
2: अपने हाथ से बड़े प्रेम से हम धुलते हैं कपड़े को।
0: नहीं नहीं, वो असल
2: हमारा
0: में
2: कपड़ा होता है, दूसरे का हो तो पटक भी देते हैं।
0: असल में वो 6 दिन की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं आरजे मनु, पटक पटक 6 दिन उनको उनके साथ जैसे किया गया था व्यवहार, वही सोच करके वो कपड़े को इमेजिन करके उस आदमी को सोचते हुए।
1: हाँ, सोचते
0: कपड़े के साथ वैसे ही व्यवहार।
1: नहीं, हम बताएं आपको कि हमारे पिताजी
2: जी,
1: उनके पास एक साइकिल, हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी
2: जी।
1: तो संडे को जो है जब मैं अपनी साइकिल साफ करने बैठूं तो अपनी साइकिल भी ला कर दे दें। यही हाल कपड़ों के साथ होता होगा कि आप अपना कपड़ा साफ करें तब तक कोई और दे दे कि एक ठो
2: मेरा भी साफ।
1: ऐसा
2: कर
1: होता है कि नहीं?
2: यस,
1: उसमें कितनी तेज गुस्सा लगती है ना
2: सर। अगर रुमाल मिल गया, मोजा मिल गया, फिर हाँ, तो ठीक है। अगर पैंट मिल गई तो पटक पटक के धोती हूं।
1: हाँ, तो वो हुआ कि हम जैसे हम जो है रविवार को अपनी साइकिल साफ करें, पिताजी आए और कहे मेरी भी साफ करो, तुमने कहा अच्छा। तो एक दो संडे को, तो वो तीसरे संडे को हम निकल गए टॉमसन इंटर कॉलेज, और वहाँ पर मैंने अपनी साइकिल
2: साफ
1: की। हमने कहा अब तो नहीं हो पाएगा। शाम को घर पे गए, सोमवार की घटना आपको बताएं, सोमवार को मेरे पिताजी ने मेरी साइकिल उठाई और चल दिए। कहा, बेटा मेरी वाली साइकिल साफ करके तब तुम स्कूल आना।
2: वाह,
1: तो मेरे समझ में आया कि हमको दोनों की साफ करनी पड़ेगी, हम चाहें या ना चाहें। तो अदनान सर, कभी आपके भी साथ ऐसा हुआ है कि पापा ने कहा, नहीं नहीं बेटा अपनी साइकिल साफ कर रहे हो तो मेरी भी साफ कर दो?
0: नहीं, मतलब बहुत मुश्किल ही ऐसा हो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है साथ में ऐसा हुआ है।
1: अच्छा, मतलब आप साइकिल नहीं साफ करते थे?
0: नहीं, बिल्कुल हम साइकिल साफ करते थे। मुझे लगता है बाइक तो अब हुई है फेवरेट।
1: हाँ, हम
0: बट साइकिल से ज़्यादा तो कुछ भी फेवरेट नहीं था। वो शुरू का दौर था, वो जो फील उसका है साइकिल का, वो आज तक किसी भी, अब तो हेलीकॉप्टर भी मिल जाए तो वो खुशी नहीं होगी जो साइकिल की थी, जो सच बात है।
1: हाँ, और अदनान सर के पास हेलीकॉप्टर है लेकिन फिर भी चलते हैं जो
2: साइकिल
1: है, साइकिल से कभी कभी चलते हैं।
2: सर, तो वो हेलीकॉप्टर में जहाज में बहुत फर्क होता है।
1: नहीं, हेलीकॉप्टर उनके छत पर रखा हुआ है, हम देखे आपको
2: छत
1: पे रखा
2: हुआ है,
1: चलिए आप।
2: और साइकिल हमारी स्वयं जहाज होती है,
1: साइकिल स्वयं जहाज।
2: सर, जब सीखने का दौर होता है,
1: हाँ?
2: जब सही से चलाना भी नहीं आता है तो ऐसा लगता है बस यही साइकिल, यही मेरी जहाज है।
1: अच्छा, मुझको तो लगता है कि साइकिल सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है मुझे तब जब तीन चार लड़कियां एक साथ साइकिल चला गई हैं।
2: अब आगे कौन जाए?
1: हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो एक साथ चलाती हैं और फिर लगता है कि सड़क जो है वो उनके पिताजी ने बैनामा कर रखी। देखा होगा अदनान सर आपने।
0: इतना गौर से तो नहीं देखा।
1: नहीं, इतना अच्छा ये बताइए, जब आप कोई लड़की जा रही है साइकिल से और आप पीछे बाइक से हैं, तो उसको कब कहाँ मुड़ जाना है और बिना हाथ दिए वो खट से मुड़ेगी? और अगर कहीं बाइक आपकी टकरा गई उनसे, तो फिर समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, वो तुरंत आता है और कहता है गलती लड़के की है, इतनी तेज बाइक चले जाती है।
2: पीछे से था।
1: हाँ,
2: लड़की आगे थी।
1: लड़की आगे थी। और सर, लड़कियाँ हाथ नहीं देती हैं, दिक्कत ये है, वो जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, वो खट से मोड़ देंगी।
0: उनका हाथ मांगने के लिए तो घर तक जाना पड़ता है ना।
1: अरे भैया, खड़ी हो जाए कम से कम, वो बताएं तो कि मुझे यहाँ मुड़ना है।
2: पीछे से भी तो है ना सर, जो लेडी बाइसाइकिल होती है तो उसमें डंडा नहीं होता।
1: नहीं, डंडे की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, आपको मुड़ना है तो आप कुछ तो इंडिकेट करो।
2: तो
1: पीछे वाला चल रहा है, अब तुरंत आपने मोड़ दिया तो फिर जाकर भिड़ सकते हैं ना। तो लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, अगर चलाएं तो भैया हाथ वाथ दे दें।
2: तो ठीक है सर, वो हवाई जहाज चलाएं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती।
1: हाँ, हवाई जहाज चलाएं।
0: आजकल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी कुछ नया नारा आपके खिलाफ ना निकल जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इस एडवाइस को मत ही दे कि लड़कियां साइकिल ना चलाएं, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा सेफ रहने वाले।
1: नहीं, लड़कियां साइकिल चलाएं ये कह रहा हूँ, लेकिन जब मुड़ना हो तो हाथ देकर चलाएं, इंडिकेशन दे दें कि भैया हम मुड़ने जा रहे हैं।
2: किसे किसे हाथ देंगी, अभी सर ने कहा है ना।
1: नहीं नहीं, मतलब किसे किसे हाथ नहीं देंगी, ये धूल साफ रोड वाला हाथ दे रहा है।
0: ऑलराइट, तो चलिए भाई, देखते हैं कि हमारे अजिता जी आज क्या लेकर के आई हमको सुनाने के लिए।
2: सर, आज मैं जो लेके आई हूँ, मेले पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, और जिसमें पंक्तियों को मैंने क्या सोच के क्या कल्पना करके लिखा है वो मैं बता दूँ कि जैसे एक 5 बरस की बच्ची है और वो मेले में जाने से पहले अपनी माँ से ज़िद करती है मेले में जाने के लिए, या यूँ कह लीजिए एक तरफ से प्रार्थना या रिक्वेस्ट करती है कि माँ मुझे मेले में जाने दो, और वो फिर जो मेले में जाने से पहले जितने उसने सपने बुन रखे हैं वो सारी सपने अपनी माँ को कैसे बताती है।
1: कैसे बताती? क्या बात?
2: वही है विचार उसका जो है, उसको मैंने अपनी पंक्तियों में
1: ढाला है,
2: या एक संभाल लीजिए एक नन्हे से बच्ची की झलक है उसमें। एक 5 बरस की बच्ची है, कहती है वो बच्ची कि अम्मा मुझको पैसा दे दो, मेले में मैं जाऊंगी। अम्मा
1: मुझको
2: पैसा दे दो, मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी। पहले तो ये बताती है कि मुझे पैसे दे दो, उसको पता भी नहीं है कितने पैसे लगेंगे क्या लगेंगे, लेकिन फिर भी देखिए बच्चों का दिमाग कैसे होता है, कब क्या वो सोच के बोल दे कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद में अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए एक लाइन बोलती है, लाल पीली हरी बैजनी चूड़ियाँ लेके आऊंगी।
1: क्या बात।
2: लाल पीली हरी बैजनी चूड़ियाँ लेके आऊंगी, चार आने की चार जलेबी मेले में मैं खाऊंगी।
1: क्या बात।
2: चार आने की चार जलेबी मेले में मैं खाऊंगी, अम्मा मुझको पैसा दे दो मैं मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी। उसके बाद में फिर कहती है कि रंग बिरंगे गुब्बारे वाले से, कि रंग बिरंगे गुब्बारे वाले से एक गुब्बारा लेके मैं आऊंगी, माटी के ही पर हाथी घोड़े भी संग अपने लेके आऊंगी। सपने देखिए कि असली नहीं तो मैं नकली लेके आऊंगी लेकिन लाऊंगी। कहती है माटी के ही पर हाथी घोड़े भी अपने संग लेके आऊंगी, अम्मा मुझको पैसा दे दो मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी। फिर कहती है कि गर कठपुतली का नाच हुआ तो पहली पंक्ति में मैं जाऊंगी।
1: क्या बात।
2: मतलब वो इतनी एक्साइटेड है कि अगर कठपुतली का डांस हुआ वहां पे तो मैं सबसे आगे खड़ी होके देखूंगी। फिर कहती है अगर बंदर का भी नाच दिखाया, मान लीजिए कठपुतली का नाच नहीं दिखाया, अगर बंदर का भी नाच दिखाया तो ताली खूब बजाऊंगी, अम्मा मुझको पैसा दे दो मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी। फिर कहती है कि मेरी माँ मेरे लिए फिक्र ना करे।
1: अच्छा, क्या बात है।
2: मेरी माँ मेरे लिए फिक्र ना करे तो इसलिए कहती है गोद में उठा लेंगे मेरे दादा दादी।
1: आहा।
2: गोद में उठा लेंगे मेरे दादा दादी जब मैं थक जाऊंगी, दादा दादी के संग चना जोर भी मैं खाऊंगी।
1: क्या बात है। चना जोर गरम भी आ गया। क्या बात।
2: दादा दादी के संग चना जोर भी मैं खाऊंगी, अम्मा मुझको पैसा दे दो मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी। फिर कहती है कि गर मेरी आँख दुखी या आँख थकी तो दादा के कंधे पे मैं सो जाऊंगी।
1: क्या बात है।
2: अगर मेरी आँख थकी या दुखी तो दादा के कंधे पे मैं सो जाऊंगी, मत रोना ओ अम्मा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी।
1: क्या बात है।
2: अम्मा मुझको पैसा दे दो मेले में मैं जाऊंगी, नहीं अकेले दादा दादी के संग जाऊंगी।
1: क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार कविता। और वास्तव में आपने बचपन की यादें ताज़ा करा दी। वहाँ का जलेबी खाना, वहाँ का घूमना।
2: एक्चुअली बचपन से मैं देख भी रही हूँ कि हमारे गोंडा का सबसे फेमस है मेला जो है कजरी तीज का मेला।
1: हाँ।
2: कजरी तीज के मेले में जितनी भीड़ होती है, जितनी दुकानें लगती हैं, ऐसा लगता बच्चों के लिए क्या ही है।
1: सही बात है। तो सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है।
2: सब बच्चों के लिए होता है।
1: हाँ।
2: तो उसी चीज को मैंने कल्पना करके
1: क्या बात है
2: उसमें पंक्तियों में मैंने लिखा है।
1: बहुत ही शानदार।
2: और यहाँ पे जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा हो तो भी बताइए, अगर बुरा लगा हो तो भी कमेंट में बताइए।
1: बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती, हमेशा अच्छा लगा। मेले की बात उसको बुरी लग सकती है।
2: हाँ, जैसे सबकी अपनी थॉट है।
0: बिल्कुल थॉट है। और ये थॉट कहीं ना कहीं भाई हम भी मानते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि जब आप अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हर कोई अपनी तरह से चीज़ों को लेता है। हम जो सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो जान रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जैसा हमारा सोचना है वैसा ही सामने वाला भी ले। तो इसलिए हमेशा ख्याल रहे कि सामने वाला जो सोच रहा है उसको सोचने दे, आप बस अपने को डिफाइन करें।
1: सही बात। वैसे मेले में सबसे ज़्यादा पसंद आपको क्या है?
2: मुझे मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से वो मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी एक तो बचपन से देखती आ रही हूँ, उसको शायद फिरकी कहते हैं,
1: हाँ,
2: वो जो बांस का गोल सा बना होता है उसमें तार से बंधे रहते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे पेपर होते हैं, और एक बांसुरी।
1: अच्छा बांसुरी।
2: हाँ वो बांसुरी जब बजाते हैं खड़े होके वहाँ पे, ढेर सारी बांसुरी ऐसे उसी में फंसाए रहते हैं शायद लगा के, मतलब बांसुरी सब की ऐसा दिखती रहती है डंडी टाइप की।

0: भाई सोच रहे हैं कि एक छोटे से संगीत में अंतराल की तरफ चल दिया जाए, एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन लिया जाए, क्यों अदनान सर कैसा रहेगा? जी हाँ, अब देखते हैं। और आज जो गीत हमने चुना है वो हमने ये कहा है कि भाई आज हम नहीं गीत चुनेंगे, आज गीत चुनेंगे अदनान सर, और जो उनको प्यारा सा गीत लगे, कोई अच्छा सा। अभी देखिए मेले की बात हुई तो क्या मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, कुछ ऐसे ऐसे मेले। क्यों साहब कैसा रहेगा, मतलब मेले पर कौन सा गीत बहुत अच्छा बैठता है?
1: अब आप बताइए भाई, आपको तो सॉन्ग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। मेला दिलों का आता है, राइट? सो चलिए भाई मेला दिलों का मिलवा ही देते हैं। और फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल ऑफ कोर्स ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। आप ही के शो ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना एफएम में आप सुन रहे हैं, और रेडियो गणेश की 89.6 एफएम, ये गोंडा ही नहीं अब तो बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन। और एक बार पुनः इस आप वाले शो में आप ही का खैर मकदम है, आप ही का इस्तकबाल है। और हम ऐसा जुड़ चुके हैं अदनान सर, तो कुछ पूछना चाहेंगे उनसे व्यक्तिगत कुछ, कि आज वो हमको खिलाने वाले क्या है फाइनली वो बता दे, ताकि अगले संडे को जब हम मिलें तो हम बताएं कि हाँ इन्होंने हमको ये खिलाया था।
1: ये तो वही वाली बात है कि शो के दौरान ही सारा कबूलवा लेना चाहते हैं कि गवाह लोग रहे।
0: हाँ, मतलब तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाएगा ना।
1: उससे पहले भी आपको एक सवाल का जवाब ये देना है। रोशनी रावत जी ने उन्नाव से मैसेज भेजा आपके नाम का।
0: जी अच्छा,
1: क्या लिखती है? मेला दिलों का नहीं मोहब्बत का आता है, जो मनु सर के साथ साथ चलता रहता है। ये क्या है,
0: क्या बात है? मतलब मोहब्बत का मैं पर्यायवाची हूँ और क्या, सिंपल सी बात।
1: मोहब्बत के पर्यायवाची हैं
0: और
1: ऐसे तो मोहब्बत से विश्वास उड़ जाएगा।
0: आप ये जान लीजिए, हमसे मोहब्बत करने वालों का विश्वास कभी हमने आज तक तोड़ा ही नहीं।
1: ओके,
0: नहीं ये उनका काम है, अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम तो भाई मोहब्बत को मोहब्बत मानते हैं, इबादत मानते हैं।
1: अरे बिल्कुल, लगता है चेहरे से आपको।
0: हाँ लगता है, मतलब हम लगता है कि कोई महापुरुष सदियों बाद धरती पर है।
1: महा महा तो भाई वैसे अभी जब अजीता जी ने कुछ लाइन्स सुनाई थी तो आपको क्या लगा था कि इस वक्त अजीता जी के लाइफ में या इनके आसपास कैसे थॉट्स चल रहे हैं?
0: अब हमको तो ये लगा कि या तो ये अपने बचपन को याद कर रही हैं या ये सोच रही हैं कि जो आने वाली पीढ़ी होगी उसका बचपन कैसा होगा।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अजीता जी स्वयं बता दें।
0: हाँ,
1: क्या सोच रही थी?
2: दोनों। अच्छा, तो मैं अपने बचपन को हमेशा याद करती हूँ, मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसा मेरा बचपन था। मैं ये नहीं कहती कि किसी का बचपन अच्छा नहीं होता है, बचपन सबका अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा बचपन बहुत ही यादगार है। मैं जब भी बात करती हूँ या सोचती हूँ तो मैं अधिकतर अपने बचपन की ही बात करती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा घर है, आज से 30 बरस पहले मेरा घर बना था, जहाँ पे वहाँ पे पहले मैदान था, खुला मैदान, और बीच में मेरा घर था। उसके चारों ओर बस बच्चे ही बच्चे मटराते थे, कोई आगे कोई पीछे। और मेरा घर भी ऐसा था सर कि चारों तरफ दरवाजे थे, आप इधर से भी बच्चों को देख सकते हैं, आप उधर से भी, उधर से भी।
0: मतलब आपको बच्चों को देखने का शौक बहुत।
2: मैं खेलती कम थी उस चीज़ को, ऐसा नहीं मैं खेलती नहीं थी, खेलती भी थी, मेरे भी भाई कुछ मेजॉरिटी के बच्चे थे जिनके साथ मैं खेलती थी, लेकिन बच्चों को मैं जब देखती थी तो उस चीज़ को मैं महसूस बहुत करती थी।
0: क्या बात,
2: वो क्या खेल रहे हैं, क्या सोच के खेल रहे हैं, उधर उसको पकड़ रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको बॉल से फेंक रहे हैं, कुछ भी। मतलब एक छोटा सा बच्चा था मेरे घर के पास पे, तो वो मतलब बाकी सब बच्चे जो थे थोड़े उससे बड़े थे, उसकी हाइट थी, वो क्या करते थे सारे बच्चे उसको गोद में उठा के इधर से उधर ट्रांसफ़र किया करते थे, कहीं उसको झूला झूला रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है,
0: जा ही नहीं रहा है। अगर हम बात करें कि आपका सबसे फेवरेट वाला गेम कौन सा था, जो आपको सबसे पसंद था, वो
2: मुझे बचपन से लेके और अभी बारिश हो और मैं फुटबॉल खेलूँ।
0: हाँ, बारिश हो फुटबॉल खेलें।
2: यस, वो मैं कॉलेज में तो नहीं।
0: हाँ?
2: क्योंकि LBS कॉलेज में सब अलाउ ही नहीं था।
0: अलाउ नहीं था।
2: और हाँ, मैंने GGIC में किया, और उससे पहले जिस स्कूल में थी वहाँ मैंने किया। एक बार तो मैंने कोचिंग में भी खेला था सर, GGIC के सामने एक कोचिंग थी टीवा श्री के।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: वहाँ पे ऊपर जाके छत पे वो जो पाइप लगी थी जहाँ से पानी जा रहा था नीचे,
0: हाँ?
2: उसको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया सारे बच्चों ने।
0: ओहो।
2: और फिर सर को बताया हमें फुटबॉल खेलना है, सर भी हमारे बड़े अच्छे थे।
0: आहा, क्या बात,
2: ना जाने कहाँ से उन्होंने अरेंज किया, खेलो।
0: अच्छा ये बात है,
2: क्योंकि उस दिन बच्चे कम आए हुए थे और सर ने कहा कि ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, अगर मैं आज पढ़ा दूंगा कल फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। बारिश बहुत जम के हुई थी, हम पास वाले बच्चे झट से जी जी आई सी से निकले, सामने पहुँच गए, और जो बच्चे दूर वाले थे वो नहीं आए। हम लोगों ने खूब खेला बारिश में।
0: क्या बात है, मतलब वो समय आपको याद है?
2: वो समय सर हाई स्कूल तक इंटर तक तो मैं भूल ही नहीं सकती।
0: मतलब और जब बारिश होती थी तो हम और अदनान सर मेंढक पकड़ते थे बहुत मेंढक पकड़ा हम लोगों ने, और मेंढक को पकड़ करके उसका डिसेक्शन बॉक्स में ले जाकर चेदना कि यहाँ पर ये किस लीवर, क्योंकि 30 नंबर मिलता था उस समय।
2: मेंढक को मैंने जितना देखा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपने नहीं देखा होगा, आपने भी देखा होगा, चारों तरफ बारिश का पानी और जो उस पे बारिश में थोड़ी थोड़ी जगह ऊंची मिट्टी की होती थी, वहां पे बारिश बंद होने के बाद में सारे मेंढक एक साथ में सुर ताल मिलाते थे।
0: बड़ा वाला मेंढक देखा है आपने, जो जो पीला पीला होता
2: पीला
0: है।
2: पीला पीला पीला मेंढक, और उसका जब ऐसे बोलते थे तो ब्लू ब्लू करके निकलता था मुंह से।
0: कैसा मतलब? हाँ, हम लोग तो पकड़ लाते थे, कुछ दिन उसको पालते थे, मतलब मेंढक पालने का भी शौक रहा। आपको कभी नहीं शौक रहा मेंढक?
2: नहीं, एक भैया थे तो उन्होंने एक बार वो दिखाया था कि ये जो बोलते हैं उसको पूरा चीरा वीरा लगा के एक लकड़ी का वो था,
0: हाँ, डिसेक्शन बॉक्स होता था,
2: उसपे उसके हाथ पैर को कील से ठोक दिए और फिर उसको पेट फाड़ दिया, फिर दिखाई, ये देखो ये ब्लू वाला जो तुम देखती हो, कहती हो ये क्या भैया ये क्या है
0: ये क्या, बाप रे बाप।
2: फिर उसके बाद में उसको सिल मिल के कह रहे अब ये फिर चलने लग जाएगा, और रियल में वो चला।
0: अच्छा चला?
2: यस सर, वो चला भी।
0: वाह क्या बात है भाई, मतलब
2: वो एक्चुअली साइंस की क्लास थी इनकी, तो उन्हें नॉलेज था कि कैसे ऑपरेशन करना क्या करना, हम तो भाई बच्चे थे उस टाइम, बस देख रहे थे भैया ये क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो।
0: अच्छा, तो उसमें जो उसका लीवर रहा होगा वो पीले रंग का रहा होगा।
2: अब ब्लू वाला तो मुझे अभी भी याद है कि भैया ने ये दिखाया था कि जो तुम ये देखती हो, बाकी बताई तो उन्होंने बहुत सी चीजें थी लेकिन इतना एग्जैक्ट याद नहीं है।
0: तो बचपन भाई बारिश के दिनों में, अदनान सर आप बताएं कि आप क्या करते थे बहुत जबरदस्त तरीके से।
1: बारिश का दिन तो शायद मुझे लगता है बारिश का एक दौर था बाकायदा। यूजुअली जो लोग करते हैं जैसे जहाज बना करके चलाना,
2: यस,
1: और साइकिल लेके निकल जाना, ठीक है, लेकिन वो जो सबसे बेहतरीन पार्ट था बारिश का वो पतनाले को बंद करके स्विमिंग पूल बनाने
0: ये बात सही बात है,
1: छत पर और पूरा घर खेलता था, और जो स्लिप मारते थे ना घुटनों के बल ऐसे सुरकते हुए जाना, कई बार घुटना छिल गया, कई बार गिरते थे, मतलब अभी भी बहुत क्लियर याद है कि कैसे खेलते थे और किधर से किस डायरेक्शन में कूदते थे और कितना छपर छपर क्या मजा आता था।
0: लगता था स्विमिंग पूल वाली फीलिंग आती थी
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद जीवन का वो समय इसलिए याद है क्योंकि इतना कुछ खुल करके जिया था, और आज के वक्त हमको इसीलिए इतने शायद जल्दी लगते हैं क्योंकि आज हमारा सिर्फ दिन बीतता है
0: क्या बात?
2: बीतता है, यस।
1: और वो आज तक अगर याद है, सोचिए इतने सालों बाद भी याद है, एक एक दिन याद आता है, और आज के इधर जितने गुजरे दिन हैं वो बहुत हल्के फुल्के मिटते हुए नज़र आते हैं। तो अब खुद हमको सोचना, ये एक सवाल खुद से ही है कि आखिर अभी कैसी लाइफ जी रहे हैं और क्या आज के दिन भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्या कोई स्कोप है क्या?
0: सही बात है,
1: सिर्फ याद करना तो काफ़ी नहीं ना, हो सकता हो कि आज का भी कुछ स्कोप है जिस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे।
2: सर कर सकते अभी जल्दी की बात है, जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे मतलब जो हमारे ऑनर थे उनके छोटे वाले बेटे अक्सर करके हम लोगों के साथ लगे रहते थे सिखाने के लिए या खुद सीखने के लिए, तो मैंने बारिश में एक नाव बनाई और भैया को गिफ्ट कर दिया। कह रहे अरे दीदी ये तो मैं बहुत सालों बाद देख रहा हूँ और आपने मुझे गिफ्ट किया है, मैं तो बनाना भी भूल गया।
0: हाँ, और वो पंक्ति भी तो है साहब कि ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो मेरे बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। और ये भी कहा गया कि गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो वास्तव में भाई बचपन की यादें तो अपने आप में अनमोल होते हैं, और उन बचपन की बातों को करना, उन बातों को करना जहाँ मुझे लगता है कि हाँ अब कुछ मिसिंग हो चुका है, लेकिन ये अच्छी बात ये रहेगी कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें कि वो जो वक्त हमारा बीता उसको फिर से एक बार अपने सामने लेकर चले आएँ, तो हमको लगता है बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ टेक्निक ढूंढनी चाहिए सहजिता जी ने नाव बनाई कागज़ की।
2: हाँ सर, मैं बनाती हूँ।
0: हाँ मतलब अभी भी मतलब हमको लगता है कि इंसान का जो बच्चा होता है वो जिंदा रहना चाहिए, चाहे इंसान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए।
2: सर एक कागज़ की नाव बनाई है और उस पर एक कागज़ का सांप बना के उस नाव में लगा दीजिए, स्टिक कर दीजिए, और एक छोटा सा कागज़ का फिर एक आदमी बनाइए, उसके हाथ में एक पतवार दे दीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, आज भी वो नाव तैरती जाएगी।
3: सांप पे असली जहर लगा दिए, अपने दुश्मन को चटवा दीजिए, इल्जाम उस कागज के सांप पे आएगा।
0: मतलब दुश्मनी भी अदा हो जाएगी।
3: और कहते हैं कि भाई काम भी हो गया और वही लाठी,
0: सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं, सांप मरेगा भी नहीं।
2: नहीं सर, वो सांप का शेप मैं इसलिए बोली कि वो छाया के लिए,
0: छाया
2: से वो इंसान भीगे ना, जो कागज का है नाव भले से अंदर से भीग जाए लेकिन वो आदमी ना भीगे,
0: आदमी ना भीगने पाए। क्या बात है, मतलब परिकल्पना बहुत बढ़िया है, शानदार है।
3: वैसे मुझे लगता है आज का शो काफी अच्छा रहा, काफी सारी चीजें हमने कवर की
0: जी।
3: अक्टूबर की शुरुआत संडे से लेकर के जगजीत साहब को आप ले आए और सांप तक की बात पे हम आ गए हैं, अब इससे ज्यादा जहरीला कुछ हो नहीं सकता है।
2: सर अगर आज की बात की जाए तो बचपन में जो मैं इसलिए मैं जीती हूँ, बचपन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो पल जो है अब लगता आ ही नहीं पाएगा। हम लाख कोशिश कर लें, बारिश में भीग लें, बच्चों के संग खेल लें, पागलपन कर लें, लेकिन वो नहीं आ सकता। आज का जो फैक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसमें भी मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, बताइएगा कि क्या ये ऐसा लगता है मुझे कि ये बहुत से लोगों के साथ में होता है, तो मैं ये लाइनें बोलने जा रही हूँ और बताइएगा कि क्या ये सच है या ऐसे यूं ही।
3: बिल्कुल।
2: तो लाइन है कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं अपनी लिखावट भूल बैठी हूँ। सर लिखावट मैं भूल गई। और थैले में तो आज भी श्रृंगार का सामान है, थैले में तो आज भी श्रृंगार का सामान है, पर मैं अपने चेहरे की सजावट भूल बैठी हूँ।
0: ये तो कहिए सबके पर्स में होता है, आपके थैले में।
2: सर पर्स को शायद हिंदी में थैला ही कहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत शानदार। हम तो बोरा में लेकर चलते थे।
2: मैं थैला ही कहती हूँ। थकी थकी आंखें पलक झपक भी लेती हैं, थकी थकी आंखें पलक झपक भी लेती हैं, पर जिम्मेदारियों के बोझ को पाके मैं अपनी थकावट भूल बैठी हूँ। क्योंकि कितनी भी थकान हो सर, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो फिर आप अपनी थकावट नहीं देख सकते हैं। फिर रोज जाना है आपको, काम पे जाना है तो जाना है। आज भी गांव की सूंधी सी मिट्टी की महक, आज भी गांव की सूंधी सी मिट्टी की महक तो याद है, बस अपने घर की बनावट भूल बैठी हूँ। क्योंकि इतना ज्यादा इंसान वो हो जाता है कि खुद तो जिम्मेदार होता है लेकिन घर की जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे खुद ही भूलने लगता है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, फिर वो छोटे छोटे बच्चे आके बताते हैं।
0: क्या बात।
3: लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ याद रहती है, वो है हर वीक आने वाला ये ओपन माइक जो हमारे श्रोताओं को बिल्कुल भी नहीं भूलता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम अभी से आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर भी हुनर है गाने का या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का या किसी स्टोरी की टेलिंग करने का या कुछ यूनिक से जोक्स क्रैक करने का, तो मोस्ट वेलकम एवरी संडे फ्रॉम 1 to 2 PM ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM वो भी सामने से
0: जी। और चूंकि भाई आज कोई गीत हुआ नहीं तो चार पंक्तियों के साथ विदा लिया जाए
3: जी। बिल्कुल, पेश करिए।

0: जी हाँ, आप सुन रहे थे और रेडियो का नस्ली 89.6 FM है गोंडा ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों के धड़कन। आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो का नस्ली 89.6 FM क्योंकि ये है
1: गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हाय, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी रति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। घड़ी में वक्त हो चला है 2:04:51। भैया ये टाइम है मेरे स्टूडियो का और आपके घड़ी में टाइम कितना हो रहा है बताइएगा चैट बॉक्स में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दें कि आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानसली, गोना शहर की धड़कन, आपकी अपने गोना शहर की धड़कन। और आज है संडे, यानी कि इंडिया टॉप 20 वाला डे, यानी कि वो वाला दिन जिसमें बातें होती हैं बॉलीवुड की। यूं तो आपको बहुत सारे शोज में बॉलीवुड की बातें सुनने को मिल जाती है, लेकिन इस स्पेशल वाले शो में होते हैं 20 काउंटडाउन वाले गाने, जिसमें से एक से बढ़कर एक गाने हम अपनी प्लेलिस्ट से, आपकी प्लेलिस्ट से चुरा चुरा के ढूंढ ढांढ के लेकर आते हैं और आप एंजॉय करते हैं मेरे साथ। होते हैं आपके बहुत सारे मैसेजेस और आपके बॉलीवुड की गपशप, आने वाली कुछ फिल्मों की बातें, कुछ रेटिंग्स की बातें, कुछ रिव्यूज, और ऑफ कोर्स कौन सी फिल्म के चल रहे हैं चर्चे, वो भी हम आपको बताते हैं इन द टॉप 20 वाले शो में। तो भैया आज की प्लेलिस्ट दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए कोई तड़कता भड़कता या फिर चमकता गाना लेकर नहीं आए हैं। आज हम आपके लिए गाने लेकर आए हैं आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट के उस सेक्शन से जिसे हम कहते हैं सैड सॉन्ग, यानी कि दिल तोड़ देने वाला गाना। भैया आप दिल तोड़ देने वाले गाने भले ही आपको कितने भी सैड क्यों ना लगे, लेकिन एक चीज तो है कि उनके लेवल पर अभी तक कोई म्यूजिक बना नहीं है। सैड सॉन्ग की दीवानी पूरी दुनिया है, बेवजह बेमौसम बेजगह सुना जाता है, लेकिन इतना सुना जाता है, बेइंतहा सुना जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी इस इंतहा की घड़ी को थोड़ा खत्म कर दिया जाए। हर दिन हम तड़कते भड़कते गाने सुनते हैं, तो क्यों ना आज थोड़ा सा सैड सॉन्ग हो जाए। फिलहाल अगर आपको सैड सॉन्ग पसंद है तो चैट बॉक्स में बताइएगा, और आइए ट्यून करते हैं हमारे पहले गाने की तरफ। और पहला गाना ही हम आपके लिए लेकर आए अनजाना अनजाना से, विशाल शेखर का सॉन्ग तुझे भुला दिया। आई हाय, किसको भुला दिया। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं, चैट बॉक्स में बताइएगा आपको ये गाना कितना पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। तो एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के दूसरा कोई नगमा, दूसरा कोई आपके दिल को छू जाने वाला सॉन्ग। तो बने रहिए मेरे साथ इस टॉप 20 में। मैं हूं आपकी अपनी आरशी उन्नति और ये है रेडियो ज्ञानसली का काउंटडाउन नंबर 20।
1: रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM प्रेजेंट्स India Top 20 songs. Song number 20.

0: और ये गाना इतना खूबसूरत है ना, इतना इमोशनल गाना है कि इसके कुछ पैराग्राफ्स हटा ही दिए गए थे। क्यों? क्योंकि भैया पता था हमारे राइटर को कि अगर हमारी ऑडियंस इस तरह के गाने सुनेगी तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत गाना था। एंड दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं चैट बॉक्स में, उनका मैसेज आ चुका है। गुड आफ्टरनून आज्योति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपक जी, कैसे हैं आप? एंड आपने लिखा है आई लाइक दिस सॉन्ग, वेरी इमोशनल सैड सॉन्ग। जी आप, ये बात तो है भैया, बहुत सैड गाना है लेकिन सुनने में उतना ही मज़ा आता है। भैया ये कुछ भी कह लो, सैड सॉन्ग सुनने का अपना ही मज़ा है। आप पार्टी सॉन्ग सुन लो, आप दुनिया भर के मस्ती वाले गाने सुन लो, लेकिन जो सैड सॉन्ग में फील आता है ना, जब आपका पूरा जहां एक जगह पे आके ठहर जाता है, तब आपको महसूस होता है अरे यार सैड सॉन्ग ही वो इकलौता गाना है जिसपे हम लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। अदरवाइज हम म्यूजिक पे दिन भर उछला करते हैं, बीट्स को एंजॉय किया करते हैं, बट जब सैड गाने बजते हैं सूथिंग सूथिंग इमोशनल इमोशनल, तब जाके हम ध्यान देते हैं कि जो राइटर ने लिखा था वो तो बहुत ही कमाल लेवल का था। होता है ना ऐसा। फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हम आपके लिए लेकर आए हैं आशिकी 2 से, तुलसी और केके की आवाज़ में। जस्ट इमेजिन ये कितना इमोशनल होने वाला है। गाने का नाम है पियाना, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और आज है आपकी इमोशनल सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट, आपकी प्लेलिस्ट का वो हिस्सा जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। एंजॉय करते रहिए।
1: Radio Gana 39.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: बात है भाई, क्या ही खूबसूरत नगमा है। और ऑफ कोर्स हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, और गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती है वजह। आई लव दिस लाइन, बाय गॉड, मतलब इतने प्यार से कोई कैसे लिख सकता है, इतने प्यार से कहे या फिर कहे तो इतने दर्द से कोई कैसे लिख सकता है। जब पूरी दुनिया आपका कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ देती तो एक ही चीज़ आ जाती ना कि तुम्हारी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी, हमारी ही खता थी, तुम पे विश्वास कर बैठे थे। इट्स नॉट यू, इट वाज मी, ऑलवेज मी, मैं ही दिक्कत हूँ सब जगह पे। फिलहाल ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा फील नहीं करना है, बस गाने का मतलब समझा रहे थे। इसके अलावा और हमारे साथ गुलाबशाह सिद्दीकी जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू गुलाबशाह जी, कैसी हैं आप यार? अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं हमको इन द टॉप 20 में यार। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, अगला सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 18। और एनी आइडिया कहाँ से आया हुआ गाना? चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, निकी और पूछ नहीं करते हैं आपके साथ। और अगला गाना है राजनीति फिल्म से, फिल्माया गया है आपकी अपनी बेहद ही पसंदीदा कैटरीना कैफ के ऊपर, और गाने का नाम है मोरा पिया। आए हाय क्या बात है, आदेश की आवाज में है, तो एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। बॉलीवुड के सैड सॉन्ग्स की कोई टक्कर नहीं है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, अगर किसी ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ है, बहुत करीब से आपकी हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को कहीं ना कहीं अगर किसी ने एक्सप्रेस किया है, तो वो हमारे बॉलीवुड वाले ही हैं। बॉलीवुड के सैड सॉन्ग, भले आप रोमांटिक गानों से रिलेट करते हो या ना करते हो, बट डेफिनेटली आप सैड सॉन्ग से अपनी ज़िंदगी में रिलेट ज़रूर करते होंगे। कोई ना कोई ऐसी लाइन ज़रूर होगी जो आप कहते होगे, ये तो मेरी ही लाइन है, ये तो मेरी ही बात हो रही है। और ऑफकोर्स तो सुनते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। सॉन्ग नंबर 18 एंजॉय करते रहिए, ये है आपका अपना काउंटडाउन वाला शो इंडिया टॉप 20 विद राजनीति।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 18।

0: और भाई आप एंजॉय कर रहे थे मोरा पिया मुझे बोला तो नहीं, राजनीति फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया। आदर्य श्रीवास्तव थी इनकी आवाज़ और समीर साहब के लिखे बोल थे। इतनी खूबसूरती के साथ इस गाने को फिल्माया गया है, इतनी खूबसूरती के साथ इस गाने को लिखा गया है यार, इतनी खूबसूरती के साथ इस गाने को गाया गया है कि एक एक शब्द आपको महसूस तो होता ही होगा, कहीं ना कहीं होता है ना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। यूँ तो सैड सॉन्ग ऑलमोस्ट सभी प्यारे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ अलग बात है जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे। दीपक जी लिख रहे हैं, हाँ उन्नति मैम जी, सैड सॉन्ग को जो महसूस करता है वो उसे बहुत पसंद भी करता है। मुझे खुशी है कि आज का कार्यक्रम सैड सॉन्ग स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी बात सच है कि जिसने सैड सॉन्ग की लिरिक्स पर ध्यान दिया है वो जानते हैं कि क्या नगमे लिखे जाते हैं। एक एक शब्द को पेन से ज़्यादा पेन से लिखा जाता है, इतनी खूबसूरती के साथ लिखते हैं कि ऐसा लगता है यार अपनी ज़िंदगी की बात हो रही है, हमारी कहानी की बात हो रही है। फिर चाहे वो लिखा हो समीर साहब ने, लिखा हो गुलजार साहब ने, या फिर किसी और ने लिखा हो, जावेद अख्तर ने लिखा हो, लेकिन बखूबी इतनी खूबसूरती से लिखते हैं। प्लस हमारे सिंगर ऐसा होता है पूरी जान लगा कर तीन चार रूहें उसके अंदर डाल देते हैं, सारी की सारी फील हो जाती है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग ब्लड मनी से हम आपके लिए लेकर आए हैं, तेरी यादों से दूरी बेहतर है। आए हाय, होता है ना जब किसी की बहुत याद आ रही होती है तो हम कहते हैं तुम्हारी यादों से तो दूरी भी बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी याद भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तुम तो चले गए हो, अपनी यादों को भी साथ ले जाओ। और उस वक्त ये नगमा ऑन द पॉइंट हिट करता है। तो आइए इन्जॉय करते हैं बेहतरीन से सॉन्ग को। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.
2: What? You don't care.
3: अरे भाड़ में जाओ यार।

0: Did he just let the hot chick go? The only chick in the bar. Yeah. Yeah, you.
1: तो भाई आप एंजॉय कर रहे थे तेरी यादों से दूरी बेहतर है, क्योंकि करती है जीना ये मुश्किल, और ये वो बारिश है जिससे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ भीगते हैं और हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है, यानी कि तुम्हारी यादों से कुछ नया नहीं होता, सिर्फ जख्म और गहरे होते जाते हैं। और इस तरह के गाने लिखने का टैलेंट जो बॉलीवुड के अंदर है, वो मतलब उसका सैल्यूट तो बनता है, वो भी 21 तोहफों की सलामी बनती है, क्योंकि हर एक वर्ड ऐसे चुना जाता है, इतने डीप मीनिंग के साथ चुना जाता है। लगता तो है कि बहुत ही आसानी से लिख दिया गया है, लेकिन जस्ट इमेजिन किस हद तक उस पेन को महसूस करा होगा उस राइटर ने जब ये गाना लिखा गया होगा, राइट। फिलहाल ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आया होगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आवाज़ विकास से जुड़ गए हैं। रति जी, शुभ दोपहरिया। आज गाना ऐसा आ रहा है कि गर्मी में गर्मी बढ़ रही है, आए आए बट मैं तो सर्दी लेने के लिए आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सैड सॉन्ग लगाकर थोड़ा सा आपका माहौल ठंडा ठंडा कर देंगे, कूल कूल हो जाएगा, गर्मी कूल हो जाएगा, बट ये उल्टा हो गया। फिलहाल कोई बात नहीं, आप यूं ही आतिशबाजी को एंजॉय करते रहिए और हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग मुस्तफा का है और गाने का बोल है हम जीतेंगे, मर्डर 3 से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद आरजी नती, और ये है रेडियो ग्यारसली आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन।
2: Radio Ganasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 16.

0: नेटवर्क इशू के लिए आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा सिग्नल इशू हो गया था, टेक्निकल इशूज़ की वजह से हम आपके लिए ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाए थे, माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल के लिए वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हमें टॉप 20 में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरुणति और ये है रेडियो कैनस 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बहुत सारे बेहतरीन नगमे आपने मिस कर दिए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं एंड आई प्रॉमिस ये आपकी पसंद होने वाले हैं। जिन्हें 90s के पसंद है उनको मिलेंगे उनके 90s के, और जिन्हें पसंद है आज का यानी कि आतिफ असलम की आवाज, तो क्यों ना उनके लिए पेश कर दिया जाए कलयुग फिल्म से आदत। तो जरा सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और ऑफ कोर्स अपना फेवरेट गाना कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 12.

0: और आप सुन रहे थे कलयुग से आदत, अतीफ असलम की आवाज में, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा और ऑफ कोर्स बहुत ही हार्ट टचिंग गाना था। एंड मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनती जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं। एंड गुलाब शाह जी का कहना है मोगैम्बो खुश हुआ, क्या बात है। तो मोगैम्बो जरा हंस के दिखाए। और जी हाँ, मेरे यहाँ भी नेटवर्क इशू आ गया था जिसकी वजह से आप तक कुछ नगमे नहीं पहुँच पाए, उसके लिए माफी है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और हम आपको लेकर चलते हैं एक विलन के पास, क्योंकि वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं बंजारा। जी हाँ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर। अगला सॉन्ग आपके लिए होने वाला है आपके अपने अक्षय पाजी का, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि वो गाना भी आएगा धीरे धीरे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 विद राज नदी।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 11.

0: हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे जैसे बंजारे को घर, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगला गाना जो होगा वो होगा भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्हें 90s के नगमे बहुत ज्यादा पसंद है। और हमारी गुलशा चिरक ने क्या आवाज है, सुकून मिला जी, मेरी आवाज या फिर हमारे सिंगर की आवाज, किसकी तारीफ की है आपने अभी अभी। एंड अरिबा शेख हमारे साथ जुड़ गई है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम एंड फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू यू अरिबा जी, कैसी है आप? आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इंडिया टॉप 20 में। आज हम नहीं बोलूंगा फिलहाल के लिए, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 10। और क्योंकि आज आपने कुछ नगमे खो दिए थे बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, तो हम आपको कुछ नगमे बोनस में देने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए टॉप 20 विद राजरति। और ये है गोंडा का अपना पहला FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।
1: रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और ओके, आपकी आवाज़ बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आवाज़ की तारीफ करने के लिए। एज जोया जी लिख रही है, हेलो गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू जोया जी, कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। गुलाबशाह जी का कहना है मेरा पसंदीदा गाना है ये। चलिए क्या बात है, बहुत ही प्यारा सनगमा था और आपका पसंदीदा गाना बहुत ही प्यारा था सच में। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं बेवफा फिल्म से तेरी याद याद याद बस याद रह जाती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद राज युवराती, बॉलीवुड का काउंटडाउन वाला शो।
1: रेडियो 11.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

हां जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे थे याद याद याद, बस याद रह जाती है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, अब हम चलेंगे हमारे थोड़े से नए जमाने के गाने की तरफ। अरमान मलिक की आवाज में आप एंजॉय करने जा रहे हैं दे दे प्यार दे से चले आना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सैड वाली प्लेलिस्ट में। आई नो मुस्कुराना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपके पसंदीदा गानों का एक पूरा कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, तो आप एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी की याद आ रही है तो भैया याद में मत डूबिए, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स का गेट खुला हुआ है। आइए मैसेजेस कीजिए, हमें बताइए आपके मैसेजेस को, और हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताने वाले हैं। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा के बाद वाला प्रोग्राम इंडिया टॉप 20 यानी कि सनी का स्पेशल वाला शो विद राजनीति, जो आपके साथ कॉलर ट्यून गोंडा और इंडिया टॉप 20 में दोनों में ही गाने प्ले करती। गाने प्ले करना मेरा पसंदीदा काम है ना, एंजॉय करते रहिए।

0: अब इस सैड सॉन्ग के बीच में थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का लगा ही देते हैं और आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड की तरफ से क्या न्यूज आ रही है। हम आपको बता दें भैया कि दृश्यम 3 ने ओपनिंग कलेक्शन में कितनी कमाई कर ली है। अगर आप सोच रहे हैं कि छोटी मोटी है तो नहीं है भैया, सीधे 62 करोड़ यानी कि 62 करोड़। इतने में तो मैं अपने साथ साथ 4 लोगों की और जिंदगी बना दूं। फिलहाल मेरे पास 7 करोड़ भी नहीं है जो मैं आपके सवालों का दे सकूं। सोच रही हूँ अच्छा देखभाल से आगे थोड़ा सा उधार ले लें, क्या क्या ख्याल है, चलेगा? फिलहाल नहीं चलेगा। हम बता दें उनकी दृश्यम 3 आ चुकी है और अभी तक की फिलहाल बेस्ट ओपनिंग मानी जा रही है। दृश्यम 3 में सीधे सीधे 62 करोड़ की ओपनिंग है, तो ये बॉलीवुड के लिए काफ़ी बड़ी बात है, यानी कि अजय देवगन के लिए काफ़ी बड़ी बात है इस सीक्वल को लेकर के, इनकी जो सीरीज चल रही है दृश्यम की उसको लेकर के। तो फिलहाल अगर आप दृश्यम 3 देखने गए हैं तो मुझे बताइएगा क्या चल रहा है उस फिल्म के अंदर। और हमारे साथ विजय रावत जी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू विजय जी। एंड पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए, गुड आफ्टरनून टू यू। नाइस सॉन्ग लिखा है हमारी गुलाबशा जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलों को थाम के बैठिएगा क्योंकि हमारे फलक जी आ चुके है सॉन्ग नंबर 7 लेकर के। आप सुनने जा रहे हैं मैं और तुम से साजना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासेरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

हाँ जी, तो हाथों में तो है मेरे, लेकिन है नहीं लकीरों में। कितनी डीप बात है ना कि भैया जिसको हम हाथों में रह कर तो चल रहे हैं, जिसका हाथ पकड़ सकते हैं, जिसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लकीरों में नहीं है, वो आगे फ्यूचर में नहीं है, वो नसीबों में नहीं है, वो आपकी किस्मत में नहीं है। आपकी ज़िंदगी में तो है लेकिन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। बहुत ही डीप लिखा करते हैं। वैसे बहुत ही प्यारा सा गाना था, फलक की आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे थे, और ये गाना अगर किसी की याद दिलाता है आपको तो अंदर बैठ के रोने से अच्छा चैट बॉक्स में आ जाइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो टॉप 20 है और यहाँ पे रोना धोना बिल्कुल मना होता है। फिलहाल सैड सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रोने नहीं देंगे और हम आपको लेके चलेंगे अब सीधे किशोरदा की ओर, क्योंकि किशोरदा जब गाने गाते हैं तो गाने के बोल भी बोल उठते हैं, और गाने का नाम है मेरे महबूब कयामत होगी। सुनते रहिए, और इस बार नहीं कहूँगी कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भैया ये गाना आपके दिल को छूने वाला है, एज आई नो, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा नगमा है, गाना है, ताना है, और किसी के दिल को जीत जाने का बहाना है। तो आइए एंजॉय करते हैं, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अब क्योंकि आप एंजॉय कर रहे थे किशोर दा की आवाज, तो मेरा आपसे एक सवाल है, सर कटी का सर क्यों कटा था? नहीं याद आया। फिलहाल हम आपको बता दें, ये डायलॉग तो हमारे स्त्री टू का है। डायलॉग मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन क्योंकि बात स्त्री टू की हो रही है तो अब बात हम स्त्री थ्री की भी करेंगे, जिसकी खबर हम तक आ चुकी है। मेरे पास कोई खबर हो आप तक ना पहुंचे, ऐसा कभी हो सकता है ना? नक्को कभी नहीं। और इसीलिए हम आपको बता दें कि भैया बॉलीवुड से एक न्यूज सामने आ रही है। दिनेश जी का कहना है कि भैया स्त्री थ्री कन्फर्म हो चुकी है, 2028 के आसपास रिलीज की जाएगी। 2028 में कब भैया, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो हिंट बस इतना सा है कि या तो आपके आजादी वाले दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे, या फिर आपके जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो वो अपने साथ स्त्री टू लाएंगे, मतलब स्त्री थ्री लेकर आएंगे, यानी कि क्रिसमस वाले डेज के आसपास, क्रिसमस वीक के आसपास रिलीज किया जा सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि महाअवतार के बाद इसको रिलीज किया जाएगा। महाअवतार जो कि ऑफकोर्स हमारे अमर कौशिक की फिल्म है, उसके बाद ही स्त्री थ्री रिलीज की जाएगी। तो तैयार रहिएगा जानने के लिए कि सर कटेगा सर कटने के बाद और क्या क्या आफत आने वाली है, क्या स्त्री बचाने वाली है या स्त्री इस बार कुछ और खतरनाक खौफनाक लेके आने वाली है, समझ गए ना? जी हाँ, स्त्री थ्री वापस आने वाली है। और श्रद्धा कपूर की जो एक आइडेंटिटी है, जो स्त्री वन स्त्री टू में दिखाई नहीं गई है, जिसके इंतजार में हमारे लोग बैठे हुए हैं, जिसके चक्कर में न जाने कितने रिव्यूवर्स जो कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, फिल्म को रिव्यू करते हैं, उन्होंने आके श्रद्धा कपूर की आइडेंटिटी को क्या क्या बता रखा है। पहले वो खुद ही स्त्री बनाई गई थी, फिर वो स्त्री की बेटी बनाई गई थी। लेट्स सी स्त्री थ्री में क्या उनकी आइडेंटिटी वापस आती है या फिर उन्हें इस बार किसी और का ही दर्जा मिल जाता है। फिलहाल इंतजार कीजिएगा, 2028 का अभी 27 बीच में ही है दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को, और अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। अगला सॉन्ग राबिदा से लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, लंबिया सी जुदाइयां। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 5।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। हाफ गर्लफ्रेंड से आप एंजॉय करने चाह रहे हैं तू ही है, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे बैक टू बैक दो गाने। तो एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इन गानों के उस पार लेकर के कुछ और बेहतरीन नगमे आने के हमारे आखिरी के दो गाने। तो बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, और कबूल निगाहों की ना हो वो दुआ जिसमें यार के इंतजार का सबब ना हो। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है और आवारापन से है मुस्तफा की आवाज में तोफेराओ, और हमारा नंबर वन सॉन्ग जो है आज के शो का वो है केके की आवाज में तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही आई है। बहुत ज्यादा सेंटी वाला गाना देकर जा रही हूँ आपको, लेके उदास मत होइएगा। मिलते हैं बस इसी शो के उस पार यानी कि क्लिनिक या नस्ली में, जहाँ आपकी हेल्थ की बात होने वाली है। तो जितना आपका अभी के प्रोग्राम में हमने आपके दिल को चकनाचूर किया है, तोड़ा ओड़ा है, फेविकोल लगाकर हम अगले वक्त कार्यक्रम में जोड़ने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, एंजॉय करते रहिए। और ये था सॉन्ग नंबर 3, अब आप एंजॉय करेंगे बैक टू बैक दो गाने। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट कैसी लगी, और आपका पसंदीदा गाना इनमें से कौन सा था, आपके अपने चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिलहाल चाहेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होती है बस कुछ ही लम्हों में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? घड़ी में वक्त हो चला है 4:16 बस 2:00 और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनति और ये है आपका सनी का स्पेशल वाला कार्यक्रम क्लीनिंग ज्ञानस्थली, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले। और ऑफकोर्स इसके अंदर बातें होती हैं आपकी अपनी सेहत की, यानी कि वो बातें जो आप बहुत क्यूरियोसिटी के साथ जाना तो चाहते हैं लेकिन जाने की सही जगह नहीं मिल पाती है। तो वो बातें हम यहाँ करते हैं बैठकर आपकी सेहत की, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल, साइकोलॉजिकल और आपकी सोशल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है ना
1: जी। और उसी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हर बार आते हैं, हर रविवार आते हैं, इस बार फिर आ गए हैं आप सभी के बीच, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें कॉल करके अपने सवालों को आप हमसे पूछ सकते हैं।
0: और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमें आपको अपना नंबर बता देना चाहिए कि अगर आप भूल चुके हैं कि कॉल कहाँ करना है, तो कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। इसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आप कैसे हैं ये बताइए
1: जी। हम बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे, और आशा ये भी करते हैं कि हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
0: जी हाँ भाई, लिसनर्स का तो लिसनर्स ही बता सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि वो अच्छे होंगे। और मेरा ख्याल है आपके साथ आज की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर ली जाए।
1: जी ज़रूर, हर बार हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारी बातें इम्पॉर्टेंट ही हों, और जो बातें हम अपने लिसनर्स को बताते हैं, जो समय वो हमें देते हैं 1 घंटे का 60 मिनटों का, इस समय में हम चाहते हैं कि हम क्या उनको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा बना सकें। इसके लिए हम हर रविवार को आते हैं और इसी श्रृंखला में अब फिर आए हैं, पूछते हैं कि क्या आज का वो टॉपिक है जो उन्नति मैम लेकर के आई हैं हमारे बीच।
0: सर्दियां आने वाली है ना
1: जी, और मुझे लगता
0: मैं
1: है
0: बहुत खुश हूं।
1: जी आप खुश हैं, और आपकी खुशी का कारण क्या है?
0: क्योंकि जैसी सर्दी आती है ना, तो आपको ना पसीना आ रहा होता है, ना इचिंग होती है, ना इरिटेशन होती है, ना गर्मी लग रही होती है, ना रैशेज होते हैं, ना मच्छर काट रहे होते हैं। तो बहुत सारी खुशियां हैं जो एक साथ सर्दियां लेकर आती है।
1: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उन्हीं खुशियों को लेकर के, और ये जो गर्मी बरसात से जुड़ी हुई समस्याओं होती हैं, समस्याएं, उनसे
0: राहत मिलती है।
1: बिल्कुल राहत मिलती है, और उनसे कहीं ना कहीं आप परेशान होकर के ही उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
0: बिल्कुल, वैसे भी मेरा बहुत ही पसंदीदा मौसम है सर्दियों का मौसम, वो भी तब जब सूरज नहीं निकलता। स्पेशली वो टाइम तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आता है कि सूरज नहीं निकल रहा है, सब लोग 3-4 तरह के कपड़े पहन के, जैकेट के ऊपर जैकेट, जैकेट के ऊपर जैकेट, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: तो उस अच्छे आने वाले मौसम में जो आने वाला है, उसके बारे में क्या आज आप चर्चा करेंगी, और क्या विषय वस्तु होगा आपका?
0: विषय वस्तु मेरा बस यही है कि जो मौसम मुझे पसंद है वो कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, और जिन्हें साइनस की दिक्कत है उन्हें तो आई थिंक ये बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा।
1: अक्सर करके जो ठंडियों में ज़्यादातर, थोड़ा बहुत बरसात में भी देखने को मिलते हैं, बट ठंडी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि साइनसाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको साइनस या ऐसी आम भाषाओं में जाना जाता है, ये कहीं ना कहीं सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इससे बहुत सारे पेशेंट परेशान भी रहते हैं, ऐसे ही पेशेंट ज़्यादातर आते भी हैं। चलिए आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि साइनस के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हम अपने लिसनर्स को दे पाते हैं।
0: बिल्कुल, और ये बीमारियाँ जो नॉर्मल नहीं होती, जो कॉमन नहीं होती, इन बीमारियों की इज्जत भी थोड़ी कम होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही किसी को साइनस होता है या फिर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है या ब्रेड सेंसिटिव है, तो उसको लोग कह देते हैं कि ये सब तो बातें हैं, दवाई करो, देखो हमको भी होता है और हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। उनकी एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन सोसाइटी में उसकी इज्जत थोड़ी इतनी कम होती है कि लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते।
1: जी देखिए, ऐसी एक मुझे जो दोहा चौपाई जो भी कहते होंगे इसे, मुझे याद आ गई, काफ़ी हमारे लोकल लैंग्वेज के से संबंधित है ये, मैं बोल भी देता हूँ, अपने लिसनर्स को बताता हूँ। कही जाती है एक बात कि जाके पाँव ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
0: ओके, तो मुझे ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि जिनके पैरों में कभी, मतलब जिनकी एड़ियां नहीं फटती हैं, वो क्या जाने इसका दर्द क्या होता है,
1: दूसरों का दर्द क्या होता है। बिल्कुल आपने सही इसका भावार्थ समझा। तो देखिए, कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो समस्याएं वास्तव में हम फेस कर चुके होते हैं, जैसे बुखार कॉमनली सबको पता होता है कि हाँ, क्या होता
0: बुखार है, जुखाम है, जुखाम
1: हो गया, सर दर्द हो गया, पेट दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशन, इसका अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप इस पे मतलब एक आप पाएंगे कि वो नपातुला कॉमन रिएक्शन देते हैं कि अरे हाँ हाँ भैया लूज मोशन 4-6 बार आ जाता है तो एकदम वीकनेस लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको भी लाइफ में कभी ना कभी ये हुआ है और उन्होंने भी वो फेस किया है। अब देखिए साइनस जैसे आप ये नाम ले रही हैं और आपने इस मुद्दे पर ये अपनी बात रखी तो उस पे ही मैं उसका और वर्णन कर रहा हूँ कि साइनस क्या होता है कि जैसे कॉमन साइनसाइटिस जो है वायरल साइनसाइटिस और ये कॉमन कोल्ड कॉमन फ्लू ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो होता है ये हमें 1-2 दिन परेशान करता है 2-4-6 घंटे परेशान करता है और जो बेसिक रेमेडीज़ होती हैं होम रेमेडीज़ होती हैं उनको मात्र ले लेने से थोड़ी राहत मिल जाती है जैसे काढ़ा पी लीजिए और भाप ले लीजिए आप वेपर ले लीजिए इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी या वो जो रुमाल में डालने वाला कोई नेजल डिक कंजेस्टेंट होता है वो विक्स और ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको राहत मिल जाएगा। बट जो एक प्रॉपर साइनसाइटिस के पेशेंट हैं जो एलर्जिक साइनसाइटिस हैं या किसी तरह की इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है कोई संक्रमण वगैरह की वजह से है उनको समस्याएँ ज़्यादा होती हैं अधिक होती हैं और वो उनमें बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं इरीटेट होते हैं इसे पीड़ित होते हैं तो उनका मतलब कहीं ना कहीं ये दर्द जो भी जिनको आपने कॉमन बीमारियों की संज्ञा दी वो अलग होता है जो एक सामान्य व्यक्ति फील करता है उससे।
0: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और स्पेशली साइनस वाले उन्हें जब एक बार ये चीज़ ट्रिगर करती है मुझे भी नहीं पता कि साइनस को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर सकती हैं। धूल परेशान कर सकती है, सर्दियाँ परेशान कर सकती हैं या मॉर्निंग में जब वो उठते हैं सो करके तो उनकी छींकें स्टार्ट हो जाती है फिर वो नॉनस्टॉप होती रहती है।
1: जी
0: 2 या 3 बार से ज्यादा अगर आपको छींकें आ जाए तो आपका सर हिल जाता है अंदर से कि यार अब बस करो अब कितना ही हो। जुकाम में छींकना बहुत गंदा लगता है बाय गॉड। कभी कभी राहत भी मिलता है कि चलो नाक बंद थी खुल गई 2 सेकंड के लिए बट वो जो वो एक सर का एक भारीपन होता है और लगातार आंखों से आंसू आना पानी आना आंखें लाल पड़ जाना ये दिक्कत वही समझ सकता है जो लगातार 20-30-40 बार नॉन स्टॉप छींक रहा।
1: हाँ ये देखिए चूंकि ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है लगभग 10-15 बार 12 बार इतनी बार छींकें आना ये मेरे साथ भी ये घटना हुई है। मैं समझ सकता हूँ कि 2-4 बार तो थोड़ा सा मजा आता है लोगों को अच्छा फील होता है लेकिन जब वो बैक टू बैक आता है तो ये पूरा नेजल कैविटी ये पूरा साइनस एरिया पूरा सर वगैरह वो पकड़ के भारी हो जाता है दर्द होने लगता है तो वो प्रॉब्लम होती है तो वो फिर उसके बाद दिक्कत करता है।
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साइनस होता क्या है।
1: जी सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग हर बार चालू करते हैं किसी भी अगर टॉपिक को तो उसका परिचय ही देते हैं और इस बार भी हम पहले परिचय ही देते हैं और जैसा कि ऑलमोस्ट जैसे थायराइड हो गया शुगर हो गया ये सारी जैसी चीज़ें होती हैं उसी तरह जो साइनस है हमारे बॉडी में ये सबको होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गन है ये एक ग्रंथि है जो हमारे नाक जो होती है नाकों के अगल बगल में नीचे होती है हड्डी के पास होती है ये ऊपर नहीं होती है। वहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो कि एक विभिन्न तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है या हार्मोन्स के ट्रिगर से हमारे नाकों का जो पाथवे है जो एयरवे है जिसके माध्यम से जाता है उसको मार्ग को सकरा या और फैलाना या उसमें पानी का रिसाव करना ये सारी प्रक्रियाएं साइनस करता है। ये एक ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। एक पेयर जो हमारे नाक के दोनों साइड में होता है आँखों के नीचे और नाक के बगल बगल में और दूसरा पेयर आंखों के ऊपर हमारी जो मत्था होता है मत्थे में अगले हिस्से में उसकी एक परत होती है उस ऑर्गन की तो ये साइनस कहलाता है। और जो समस्या हमको होती है जिसको हम साइनस के नाम से जानते हैं वो साइनसाइटिस नाम की समस्या होती है मतलब जो साइनस नाम की ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाना ये समस्या होती है और इसको लोग साधारण भाषा में बोलचाल की भाषा में साइनस के नाम से जानते हैं।
0: ऑल राइट और अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि साइनस और नॉर्मल जुकाम में फ़र्क क्या होता है।
1: हाँ जिसको आप साइनसाइटिस कह रहे हैं देखिए नॉर्मल जुकाम जो आपको होता है वो क्या होता है कि किसी न किसी वायरस बैक्टीरिया इन सारी चीज़ों के ट्रिगर से होता है जो अमूमन मौसम के बदलने पे आप पाते हैं कि जुखाम वगैरह हो गया। कुछ विशेष कंडीशन में जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह कचरे के संपर्क में आ जाए किसी और ऐसी विषैली गैस जो है होती है जैसे अमोनिया वगैरह इसके लंबे कांटेक्ट में आ जाए मतलब 2-4 सेकंड का 10-20 सेकंड का 1-2 मिनट का कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है बट लंबे समय तक उसके एक्सपोजर में आ जाए तो ऐसे समय पर भी उसको जुखाम जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मल जुकाम से अलग होता है। अब जो नॉर्मल जुकाम आप पाते हैं कि आपको मौसम के बदलने पे सर्दी गर्मी इसके वजह से हो गया, ये किसी न किसी एक कॉमन वायरस जो होते हैं ऐसे मौसम में बदलते हैं, इनके वजह से होता है। अब ये हो गया जुकाम का परिचय। अगर आप पूछते हैं साइनसाइटिस या साइनस, तो यदि इसकी समस्या किसी को है तो इसके दो तीन कारण होते हैं। जैसे एक दो कारण गंभीर तो हो सकते हैं कि वायरल की वजह से साइनसाइटिस हुआ हो या बैक्टीरियल साइनसाइटिस हो। वायरल साइनसाइटिस जो है बैक्टीरियल साइनसाइटिस की अपेक्षा में कॉमन होता है, बैक्टीरियल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रेयर होता है। इसके अलावा एक जो हमारे बॉडी में बहुत गंभीर समस्या होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चलते, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं अगर नॉर्मल अगर भाषा में कहूँ तो एलर्जिक साइनसाइटिस। एलर्जिक मतलब क्या है कि आपको किसी भी तरह के डस्ट से, पॉलन से, और अगर मतलब पानी के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोहरा गिरता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, फॉग होता है, इससे वो ट्रिगर हो करके और आपको ये जो नेज़ल कैविटी का ऊपरी हिस्सा होता है इसमें सूजन, भारीपन, नाक जाम होना या आँख से पानी आना, ये समस्याएं एलर्जिक साइनसाइटिस कहलाती हैं, जो किसी एलर्जी से ट्रिगर हो जाती हैं। और कई बार ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए हैं जिनको हमने उनकी जाँचें की तो वो किसी तरह का वायरल बैक्टीरियल नहीं है, एलर्जिक प्रोफाइल उनकी बढ़ी हुई है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, इसके वजह से उनका जो है ये नाक में जाम होना या बॉडी में इचिंग होना, रैशेज होना, मतलब जो भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं इसके वजह से भी।
0: ओके, हमारे पास एक कॉल है
1: जी।
0: हेलो हेलो गुड इवनिंग, आपका नाम? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
2: जी, आपका आवाज मुझे मिल रहा है।
0: क्या अब आपको हमारी आवाज आ रही है?
2: जी बिल्कुल, आपका आवाज बिल्कुल हमारे पास स्पष्ट रूप से पहुंच रही
0: है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका?
2: देवी प्रसाद
0: जी, स्वागत करते हैं आपका क्लिनिक ज्ञानस्थली में। और ऑफ कोर्स आप
2: नमस्कार हमारे तरफ से
1: जी। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है देवी प्रसाद जी आपके पसंदीदा शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में।
2: सर एक प्रॉब्लम है, लगभग 2 महीना हो गया
1: जी, और 2 महीने से आप वो प्रॉब्लम हमसे बताए नहीं, ऐसा कैसे हो गया देवी प्रसाद जी, बताइए।
2: नॉर्मल में सोचते थे कि ऐसा मच्छर सरकार में से हो जाता है
1: जी,
2: तो के नीचे जो गांठ होता है जितना जी मोड़ते हैं पैर
1: जी,
2: तो वहां से नीचे खुजली हो रही दोनों पैर में सर
1: जी।
2: तो ये प्रॉब्लम है सर।
1: अच्छा, ये खुजली कब से हो रही है आपको?
2: लगभग 1-2 महीने हो गए। लगभग
1: 1.5-2 महीने हो गए। ठीक है देवी प्रसाद जी, इसके अलावा और कोई प्रश्न है?
2: और तो कोई प्रश्न नहीं है सर, और खजवाने लगता है तो बहुत ज्यादा खुजली होता है सर।
1: ठीक है, आप हमें ऑन एयर सुनिए, हम आपकी समस्या का समाधान बताते हैं।
2: जी सर
1: जी। हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर जो कि हमारे ऑलमोस्ट सभी शोज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, देवी प्रसाद जी, इनका प्रश्न ये है कि कुछ मच्छर वगैरह काटने की वजह से इनके पैरों में घुटने के नीचे इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। देखिए, कई बार चूंकि ये हमारे आज के जो विषय है इससे थोड़ा सा संबंधित भी है, कई बार क्या होता है कि कुछ मच्छरों के वजह से या किन्हीं और दूसरे जो कीट पतंगे होते हैं उनकी वजह से काटने से भी हमारे शरीर में खुजली जैसी समस्या उत्पन्न होती है, और कई बार ये हमारे ऑटो इम्यून को ट्रिगर कर देती है, जिससे ये मतलब कीड़ा वगैरह जो काटा होता है वो जगह तो ठीक हो जाती है पर उसके अलावा खुजली जो है वो बरकरार रहती है। इसके लिए उपयोगी होगा कि हम अपने आसपास जो नॉर्मल क्रीम्स यूज़ करते हैं, एंटीफंगल क्रीम्स यूज़ करते हैं, कैंडिड बी और क्लोबेट जीएम जैसे सामान्य क्रीम, इनको अप्लाई करके देखें। यदि इनके बाद भी उस खुजली में आराम नहीं हो रहा है तो आपको आवश्यकता है कि आप किसी चिकित्सा परामर्शदाता से संपर्क करके और उसको एक बार परीक्षण कराएं, उसको ज़रूर दिखाएं, हो सकता है वो उसके आगे कुछ जाँच वगैरह कराने की सलाह दें। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और पूछते हैं उन्नति मैम, क्या प्रश्न अगला करने वाली हैं?
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने एलर्जी की बात की थी और एलर्जी जो इंडिया में बहुत कॉमनली नहीं जानी जाती है, इंडिया से बाहर तो लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बट अगर इंडिया में अगर आप किसी से ये कहो कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है, मुझे इस चीज से एलर्जी है, तो लोग इस पर थोड़ा सा कहते हैं किसको मूंगफली से एलर्जी होती है।
1: देखिए एलर्जी जो है इसकी आप बात यदि उन लोगों से करेंगे जिनको ऐसी जुड़ी संबंधित कोई समस्या है तो उसको अवश्य समझेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके बॉडी में सीवियर ईचिंग, रैशेस, गोल गोल चकत्ते, फिर उनको तरह तरह की बातें, कुछ कहते हैं कि ये जुलपुत्ती है, कुछ और भी तरह तरह के नाम कहते हैं, मुझको याद भी नहीं रहता है, तो ऐसी बातें करते हैं, तमाम झाड़ फूंक और क्या क्या लोग कराते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको सिंपली कोई एक एंटी एलर्जिक जो कि सिट्रिजीन, लिवोसिट्रिजीन, फैक्सोफेनाडीन, एलेग्रा और ये तरह तरह की वन ऑल सिट्रिजीन तमाम नामों से आती जो दवाइयाँ, ये देगा आपको, एक स्टेरॉयड दे देगा, ओमनाकॉटिल, डेकाडान, बेटनिसॉल जैसी नामों से दवाइयाँ दे देगा। देखिए इसका अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत से पेशेंट जब बहुत परेशान होते हैं तो हम उनका इलाज जांच भी नहीं करवा पाते, क्योंकि इसकी जो जांच है वो लगभग 5-6 हज़ार रुपए की होती है एलर्जिक प्रोफाइल, और उसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आपको किस तरह के चीज़ों से, पीनट बटर से, बटर जैसी चीज़ों से, या डिटर्जेंट सोप से, या किन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, इसका इलाज उसके बाद भी नहीं होता है हमारे पास। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, जिनको वास्तव में किसी चीज़ से गंभीर एलर्जी है उनको आजीवन कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं, कुछ उनको और भी इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन उनको दी जाती हैं, वो खाते रहते हैं और ये ठीक रहता है, बट वो दवाइयां भी धीरे धीरे धीरे ओवर टाइम बॉडी पे कई सारे गंभीर प्रभाव डालती हैं।
0: और मेरा तो यही सलाह है कि अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। अब वो अलग बात है कि कुछ लोगों को एलर्जी उनके पसीने से भी होती है, और एक केस तो मैंने देखा जिसे पानी से ही एलर्जी थी।
1: जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्किन की अवस्थाएं होती हैं जिन पे पानी पड़ने पे बहुत सारी प्रॉब्लम, कई सारे ऐसे भी एलर्जीज होती हैं जिनके स्किन में मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही लूज होती है, तो जब वो पानी में जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है मिनरल्स लॉस करने लगती है, मिनरल्स लॉस होने की वजह से आपका बीपी फॉल डाउन होने लगता है, तो मतलब आपको ऐसी ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही शरीर की संरचना, इसकी बनावट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनावट है, और बिल्कुल उसी चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए, उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए ही हम यहाँ आते हैं।
0: बिल्कुल, अगर आपने कोई भी चीज़ टेस्ट किया है और उसको करने के बाद अगर आपके गले के अंदर इचिंग हुई है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो ये मत सोचिएगा उसका टेस्ट ही ऐसा, वो तो खुजली करने का काम ही है उसका, नहीं वो आपको एलर्जी दे रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने पीकेंस खाए थे, एक टाइप का वॉलनट का कजन समझ लीजिए, और उसको खाने के बाद मुझे मेरे गले के अंदर इचिंग फील हुई थी।
1: और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि किसी एलर्जेंट से आपकी जान चली जाए, बट कुछ विशेष केसेस में, हाँ कुछ सीवियर केसेस में, कुछ विशेष केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि कुछ ऐसा खा पी लेने पर या उसके संपर्क में।
0: और कॉल है, माफी चाहेंगे। हेलो हेलो, ओके मुझे लगता है यहाँ से। हाँ जी सविता जी, स्वागत करते हैं आपका क्लिनिक ज्ञान असली में।
1: देखिए
0: अब गुइया का तो काम भी खुजली करना है, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना, राइट?
1: जी देखिए हमारे जी बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं सविता जी।
3: जी
1: कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक, ज्यादा नहीं हूँ।
0: सविता जी आपके सिग्नल में इशू आ रहा है, माफी चाहेंगे।
3: हेलो,
1: आपकी आवाज थोड़ी सी फस फस के आ रही है सविता जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करने का प्रयास करेंगे प्लीज।
3: अब ठीक है?
1: जी अभी ठीक है।
3: हाँ तो आजकल नींद में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, जैसे कि नींद आ रहा है 9 बजे, अगर नींद आ जाए तो मैं चाहती कि सो जाती हूँ, फिर 1 बजे नींद अपने आप खुल जाता है, उसके बाद से नींद नहीं आता है,
1: बीच बीच में नींद खुल जाती है। बिल्कुल
3: जी,
1: बिल्कुल
3: जी जी जी, बड़ा मुश्किल होता है जब नींद से जागे तो उस दिन नींद नहीं आता, वही दिक्कत वाली बात है
1: जी।
3: और बाकी सब अभी ठीक है।
1: ठीक है, और आपने बताया कि आपको घुइया के पत्ते से एलर्जी है।
3: जी जी जी, घुइया के पत्ते से, घुइया से, ये सब से काटने में आज

0: ऐसी समस्या है, ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही सामान्य मानी जाती है, और ठीक है मेरा ओपिनियन भी है कि सामान्य ही है, पर कभी कभी कुछ गंभीर केसेस में ऐसा पाया गया है कि एलर्जी के चलते उनको सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स हुए हैं, खुजली हुई है, खांसी आना स्टार्ट हुआ है, सांस फूलना स्टार्ट हुआ है। मतलब एलर्जी में सिर्फ आपको मतलब ऐसे नहीं है कि वो स्किन से ही जुड़े लक्षण आएंगे, रैशेज या चकत्ते या खुजली, आपको खांसी भी आ सकती है। कई बार कुछ मेडिसिन के रिस्पॉन्स से जो दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन्स लगती हैं, वो उनकी एलर्जी की वजह से ताबड़तोड़ खांसी आने जाती है, सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसा भी केसेस पाए गए हैं कि एलर्जी के वजह से उनकी बॉडी ने इतना ज़बरदस्त ट्रिगर किया है कि धीरे से उनका हार्ट को प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कार्डियक अरेस्ट होकर के वो मर गए हैं, या जो ब्रीथिंग अरेस्ट होता है, सांस रुकने की वजह से वो मर गए हैं, मेडिकल सपोर्ट उन तक नहीं पहुँच पाया है। तो एलर्जी के वजह से जान भी जा सकती है, ये किसी विशेष कंडीशन में इतना भी गंभीर हो सकती है।
1: ऑल राइट, और अब मेरा सवाल है कि साइनस का जो हमारा टॉपिक है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं?
0: जी देखिए, जो भी साइनस या साइनसाइटिस नाम की समस्या के पेशेंट्स होंगे, उनको बेसिकली आप देखेंगे तो नाकों में सूजन, या फिर उनको बार बार छींक आना, या नाक जाम रहना, सर के जो आपका फोरहेड होता है आगे के हिस्से में, आंखों के ऊपर के हिस्से में बार बार दर्द होना, दर्द बना रहना, लंबे समय तक बना रहना, आंखों से पानी आना, और इसके अलावा कभी कभी सांस फूलने की भी समस्या, ब्रीथलेसनेस जैसी समस्या भी ट्रिगर करता है। तो इससे जुड़े हुए सारे लक्षण आपको आएंगे, जो मतलब एक जुकाम के लक्षण होते हैं वो आपको आएंगे। और कई बार ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो मतलब बताते हैं कि हमको हमेशा जुकाम बना ही रहता है, उनसे जब ये पूछा जाता है कि मतलब कितने दिन से आपको जुकाम है, तो वो कहते हैं कि सालों साल जुकाम बना ही रहता है, वो ठीक ही नहीं होता है कभी। तो इससे मिले जुले संबंधित लक्षण आपको आते हैं साइनस में,
1: यानी कि आपको पूरे साल जुकाम रहता है। अच्छा, वो जुकाम जो होता है वो नॉर्मल लोगों की तरह होता है कि उनकी नाक बंद रहती है, उन्हें बोलने में दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, या नॉर्मल ही रहता है, मतलब अलग रहता है थोड़ा इससे?
0: देखिए, जो नॉर्मल जुकाम होता है ये आपको 2-4 दिन के लिए होगा और फिर आप अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। बट चूंकि जो ऐसे साइनस वाला जुकाम है, जो साइनसाइटिस की वजह से जुकाम है और लंबे समय से है, ये आपको ऐसा होता है कि धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं रहती हैं समस्याएं, छींक आना भी कम हो जाता है, दिन में 1-2 बार आएगा। लेकिन नाकों के आसपास का भारीपन, नाकों में इरिटेशन, खुजली, ये सारी चीज़ें वो बनी ही रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं।
1: ऑल राइट भाई, ये उनके लिए है जिनको पूरे पूरे साल जुकाम रहता है। अगर आपको ऐसा है कि लंबे टाइम से जुकाम है तो एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं।
0: बिल्कुल, और कई बार पेशेंट्स इसे एसिनोफिलिया भी समझते हैं कि एसिनोफिलिया हमारा बड़ा रहता है। तो देखिए, एसिनोफिल्स बढ़ना भी कई कारण से होता है। पैरासाइटिक अगर है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट अगर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसा कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले केसेस जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, उनको कंप्रेस करने की दवाइयाँ पेशेंट्स को खिलानी पड़ती हैं कि वो दबा रहे किसी तरह से।
1: ऑल राइट, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह जैसे उन्हें जुकाम होता है तो वो स्टीम ले लेते हैं, क्या ये भी ले सकते हैं?
0: जी, साइनस के पेशेंट्स अगर स्टीम लेते हैं तो स्टीम उनके लिए कारगर रहता है, और उनको स्टीम समय समय से स्टीम लेने के लिए एडवाइस भी किया जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो साइनस ब्लॉक वाली प्रॉब्लम होती है, जिनकी नाकें जाम हो जाती हैं, उसको खोलने में, उसको ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्पफुल होता है, इसलिए ऐसा एडवाइस भी करते हैं डॉक्टर।
1: अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम होती है क्या उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है?
0: अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से साइनस की प्रॉब्लम है तो उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको माइग्रेन जैसा दर्द भी हो सकता है सर में, ये भी प्रॉब्लम है। और देखिए, कुछ हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल होता है, जब हम किसी तरह के स्ट्रेस में आते हैं तो उस समय पे हमारा ब्रेन जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जो हमारे डिप्रेसिव हार्मोन्स होते हैं, जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन हो गया, डोपामीन हो गया, इनका लेवल बढ़ता है तब जब हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, उलझे होते हैं ऐसी कंडीशंस में। जब उनका लेवल बढ़ता है तब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है। अब कॉर्टिसोल बनता है हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है, तो अब आप समझिए कि इनका कॉन्टैक्ट किस तरह से है।

0: यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है, फिर वो वहां जाके अब्सॉर्ब हो रहा है, तो फिर वो दूसरा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम से ढीली पड़ जा रही है। तो ये हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे भी ट्रिगर्स होते हैं कि जब साइनस ट्रिगर होता है तो वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हार्मोन जाकर के सर का दर्द ट्रिगर कर देते हैं। तो ये समस्या ऐसे आपस में जुड़ी होती है।
1: फिलहाल बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है आपसे, लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञान असली विद राज्योन्नति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली स्टेडियो।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञान असली में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर श्रुति, और हम बात कर रहे थे साइनस की। हालांकि अब मैं बस इतना ही जानना चाहूंगी आपसे कि साइनस वालों के लिए कोई टिप्स बता दिए ताकि वो परेशान ना हो इस आने वाले मौसम में, बिकॉज इसकी कोई दवा नहीं है अगर उन्हें एलर्जी ट्रिगर कर रही है तो।
1: जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, जो लोग इसे मतलब नए, अगर उनको समस्या स्टार्ट हुई है तो उनको तो एक बार बेहतर होगा कि वो कुछ तरह के ज़रूरी चेकअप्स होते हैं उनको कराएं और हेल्थ एडवाइज़र की सलाह लें। बाकी जिनको ये समस्या पहले से है, लंबे समय से है, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आपको ऐसे पॉल्यूटेंट्स या एलर्जेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे धूल धक्कड़ हो गया, किसी तरह की विशेष स्मेल हो गई, कहीं पेंट वगैरह, तारपीन, इन सब चीज़ों की जो तीखी स्मेल होती है, जो तीज लगती है नाकों में, अमोनिया जैसी, इन सभी स्मेल वाली जगहों पर बचें। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंस्टेंट अपने नाक पे रुमाल वगैरह रखें, और ऐसी जगहों पे अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा मास्क वगैरह लगा करके जाएं, कपड़े वाला जो मोटा होता है जिसमें एयर अच्छे तरीके से छन जाए, और ठंडी से बचें। अगर मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है तो ऐसे मौसम में बाहर जाने से बचें, स्पेशली जब बारिश वगैरह हो रही हो या फॉगी वेदर हो, आप मास्क वगैरह का प्रयोग करें। ऐसे भी मास्क आते हैं जो ठंड वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, जो नाक वगैरह को कवर करने के लिए, उनका प्रयोग करें, स्पेशली रास्ते में आने जाने वक्त, जब आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप ठीक है उसको हटा सकते हैं, बट आते जाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा धूल धक्कड़ अगर कहीं उड़ रही हो तो वहाँ पर भी बचाव करें, और अगर किसी को ये बार बार हो रहा है तो गर्म पानी का भाप भी ले सकते हैं, उसमें कुछ विक्स वगैरह डाल करके भी भाप ले सकते हैं। हल्दी और नमक डालने वाला जो इलेक्ट्रिक वाला भी आता है भाप लेने वाला, उससे भी भाप ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हो तो एक एंटी एलर्जिक भी आप कोई कॉमन जो OTC है, जैसे सिट्रिजिन वगैरह है, इनको आप लेकर के खा सकते हैं 24 घंटे में एक बार। और यदि इसके भी आगे आपको समस्या होती है तब आपको आवश्यकता है किसी हेल्थ एडवाइजर से सलाह लेने की।
0: और एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से है कि जिनको साइनस या माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो अपने आसपास हाई या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें।
1: जी जी।
0: और उनके आसपास वाले भी लोग ये ध्यान रखें कि आपके परफ्यूम इतने अच्छे होने चाहिए बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि किसी की माइग्रेन टिगर हो जाए, किसी का साइनस टिगर हो जाए।
1: बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं उनको निकोटीन, तंबाकू या दूसरे तंबाकू उत्पादों से बचाव करना चाहिए, और दूसरे अन्य मादक पदार्थों से भी, क्योंकि अल्कोहल जैसे जो तत्व होते हैं जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो ऑस्मोसिस है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, मतलब इधर उधर सारे हार्मोन्स होने लग जाते हैं और जो जितना होना चाहिए लेवल, pH वगैरह सारा डिस्टर्ब हो जाता है, इसके वजह से भी ये समस्या ट्रिगर करती है। तो बहुत ही हाई अरोमा जिसमें हो, जो बहुत तीखी गंध स्मेल वाली जो केमिकल्स हो, रसायन हो, या कोई खाने पीने की भी चीज़ हो जो हाईली एरोमेटिक हो, जैसे बहुत डार्क चॉकलेट वगैरह टाइप का हो गया, ये एरोमेटिक होता है, माउथ में जाते ही मतलब उसका फील होता है कि एक बहुत मतलब तेज कॉफ़ी वगैरह भी पीने से बचना चाहिए ऐसे लोगों को।
0: रूम फ्रेशनेस का भी ध्यान रखें, आप कमरे को महकाने के लिए तो कर रहे हैं, पता चले वो जो इंसान आ रहा है उसको माइग्रेन हो और उसका माइग्रेन टिगर हो जाए।
1: जी।
0: फिलहाल के लिए हमारे पास चैट बॉक्स में अरविंद जी जुड़े थे और प्लेलिस्ट की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लगाए अंबुज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्नति मैम, डॉक्टर राहुल सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू।
1: वेरी वेरी गुड इवनिंग आपको, आपका स्वागत भी है।
0: सविता जी लिख रही है, बहुत अच्छा जानकारी मिली सर जी, नमस्कार। उन्नति मैम जी नमस्ते। नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़ते हैं।
0: फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है बाप से विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी अगले संडे, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है और आजकल के मौसम में वायरल टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, और अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल है तो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे। बस इतना ही।
1: जी बस इतना ही देते हुए, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं हम फिर अगले शो में कवर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
0: आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM। बाय बाय, टेक केयर।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स, और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: आज कितना नीक लागत है, आंगनवा में सब आई है, देखो हरा हरा कपड़ा पहने है, मेहंदी लाग है सबके। हाँ क्या दुलारी,
3: बहुत नीक लागत है। राम राम बहनी,
4: राम राम चाची,
3: राम राम, राम राम,
2: राम राम। बहुत अच्छा नीक लागत है आज हमारे,
3: आज बहुत भेड़िया है तोरे चटपटो घर में।
2: हाँ नहीं, सब आ जाते हैं एकदम, घर जैसे भर जात है।
3: हाँ एक तो चलता है इसमें मौसम, हो तो वहाँ है
2: चलता।
3: हाँ सावन लागी गाँव, देखो जगह देखो, हर तरफ हरियाली हरियाली है।
2: हाँ हम गए रहा ना, वो
3: हाँ
2: मंदिर हो, दुखहरण नाथ मंदिर हो,
3: गोणा में है जोन
2: गोणा। हाँ,
3: हाँ।
2: गई रहा ना पहले सोमवार का,
3: टहरे गयु रहा का,
2: हाँ टहरे नहीं
3: गला चढ़ावे।
2: हाँ परछे,
3: अच्छा परछे गयु रहा,
2: तो बता दे तू का।
3: हाँ
2: कतना भीड़, कतना मनई, कतना मेहरारू, कुछ पूछो ना दुलारी।
3: हाँ
2: अब हमें ना हो आए दिन सब। हाँ हम कोई भोले बाबा हो, हमरे ऊपर जो है लोटा भर के पानी डाल दिन।
3: जान इतनी इतना भेड़िया होत है।
2: हाँ।
3: कि भेड़िया हम लोग ये ना ही देखते हैं कि शंकर जी पे पनिया चढ़ाते कि मनैया न पा।
2: ओ हमार नीक नीक साड़ी
3: लियो, हरियर की पहन के रहा। हाँ।
2: हरियर की पहन के गए रहा।
3: जाओ गंधवा आए जा।
2: अब बताओ कैका का समझाए, अस पूजा होत है जेके ऊपर चढ़ावे है, उसके ऊपर चढ़ाओ तो हमरे ऊपर चढ़ाए दियो।
3: वो देखा तो ना ही है ना।
2: और हम बहनी लड़ाका तो हो ही ना कि हम कर कर कर कर करे लगी।
4: हाँ चाची,
2: हमें लड़क तो रहा ना ही, लेकिन बहुत हमें दृश्य लगा। फिर हम कहा कि भोले बाबा के जगह पे आए हैं ना, हमका रिस नहीं करे चाहिए। क्या दुलारी?
3: हाँ ठीक करू भाई, शंकर जी के थनवा पहुँच के रिस।
2: हम अपन गुस्सा पी गए, जैसे भोले बाबा बीस पी
3: गुस्सा पी गए,
2: ऐसे गुस्सा पिया हम ना बोला। हाँ हम कहा कि ये जब 20 पी गए तो हिया तो कोनो कुछ ना डारिन पनिया डारिन, अब हवा में निकलब साड़ी सूख जाए। हाँ यह है सोच के गुस्सा पी गए और कुछ ना बोले। पर हम यह कही थे कि भाई जाओ, जेका नहुआवे के लिए गई हो, परछे के लिए गई हो, ओके ऊपर पानी डालो।
5: पूरे कहा तू बहनी, कोनो गलत नहीं कहा।
2: हाँ तब तब है तो फल मिली।
4: हाँ चाची,
3: अब तुम्हें ना कोनो फल मिली खे उनका,
2: तू गाड़ी पे है और का हमें ना होइए तो तू हम तो दुई गाड़ी दे माने दे आने सामने तो दुई तो दे दिया।
3: ठीक करियो, उनका समझाओ कि जाओ हुआ के मुड़ा आप चढ़ाओ खोपड़िया।
2: यहाँ सब करत है अत्ता, मतलब जल्दियान रहत है कस, बस जब चढ़ाए दे हमका फल मिल जाए, बिटी आई तो कहीं हमका दुल्हा अच्छा मिल जाए, लड़के आए तो कहीं हमका बिटिनिया अच्छी मिल जाए, और बुढ़ुआ कहीं की हमारे पतोहिया हमार सेवा करे, कुछ ना कुछ सब मनोकामना ले के आवा।
3: हाँ तो हाँ। रहते है बहनी,
2: तो वह कहते कि मन से चढ़ाओ तो भोले बाबा चढ़ाओ।
3: हाँ। और जान लो
2: का
3: जैसे इनका नाव है भोले बाबा, वैसे ये भोले हैं, तनिक हम खुश हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाई दो खुश हो, एक सोमवार भूखी रह जाओ, दूसरे सोमवार तुम्हार ब्याह हो जाए। हाँ, कही थे बहनी।
2: अच्छा ये बताओ बहनी, के रहा है सोमवार का?
4: हम नहीं रहते चाची।
3: तू कहाँ नहीं रहा थी?
4: हम ना आए रहे थे।
3: ये तो नाम लक्ष्मी है कि कजरिया?
4: कजरिया।
3: अच्छा कजरिया नाम तो हम लक्ष्मी लक्ष्मी का है।
2: काजल हो।
3: अच्छा बहनी हम बहनी बिसर जाई थे।
2: तो देखो बहनी आप लोग जो है बढ़िया बढ़िया दूल्हा पाए जाओ, हमारी यही मनोकामना है।
4: हाँ मोहिनी रहा थी चाची,
2: तो मोहिनी के साथ
4: मिल जाए दूल्हा।
3: दुल्हावा मिली की मुँह ले आई। हाँ बहुत नीक दुल्हा मिली, जान लो शंकर जी का ये खुश करे ही।
4: हाँ बहुत।
2: तो दिखाओ तो बहनी अपन अपन मेहंदी दिखाओ सब। अरे
4: वाह चूड़ी थी, चूड़ी भी देखो
2: ये बहुत बढ़िया नीक
3: घर की बहनी।
4: हाँ चाची
2: हमारे घर का एक जनी आई कल आई हमारे लिए हरी हरी वो साड़ी लेके आई है, चूड़िया लेके आई है, पहनाई ना कर आई के हमका बहुत नीक लगा। हम कहा कि देखो हमार तुम्हें बहन बहन है नहीं ऐसे सब आई के हमका दई
4: नाखूनियो लगाए हैं।
2: हरी हरी ना देखो नेन पॉलिश लगाए है, नेन पॉलिश हरी हरी
5: नेन पॉलिश लगाई है।
4: हां नाखूनी
5: नाखूनियो लगाई
2: है। हां और की लगाए है
3: पूरा हरियाली इनके दही अब देखो।
4: हाँ पूरा हरियाली छाई
3: और नीको लागती चटपटो।
2: आज अब तो है सावन महीना, चारों तरफ देख लो सब हरियाली छाई है।
4: हाँ
2: है कितना नीक लागत है, हर पूरा जौन मैदान मैदान हुआ ऐसे पड़ा रहा था। देखो माँ इतना बड़ा बड़ा घास लगा,
4: हरा
2: पूरा कितना नीक लागत है। अब क्या कहा जाता है वातावरण।
3: हाँ वातावरण का होते बहनी?
4: वातावरण
2: माने चारों तरफ हरियाली है, हरा हरा वातावरण है। तो समझ ना पाई हो तो हिंदी में नहीं पढ़ी ना अंग्रेजी पढ़ी, तो पढ़ी बस खाली देहाती
3: है। हमें देहाती ना कहो नहीं जान ही लो चटपटाओ।
2: देखो है वातावरण नहीं जान पा रहे, हमें इतना समझाई था हिंदी में कही तो
3: तू कही हुई की वातावरण ई वातावरण का होता है।
2: वातावरण नहीं तो वातावरण कही थे, सीख लो तू वातावरण।
3: वातावरण
4: वातावरण
2: तो टांग जो तोड़ दे हो वातावरण की राह दे तू ना बोलो
3: वातावरण
4: वातावरण हुए चाची
3: ई का दिन का
2: बात नहीं। तो अंग्रेजी में बता दो वातावरण तनी किन का अंग्रेजी में बता दो वातावरण
3: का होता बहनी
2: कौनो बता दो
3: अंग्रेजी में का होता वातावरण।
2: हमका भैया सिखाई ना हमें आद है कहीं ना एटमॉस्फियर कहीं ना एटमॉस्फियर
3: आद
2: एटमॉस्फियर
3: आद एटमॉस्फियर।
2: हाँ ये बताए ना अपने भैया में आद है
3: यही क्या वातावरण कहा जाता है।
2: वातावरण कहा जाता है
3: और ये क्या एटमॉस
2: फियर
3: फियर एटमॉस्फियर
2: तब हरे का एटमॉस्फियर है इस समय।
3: हाँ
2: अब तनिक भाई चहलाओ कीचड़ है
4: वो तनिक।
2: हाँ नहीं नीक लागत है कि भाई गाँव की सड़किया अड़किया तो देखो कौन हाल होन जात है,
3: बहुत बुरा हाल है।
2: अब हमका जब खड़ा करियो तो हम खड़े होके सब बनवा ये रुडिया उडिया सब ठीक करा दे चका चका।
3: हे बहनी
4: हाँ चाची
3: वो कहाँ गई कजरिया ये निकाय वो जो नी पीछे अरे का कहा जाते दादा उसका बई बई बई डर बैनर बनवायो इनके फोटो वोटो ले गए हो बैनर वा इनके बनेगा तो इनके प्रैक्टिस कराए दो एक बार।
4: हाँ
3: प्रैक्टिस
2: बोले बोले की प्रैक्टिस हुई जाई और काम वैसे तो बोल ले थे लेकिन तनी तनी बहनी बताए दियो ना तो हम निक निक बोला प्रैक्टिस माँ
3: इनका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
4: बहुत
3: नहीं ये उल्टे पुल्टा बोली है कुछ।
4: हाँ चाची सही
3: कहा और वहीं में अंग्रेजी और तूर फार लगाए दे हैं।
2: हाँ अंग्रेजी तो हम बोल ले थे कहे नहीं बोल पाई थे।
3: हाँ बोला की हाँ लेकिन तूर फार के बोला
2: हमार भैया अरमिका में बैठे है अगर हम नहीं बोल पाए अंग्रेजी तो जान लो कौनो ये दुनिया बोल ना पाई।
3: ये बाप रे बाप।
2: हाँ बताए दिया
3: इनका भैया आर्मी कम बैठा है आए और ये ही अगर अंग्रेजिया ना बोल पाई तो कोनो दुनिया में ना
2: बोल पाई।
3: आता ना बड़ा बहनी ये बम फेंकी नहीं आए मुड़वा उड़वा दागीगा हमारा। और का देखो तनी इनका बहनी।
2: अच्छा चलो ये सब छोड़ो।
3: हाँ
2: ये सब ठिठोली हंसी तो सावन में होता है। देखो जहाँ चार मेहरारू बैठे
3: हाँ
2: ये सब तो होबे करी
3: और ना हो तो कैसे पता लागी कि चार मेहरारू बैठे।
2: हाँ
3: और का
2: तो हम कहे थे कि बहनी लोग आई है कौनो एक बढ़िया सा जौन है सोनई गाँव।
4: हाँ चाची
3: गाँव। हाँ
4: चाची
3: समन्वय हो हिन का चाही समन्वय गाँव है बहनी या आद है तोरे कोनो सौना
2: नहीं तू सुनाई दो तारे हम याद करी थे।
3: अच्छा तू याद कर रहो जबली का हम ये कठाओ हमरे एक गनवा तोरे याद है चटपटाओ जोन गाँव
2: तो अरे हमका तो इस समय बहुत याद है हम तो रेडुआ खोले रही थे।
3: हाँ।
2: और हम सुना करी थे कि सब सावन के आवत है ना सब बतावत है कि अब सावन लाग गा है।
3: हम तो वहाँ सुनी थी बहनी जो इनका ही सब पढ़ा थी कलेजवा मा नारी स्थली
4: गान, गान, गान स्थली
3: वही नारी गान स्थली के जो रडंगवा होता ना वह खोली थे वही आठ लिखाओ आओ नाव लिखाओ
2: बिंदी
3: लगाई दो और छा धाई दो वहाँ हम खोल कर और वहाँ हम सीखे ने एक तो सुनाई थे तू है और मैंने जिनी कोनो ही किरण पांडे वह गावत ही अवधी गनवा उन्हें सीखे ने अब हमारे संगरिया गाँव सब है पुरवाई ले बाओ।
4: हाँ, पुरवाई ले
3: बाओ। आस्था बहनी तू पुरवाई बाओ।
4: हाँ।
3: तो चलो सब पुरवाई ली आठ ढोलिया ले आऊ चटपटाओ।
2: हाँ, अब तो रोजे हमें बोली मारत रही हूँ।
3: हाँ।
2: अब देखो कौन मेरे हम ढोलक मगाए
3: नवा खरीद
2: बतायो ना कौनो को ना बतायो एकदम सांस ना लियो।
3: हाँ, तू लोग पहनी के उस ना कहो
2: नहीं चाची घरे आ गई है
3: ढोलक मांगनी चला जाते बहनी
4: मांग के ले जाए फोड़ रही
2: है फोड़ रही है
3: इनका ये ढोलिया फूट ही गए बहनी
2: पूरा बिना बताओ जाए
3: फूट गए और कचदरवा में लाइक बांध वैसे दई गए और ये बुड़बक ही ये खोल के देखबो ना यकीन कि हमारे नीक है कि बेकार है
2: और के दई गए बताओ। अच्छा भोले बाबा उनका दिखे तू गा।
4: हां जय जय
3: भोलेनाथ बाबा की
4: जय
3: दुखनाथ बाबा की
4: जय।
3: और एक जने कहां है मजन
2: अरे सत्य नारायण बाबा की जय
3: जय और शंकर जी के जो हुआ है जहां जाय कहत रहू कलिहा
2: पर थबी
3: नाथ बाबा की
4: जय।

0: यमहा ने ये बतावा गा है कि जैसे एक जनी सखी ही, जैसे मान लो हमार सखी चटपटो ही आए, अब इनके मर्द मने लौटन भैया वो चला गए विदेश का कमाए, अब ये बेचारो घर में बैठी ही, अब उनका आदि आवत ही का करें, तब यही गवनैया देखो
1: अगवा तो बोल लो, फिर हमहू बोलब ना तब जान लियो तो कि का हम कहब,
0: ये बहनी हम काओ गलत कहे ना कुछ गलत कहे है
1: तो ये काहे कहा तू कि परदेश जई है, काहे जई है हम जाए तब ना
0: बहनी,
1: हमने खेत हमने द्वार हमने घर सब हमरे है।
0: अरे सुनी लो हम एक तो उदाहरण है, दाहरण दाहरण दिन जान दे हुआ है, वह दाहरण दिन है कि मानो ये हमारी सखी हो चली ये घर में रहा थी और इनके मर्द चला गए परदेश
1: का काहे नहीं कहो, तो जीजू हमार जीजू चले जाए तो तू का करी
0: है, ये गवनैया क्या गावत है, हम गाई थे कि तू गावत थी, तो हम अपन सखिए तो बताई भाई एकदम बुड़बक होन जाती जा चटपटो, तू है खड़ा का करी थी प्रधानी के लगे तू बिलान जाती है, बिलान चाहती है प्रधानी में खड़ी हुई है, तभी निकल का हुई बहनी अगर ये प्रधानी जीत गई
1: हमार उदाहरण दे दी अपन काहे नहीं दियो,
0: तो हमार सखी हम ही बन जाई हो हाँ। हमार सखी क्या बन जाई तो हो
2: तो बनिए
0: जाओ चटपटो अगवा सुनो
2: हाँ, सुना
0: बारी।

0: बहुत गावागा चाची।
1: अब देखो हमार सखी कहा थी कि हम अकेले ना रह पाई भाई, और जो घरवा ना आई बो तो फसरी लगा चटपटाओ, तू ना लगायो
0: आपका प्रधान बने
2: का। हाँ हमका तो प्रधानी लड़े खे लड़े हुए खे, लेकिन हम फसरी ना लगाए, पर ये जान लियो कि कोई फसरी लगाए ले हमसे प्रसन्नताप राखी वो फसरी लगाए ली।
1: तो किया लगाई बहनी तू हम कहा तू कहा
0: भाई सुनावे थी
1: ये खेलो तनी ये चटपटो हमार सखी हुए और कसकाई हम में देखो का कहती कि हम फसरी लगाए
3: फसरी लगाए लेवे
1: हम फसरी ना लगाई बे चटपटाओ हम फसरी ना लगाई बे का जान लिए
2: नहीं भाई देखो ऐसी तो मजाक की बात है।
1: हाँ
2: है, हम तो कबहू नहीं चाहती कि हमार जो सखी हो फसरी लगाए या फसरी हम
1: फसरी लगाए वही ना लगा सबके मर्दे आए जाए
2: बस बस वह बात
1: काहे तो, कोई फसरी लगाए मत जाए आए
2: ना ही कौन नहीं कौनो लगाए हुए लगाए ना देवी का टंगिया पकड़ के घसीट
1: घसीट लाई भाई और का काहे को कोई फसरी लगाए लगा ऐसा भाई नीक सुख रहा है बहनी है कि नहीं और मरते कमाए तो जाबे कर ही कमाई है ना लई है तो खाव का हम लोग है कि नहीं बहनी।
0: हाँ चाची
1: हाँ
2: वो समझ लो कि दुलारी एक हमें गाना याद आएगा है बहुत हमका नीक लागत है कि अपने घर भी रोटी है अस है ना ही गाना एक वो एक ठो गावत है पंकज
1: उहास वो कहा थी चिट्ठी आई है
2: याद आवा रोटियों अपने घर है
1: आधा है दूल्हे गाय ले
2: गाय दो गाय दो बहुत लागत है
1: जे भैया जे बहनी जे परदेश बैठी हुए देखे तो करेज निकल जा है कि नहीं अपन घर
2: द्वारवा हो चाहे
1: बहनी घर द्वारवा छोड़ के कोई जावा चाहत है सबका अपने घर में नीक लागत है अपने परिवार बिचम।
2: हाँ तो सुनाई दो सुनिए ना बहन
1: दो लाइन याद आएगा।

0: बहुत नीक लागत जब सुनी था तो हमरे आस बहेला।
1: हाँ पूरा ही कहा बहन पूरा। अब देखो इतना त्योहार आवत है बहुत मनई ऐसे हुई है जब परदेस बैठा हुई
0: बैठा जाए दो हमरे जो सैनिक लोग हैं।
1: हाँ सैनिकन का देख लो
0: देखो बॉर्डर पर लगे रहा था कि हाँ, तो दुश्मन ना आ जाए।
1: हम सब यहाँ गुड़िया मनाई रखौंदी मनाई थे सावन मनाई थे
0: छुट्टी नहीं मिला
1: अब उन्हें सबका बताओ कौनो त्योहार नहीं
2: कौनो त्योहार छुट्टी नहीं मिलता
1: वह अपने वहाँ अपन नौकरी करते बहन सियानम है तो सियानम
0: है कि उन्हें अपन घर आ दावत हुई है बहन भाई आ
1: हाँ,
0: दावत
1: और अब देखो भाई यही बचवा में है आई उहो आ जाई
3: गुड़िया
1: आ जाई जो 15 अगस्त
0: वाला 15 अगस्त आवे वाला है ना
1: बहन 15 अगस्त वो आ जाई तब एक ठो वहा गाय दिन जाई अब
3: हाँ
1: देश गीतियो गाय जाई अब
0: नहीं तो देखो ये त्योहार जो है हमारा देश जब आजाद भारा है तब के गाना है बहुत नीक नीक गाना है पर आजकल कौनो गवते नहीं है
1: नहीं गवते देश गीतिया सब भुलाए जाते खाली बस 15 अगस्त कहीं कहूँ बाजत सुनाई पड़त
0: बस
1: वो करे बात दूसरे दिन से बंद
0: ये गनवा रोजे बाजे
1: बहनी हाँ। सबका याद रहे
0: बैठी है ना आप लोगों के बीच में कही थे कि अस गाना जो है रोजे बजावा जाए
1: रोजे बजावे मने इनका बच्चन का ये जान पावे हमारे देश कैसे आजाद भारा है कितना सैनिक लोग कैसे जान दिहिन्ना कैसे का भवरा ये सबका मालूम हो चाहिए
0: बिल्कुल बहनी तो लोग सुना करो जो देश भक्ति गाना होत है
1: हाँ वो कैसे भक्ति गाना होत है एक सुना करो
0: भगवान की भक्ति से पहले देश की भक्ति है जहाँ हम पैदा हुए हाँ, हाँ, हाँ। जन्म लिया है सबसे बढ़िया
1: और का
0: वही भक्ति करे चाहिए
1: वही भक्ति भाई देखो हम लोग आए नहीं यहाँ अपने पैदा भयन देश में तो हमारे सबके अपने देशों के लिए तो कोनो जिम्मेदारी है
0: सबके जिम्मेदारी है
1: हम जब जन्म लिए हैं यही का कहा जाता है जन्म जहाँ का हमने खाया अन्न जहाँ का हमने पाया वो है प्यारा देश हमारा इसकी रक्षा कौन करेगा हम करेंगे।
0: बहुत आज याद दिलाई दियो अब बचपने की स्कूला
1: हाँ सही कहा तू बहनी याद है
0: लोग स्कूल में जाते रहे ऐसे चिल्लाए गए देश की रक्षा कौन करेगा
4: हम करेंगे।
1: तो बहनी ये सब चीज याद रखे चाहिए हमेशा है ना
0: और का तू लोग उनका आवत है कौन देश भक्ति गीत तू लोग तो गोबर गणेश हो गई हो
1: तुम्हारे कॉलेज में तो इतना नीक नीक सिखा
0: कॉलेज में तू लोग पढ़ाती हो
1: हाँ
0: और वहाँ से गनवा सीख सीख
1: कौन कॉलेज में नारी स्थली
3: हाँ नारी ज्ञान स्थली
0: वहाँ से सीख क्या करो बहनी हम लोग
1: तो हर कॉलेज में तो बहुत नीक है वहाँ बहुत चीज सिखावा जाते बहनी
3: हाँ सब सिखावा
0: सब गवा सबका आवत है पर खिसियात ही है और कौनो बात
1: तो जब बिटिया पढ़ाती तो स्मार्ट हो जाती खिसियात नहीं तू लोग स्मार्ट नहीं हो
3: स्मार्ट
1: वही स्मार्ट वही तब तू सब कहे कि खिसियात हूँ बहनी चलो गाय दो एक ठो गौ नहीं करो आवत है
0: हम कहावत है एक ठो जो हम मास्टर साहब सुनावत नहीं रहे कितना नीक गावत रहे मास्टर साहब
1: गाय दो
0: तो वह
1: गाय दो गाय दो और देश गीत गाय दो
0: हाँ देश गीत है ये
1: हाँ
0: वो हम सिखावत रहे मास्टर साहब को याद है ना
1: हाँ मास्टर साहब आवत है हाँ याद
0: बुड़ रहे जो
1: हाँ हाँ हाँ
0: परवा नहीं रहे
1: झंडे वाले के खड़ा हो जाता है
0: तो बहुत नीक गावत रहे
1: हाँ
0: वो गान हमका याद
1: सुनाई दो सुनाई दो आज तू सुनाई दो
0: सुनाई दी थे थोड़ बहुत आवत है ज्यादा नहीं आवत
1: चलो जितनी याद है
0: अब देखो कितना टाइम हुईगा ना
1: हाँ भाई तो
0: हम लोगों का कितना टाइम हुईगा
1: हाँ
0: लेकिन अब याद है निक निक होत रहा है गाना और
1: ए, सब ए, चटपटो पहले मने ही जोन राहत रहे उनका बहुत याद राहत राहत रहा
0: याद करा दे भाई सब बच्चेवन का पढ़ावत रहा कि आज तक हम भूलबे नहीं करे
1: हाँ अब नहीं ऐसे अब बच्चेवन का आज पढ़ाओ जूते पूछो जूते भूलाए
0: पढ़ाते नहीं है पढ़ाते नहीं सब नहीं पढ़ावत है
1: ये सब तो कौनो नहीं पढ़ावत है
0: हम लोगों के टाइम ही सब पढ़ावा
1: हाँ,
0: जा रहा है
1: ये तो बतिया पूरा
0: कहा ना ही पढ़ावत है जनता तो अपने ना जानत है तो लड़कवन का काम
1: अपने ना जानत हुई कैसे दसवा आजाद
0: भारत हो वो ध्यान करके हमार गनवा सुनी
1: हाँ चलो सुनाओ
3: सुनाओ

0: कस लगा भाई, कस लगा ये बताओ।
1: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा। कितना
2: हम आ तो मना कहा था कि पूर गाए दो, पूर
0: अब पूर ना याद है,
2: बड़ा नीक
0: ना। आ बस यही एक दो लाइन ऐसे बस याद है, दिमाग है तो।
2: हाँ सही बात।
0: हाँ तो चलो भाई, अब हम जौन कुछ बनाए है ना, अब बहनी लोग आई है,
2: दो लेनिया और हम गाई दे। हमारे दुई लेनिया याद आवत
0: जो है,
2: यहां मटर सुनाई ना, नहीं दूसर का
0: मटर सुनावत रहे।
2: ए वो कैसे रहा, तू हूं गावत, तू हूं जाना, तू चटपटो जा।

0: अपने देश का सलूट है, सलाम है।
1: हाँ
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखो जय लिखा ये गाना, जय गावा ये गाना। हाँ। आज देखो कितना पुराना ये सब गाना हम लोग गाए थे और तुम लोग गई हो।
2: हाँ।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चला आवत।
0: हाँ। तो जब सीखी हो तब गई हो,
1: गई हो।
0: तब तोरे लड़का ने बाले हुई है वही गई है सीखी है।
1: नहीं दुलारी।
0: हाँ।
1: जब ये सब गाना गई है तो इनके अंदर अपने से भक्ति भाव जाग
0: रहा है।
1: हाँ जागी
0: बिल्कुल जागी।
1: हाँ बहनी आप लोग सीखो स्कूल में और गावा करो हमरे साथ बैठ कर के। हाँ। चौपाल में हमरे।
2: ठीक है। हाँ।
1: तो चलो भाई कुछ बना के रखा है आप लोगों के लिए, तो एक छोटा सा ब्रेक ले ली थे और ब्रेक लेके तू लोग का बढ़िया सावन का बस खवाई तक का बना ना। अबे बताइबे ना
0: आज। हाँ। बनी हुई है परपराइज।
1: सरप्राइज
0: सरप्राइज
1: सरप्राइज सरप्राइज
0: पर पराइज हो
1: ना ही सिर पराइज होता है।
0: सिर पराइज।
1: हाँ चलो चलो बाद में बहस कर बे। तू तो बस तो टंगिया तोड़ दो हिंदियों की अंग्रेजियों की। हम तो बहुत परेशान।
0: तब जो हम पढ़े हैं वह है तो कहबे चटपटाओ तू। हम कहीं जब पर पराइज
1: जाए तो ददई बस शांत हुई जाओ कुछ लाए बनाए हैं खा।
0: चलो चलो चलो चलो बहनी चलो हम इनके झगड़ा लाग रहे हैं।
1: चलो
0: चलो
1: लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बड़ा नीक बनाए रहे
1: जानू का रहा है घुइयक पाता लगा रहा है।
0: हाँ वो हम जान गए सोहिनवा बनाए
1: घुइयक पाता पाई गए तो हम कहा कि अब बस भिगो दिया दाल और बढ़िया देखो बनाई डाला
2: तो बड़ा नीक
1: सब बरखा और बहुत नीक लागत है और हमार फरा तो ऐसे जनते हो कतना बढ़िया लागत दाल जब भेज दिया तो हम कहा फरो बनाई डालो बहुत बनाई
0: अरे तू बनावे बहुत तेज हम जानी तो चटपटाऊ
1: तू खाए बहुत तेज हम जानी थन दुलारो
0: तो तू बनाई पो तो हम खाब
1: चटनिया
0: इतना नीक बनाई है एमन का नेबुआ निचोड़े हाँ
1: हाँ बिना नेबुआ के तो आजकल हमें कुछ नहीं अच्छा लगा
0: बहुत नीक बनाई हो चटपटो बहुत नीक
1: निचोड़ दिया जल को नहीं कनकना
0: ए चटपटो तू एक और सलाह दिए
1: का बता
0: तू एक होटल खोल ले ढाबलिया खोल लो
1: देख के आई हमरे पास
0: अरे बहुत मन पूरा गाँव पहुँच जाई
1: आ जाइए अब तू का खुलवाइयो हमें पहले ये बता दो कि हम खड़ी होई कि हम बैठ जाए खनवा बनावे के लिए तू बता दो
0: ये काम करो
1: अब हमें खड़ा करे
0: ये काम करो ये पहले तू खड़ी हो जाओ वो मान जीत जाओ बस जूता बैठ जाओ जीत जाबो
1: नोट मिलबे करी
0: नोटिया तो मिलबे करी एक तू ढाबा बनवाई लो और बहरे लिख दो चटपटी ढाबा बहनी चटपटी ढाबा
1: चटपटा ढाबा
0: या चटपटा ढाबा कह दो चटपटा ढाबा और तू यह चटनिया
1: नाम नहीं ठीक लगी
0: हाँ
1: हम बताए थे अब उमर नाम ये रही चटपटी दुलारी चटपटा ढाबा
0: या हमका जरूर समेट ले हम ताकि जान तू कहे सुन ही लो कहे कि हमें समेटा थी ये तो नीक नीक बनाई है अब बर्तनवा कुल हम ही मान जाए यही से हमार नवा ये लपेटे ही कि ये तो बनी है बनाई है चटपटा सामान और जिन बर्तनवा निकली है दुलारी अगर साफ कह लो है दुलारी अगर साफ कह लो दुलारी मंजबाई करी है प्लेट
1: तो रुपया तो मिली तुमका
0: अरे रुपया मिली खाए पानी कुल मिली माजिक मैंने हमारा गुड़िया खिया जाये
1: तब देखो परपंच से बचा रहा जाये
0: अरे परपंचवा तो हम सब ना ही करी थे बहनी
1: ए पूरे गाँव मशहूर हो के तू बहुत परपंच कर दी हो
0: हाँ तोहरो ना हुआ मशहूर है बहनी ना जानो कल ही हमें मिले ना सुकुल कहा था कि चटपटो बहुत परपंची नहीं
1: बताओ भवानी पर
0: है जाने का कहीं
1: जौने दिन हमका मिल गए ना
0: तो सुकुल कहत रहे कि चटपटो हल्ला मचाई नहीं पूरे गाँव में कि हमार पतोहिया भाग गए
1: रे दादा रे
0: हाँ यह सुकुल कहत रहे
1: कहता ना
0: कहे है
1: नहीं गाड़ी निकले था हमने मुँह से
0: तू उनके दूबे से कहे हो है बतिया
1: हम काहे बतुआ दी जब हमारे पतुआ ऊपर बैठी सोवा थे हम काहे का बताओ
0: वह कहत रहे कि वह कहीं नहीं चटपटाओ कि सुकुल कहे जो इन पतुहिया ही
1: ये सुकुल का पूरा खानदान मटिया मेट हम कर डालब ये जान लो तू
0: तो पहले जीत जाबो तब कह पेबो कुछ ना कह पेबो सुकुल का तू
1: हमें बहुत रिस लाग गा
3: चाहे
1: देखो अब झूठे बोला था ना कहा था कि हम परपंची
0: वही किरिया खात रहे किरिया वह किरिया खात रहे
1: तो हम अहू किरिया खाब जानी थे
0: हाँ तो वो किरिया खाए कहीं कि हम कहो ते के किरिया खाई ले और चटपटो के मुंह पाए हम कहीं
1: चलो हमें कुछ नहीं करे खाए उनका ऐसे नाश हुई जाई
0: तो तू काहे कहू कि उनके पतोहिया भाग गए
1: नहीं हम नहीं बतवाए तुलारी ये हम अम्मा कसम खाई थे
0: तू किरिया खाई ली
1: हम अम्मा कसम खाई थे दुलारी
0: देखो
1: किरवा खाई हम
0: किरवा खाई ली नहीं फिर से
1: नहीं हम नहीं कहा वो बहुत मनाई होए तो दूर रहे तू
0: हाँ
1: हाँ उसे दूर रहे ना
0: बाजू और कहा पूरे गाँव चटपटो के नाम बदनाम है
1: नाश हुई जाए और का हम

0: कि हमारे अंदर भोलेनाथ बैठा है। बस भोलेनाथ के सपो निकली इनका फन है दमन। ये का जान ही लियो, इनसे कह दो बम क्यों ना हुआ।
1: लो बहनी लो पानी वानी पियो,
0: ला पी ली लाओ
2: ला चाची।
1: हाँ पानी पियो,
0: ला पनिया पियाई दो और ये चटपटाओ
1: का।
0: ए कहिया इनके वो इलेक्शन वा है बहनी?
2: बस आवे वाला है,
0: यही रखाऊं दी एक बात है या नो?
2: हाँ,
0: रखाऊं दी
1: रखाऊं दी बात है।
0: हाँ
1: तब बड़ा हमका
2: सबसे प्यार से बोलो चाची।
1: अरे बहनी हम हमारे बुमा तो एकदम जैसे मिश्री मिश्री भरा हो।
2: हाँ निशानिया का है चाची,
1: मीठा बोली थे।
0: निशानी का है तुहार भैंसिया?
1: अब ये जौन कहा है
0: यही कहीं ना कि यह कहीं न कि हमार निशानी कह दो भैंसिया।
2: हाँ।
0: तो इनके बैनरवा पर भैंसिया बनवाई, वो भैंसिया बनवाई हुआ है?
2: हाँ, बनवायन है।
0: काली काली खूब करिया करिया हुआ है, मोटे के
2: मोटे के।
0: हाँ, हाँ।
1: चलो ठीक, भैंसिया को ना बुरा ना ही है।
2: हाँ चाची,
1: दूधवा देत है, गोबर देत है, तो काहे बुरी है?
0: हाँ,
2: बहुत अच्छी
1: ना ही ठीक है, हमारे देश का जनावर हो।
0: और का हाँ। जैसे गाय हमारी माता है, भैंसिया हमारा पिता है।
2: हाँ।
1: भैंसिया ना ही पिता हो,
0: भैंसवा
1: भैंसवा भले हुई जाए,
0: भैंसवा
1: भैंसिया ना ही पिता हो।
0: अच्छा।
1: माता है होती भैंस। अच्छा। माता गाय माता,
0: तो भैंसिया मन वो हो सौतेली महतारी।
1: हाँ महिला हो, महिला
0: भैंसिया।
1: हाँ
0: तो सौतेली महतारी हो जाये।
1: हाँ तो ऐसे कह लो कि कारी महतारी, एक गोर महतारी।
0: अच्छा
1: चलो ये बहस खत्म करो।
0: हाँ
1: एक ठो अब शिव जी का गाना गाओ।
2: हाँ, चाची गाओ।
0: चलो भोलेनाथ की ये जाना थी चटपटो, इनके जीवमा भोलेनाथ बैठा
1: बैठा है ना, तो ज्यादा गाना जा रहे।
0: अबे फुपकार फुपकार गई है। चला गाओ हो
1: तो चलो गवाई लियो पूर करो।
2: हाँ,
0: चलो
2: चलो, चलो।

0: भोलेनाथ बाबा की जय।
1: तब देखो अगर भोले सोए गए हो, हाँ, इतना पानी चढ़ाते है उनके ऊपर, दुधुआ चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, सब चढ़ाता है ना, तो सोए गए हुई है मस्त लाद फान करके आराम करत हुई है। अब
0: बहुत गाऊ चटपटो हमारे हथवा पिराए बहुत गायू तू।
1: गौरा मैया एक ऐसी है जौन जगाए लावे,
0: जगाए लावे, कुछ बोल नहीं सकता,
1: नहीं बोल सकता। तो भाई देखो आज तो बहुत आनंद आवा, बहुत आनंद आवा।
0: चल बटो परुइया है, अब किस उम्र वक्त चलबो पर छे, तो हम हो कि चलो।
1: हाँ तो चलो,
0: तू सब चलबो,
1: भोरे चलो, भोरे एकदम,
0: हाँ भोरे चलबे, तो थोड़े लोग आ जाओ,
1: आ जाओ, चार बजे आ जाओ और सबे निकल पड़े।
0: हाँ और सबे हरियर हरियर पहिरो कपड़वा,
2: हाँ,
0: और देखो नखुनियो लगाई सी हरियर का, चूड़ियो पहिरे हरियर के, मेहंदियो लगाई, हम हो लोग लगवा ली जाई,
2: हाँ लगवा लो चाची,
1: बहन यही लोग लगाए दे, बढ़िया,
2: हाँ लगाए ले,
0: लगाए ले तू बहनी आस्था, हाँ,
1: लगाए ले ऐसे भाई, बड़ा सा एक बिंदी लगाए ले थे, अब बस हमार मेहंदी लाल का,
0: हाँ, हम हूँ ऐसे करी थे,
1: एक बनावे के वो लगा कहा जाते इतना बड़ा
0: किपिया,
1: किपिया लाई के वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे घुमावा करे, हम लोग उनका तो उतना ना डिजाइन नहीं
2: आया,
1: तो हम लोग तो ऐसे बुंदा धैली थी एक,
0: हाँ बुंदा धरे उंगुरिया में लगा लिए,
1: उंगुरिया में लगा लिए, बस हुई गया तनी गोड़े में लगा लिए हुई गस आए, और ये सब आजकल बहुत बहुत तरह तरह के मेहंदी चली है, लगाए लगाए सब निकाल, अरे का बताई, इतना सुंदर सुंदर मेहरारू, इतना सवेरे कैसे तैयार हुई जाती, हमका तो बड़ा
0: कहाँ के देख लियो मेहरारू,
1: अब हुए गए रहन ना
0: परछे,
1: गोड़ा परछे गए,
0: अच्छा तो हम हूँ लोग सजलिन जाए ना,
1: बजे बजे लिपटिक लगाए के, कजरा लगाए के, पट्टिक लिपटिक लगाए एकदम बढ़िया
0: लाल लाल,
1: हाँ सब बढ़िया
0: चम चम चम चम,
1: सब सड़िया बढ़िया बढ़िया पहन के,
0: हम हूँ सब पहन लिन जाए,
1: बढ़िया लागत रहा, अब का बताई, मतलब कहीं ना पाई थे हम ये इतना एकदम वातावरण जो रहा वो एकदम सुगंधित
0: एड मास
1: पियर,
0: हाँ वो बहुत सुगंधित रहा। देखो लोटन भैया फोनवा कई दिन एको मिनट तोहरे बिना रही ना पावत, हाँ जैसे आवत ही तैसे पीर पीर पीर पीर करे लागत।
1: अबे लीन है ना वो छुटका वाला तो हम छीन लिया,
0: हाँ
1: हम कहा कि अब ना चलाओ, हम खड़े देखो खड़े हुए खाए ना, हमका
0: हाँ।
1: प्रधानिन बने खाए,
0: हाँ।
1: तो हम कहा कि अब्बे से इज्जत बनावे का है, छोट वाला धई दो,
0: हाँ,
1: बड़का खरीद ले, तो बड़का खरीदे ना, वही सौकियाए रहा था, पिनेट पिनेट बजावा करत है,
2: बहुत ख्याल रखा,
0: हाँ हाँ। तब भाई तो रिसियानी ना जब कहना पर दिया चला गया, अब जान लो यही से इनके चटपटो खान, तब बहनी चलो चला जाए और तैयारी करे के इनका जितावे का, बहनी
1: कहाँ जाइ हो, कहाँ जाइ हो, अब कहूँ नहीं जाए कभी बैठो,
0: हाँ, सुना बहनी हमका जाए के बजारे आज,
1: अच्छा तो पर वो सोमवार है,
0: हाँ तो ओका खर्तिन समनवा, अरे पर छे खर्तिन बहनी,
1: हाँ हाँ
0: जाई तो कुछ कपड़ा उपड़ा ले आई, भोलेनाथ खर्तिन चूड़िया चढ़ाई दे, है नहीं
1: नहीं दान वान करे चाहिए, तो हमका का
0: तो काव दान करी, काव दान करी,
1: देखो कपड़ा वस्त्र दान होता है,
0: वस्त्र दान,
1: हाँ और चूड़िया दान कह दो, मेहंदी दान कह दो, बिंदी दान कह दो, आलता वालता लैया बढ़िया नीक सुंदर बहुत दान कह दो, है गौरा तो, गौरा जी का सामान हो
0: तो कहाँ दान कह दी, क्या कह दे दी,
1: अब हम ही का दे दी हो और का
0: या हाँ देख
1: तब का,
0: हम ही दान करी, ये हमारे सखी ले ले,
2: हाँ।
0: तू पंडित तो हो ना,
1: ए पंडित का दान दे हो,
0: और नहीं तो का पंडित एक दिन जाते दान,
1: दान तो दान है, चाहे जे जरूरतमंद हो, जे गरीब गुरबा हो, का दे दे,
0: तू है दान दे हमार निकली परान। हम चटपटो तू है दान ना दे,
1: हमरे लगे अबे पैसा ना ही आवा है, तो अबे हम गरीब होई, जब तक हम
0: काहे गरीब, तुम्हारा अर्मिका भैया बैठा है उनसे मांगते हो ना नोटिया,
1: अरे देखो वही अर्मिका वाले अर्मिका में रहा था हमसे काल, बहनी का कोई ऐसे बस साल भर में आए कुछ पकड़ाए दीन 10-5 रुपया,
0: हाँ आज तू फुर बोली है,
1: हाँ,
0: आज फुर बोली बहनी, सुनी ना इनके कहानी नहीं, अब तू हमार सुन लो, यही जो कपड़ा पहन के आवे और इनसे हम जो कह दे, हे चटपटो तुहार कपड़ा वाले हे हमारे अर्मिका वाले भैया लाए है और कुछ मलवा पहनी आवे, और जो पूछ रही हे चटपटो तुहार मलवा बड़ा निक, हमारे अर्मिका वाले भैया लाए, अब कहा थी कि कहूँ साल भर पे आओ थे तो दाई दिए थे 10 रुपया, अब तो हार आज फूर निकरा है।
1: हम अब देखो अपने घर की कौनो कहे ना चाहिए ना, हमारे भाई तो हैं, कौनो दुश्मन तो है नहीं, तो हम तो चाहे थे कि उनकी बढ़त मनाई है, तो ऐसे झूठ ऊट बोले पड़त है ना कि ना हमारे भैया देगा ना हमारी भैया लाए ना ये साड़ी हमारे भैया लाए, कहे पड़त है दुलारी ना यही है कि फटहा है भैया ना ही पूछा था इनका,
0: तो दुलारी से तो ना झूठ बोलती हूँ
1: ना ही तो झूठ ना ही बोले हम, जो लाए उतका बताए है ना वैसे हम उका चार गुना ज्यादा बताई थे दूसरे से।
0: आई जुन आज पहरी वही फराक घस पहरे हूँ,
1: फराक लागत है तुम का तरी निक साड़ी पहने तुका फराक लागत है,
0: तो ये क्या लावा रहा अरबी का सावा हुई
1: जीजू लाए रहा
0: जीजू लाए रहा, तनी देखो कितना शर्मा थी मुआ भर लाल होएगा इनके देख लो तनी बहनी अखिया उखिया देखो कस मटकई लाग चमकई लाग, वाह रे चटपटो बिलान ही है बुढ़ापम बिलान जाती दादा
1: नहीं
0: ये हलिया दिया खलो तनी वाह रे चटपटो वाह रे जस तोहार नाम ताई से तू हो भैया, अब लागत है हमें कि तू जीत जाबो
1: जीत जाबे हाँ
0: हाँ, अगर तू बम क्यू ना तो तू जीत जाब जाओ कहूँ तू बम क्यू,
1: देखो सब नीक नीक रही है हमहू नीक रही
2: हाँ।
1: और कहूँ तनिक भर कोई अगर हमारी तरफ उंगली ऐसे दिखाई दी
2: तो हम
0: तू एक दिखाई दू दू दिखाई दी हो चार दिखाई दी हो
1: हम बांध के यहाँ दिखाई मुक्कबा
0: ये कुल ना की हो चटपटाओ नहीं तू हार जाबो हम खड़ी हो जाब है ना बहनी जब ये हारे लगी हैं तब इनका बैठा दियो हम खड़ी हो जाब
1: हारब तो हम ना ही जान लो कि ये चटपटी का बहु जो हार एक नाम आए जात है
0: हाँ।
1: तो हम भगवान का भी छोड़त नहीं है,
0: देखो फिर बम की है
2: फिर
0: बम की है बहुत बम कर
1: भोला बाबा हमका जीतई है और भारी बहुमत से जीतई है,
0: सुन लियो बहनी बम के अलग
1: ये देख लियो तू,
0: और जब कहूँ ये हार गई तो इनका पटक पटक हुए पटक पटक जवाब
1: तू है तू हमारे तरफ से तू बोलियो
0: हाँ।
1: चार लोगों से कहियो कि ना कि चटपटी का दियो
0: हम लोग तो नारा लगे
1: ऐसे ऐसे ये है काजल है ऐसे सब है यहो है वो बहनी है सब
0: सबका ना वो बुलाएगी देखो
1: ना ही बुलाए ना ही मोहिनी हो देखो बेटी कैसे मुस्कुराते है मोहिनी
2: महिमा
1: आस्था हो तो हाँ। ये चार चार कम से कम कहीं अगर चार चार लोग और चार चार लोग से कहीं
2: हाँ।
0: चाची अपने बहनी ना अपने घर हम सबका कहो कि नहीं चटपटो चाची गोट दे हैं
1: हाँ। लोगों से कह दियो कि वही और लोगों का बताई है
2: बताइए सबका
0: हाँ और सब के जो आए डाल दे हैं
1: तो हर लोगों की जिंदगी हम बनाई दे
2: हाँ पोस्टर छपवाई लगा दिए
1: भाई
0: बस यही ध्यान रखियो कि ये खड़ी हुई है तो ये गिर ना पा रहा
2: हाँ, ठीक है
0: कैसे गोड़वा इनके पिरान करते
2: हाँ।
0: तो असना हो गोड़वा पिराए लप लप लप लप होए लगे बस ये फाट पड़े नीचे
1: तो हम तो यही जानी थे कि भाई खड़ा रहे हमको बहुत मतलब ताकत लागी सब लागी गोड़वा हमारे जो कमजोर हो
0: ये बहनी एक काम करियो तोहरे लोग अपने गाँव से चार जनी हो
2: हाँ।
0: तो तोहरे लोग अपने गाँव से फंटी ले आयो बसवा वाली
1: फंटी काहे के लिए
0: इनके गोड़वा में बांध ही दे भाई इनके गोड़वा कमजोर है बहनी
2: गिरे ना
0: हाँ।
1: ए बहनी बताई काहे कमजोर है हमार ये कमजोरी ऐसे ना ही आई है
2: हाँ चाची
1: दिना भर हम चलित है
2: हाँ दिना रतिया दिना भर
1: दिना ज्यादा यहाँ से हमार गोड़ जो है कमजोर हुई गए
0: तो तू दिना भर काहे चलत हूँ
1: तू काहे चलती हूँ
0: हम तो बैठ जाई थे
1: तू कब बैठती
0: हम बैठ जाई थे दिना में
1: दिना भर गोबर काछती हूँ
0: सब करी थे कम के
1: जाती
0: सुनो घरा के कुल टहलिया करी थे
1: हाँ
0: लेकिन एक बार ये घंटा जाई थे बैठ जाई थे तो तू दिना भर काहे चल तू ये घंटा काहे नहीं बैठे
1: बैठ जाये तो घर हमार बैठ जाए जाने की नहीं जाने
0: अरे बहनी तोरा पतो हिया है
1: देखो अब वो का कहा जात है बनी है रावण का भाई का मेघनाद
0: सुम्भकरण सुम्भकरण
2: कुम्भकरण
0: सुम्भकरण
2: कुम्भकरण
0: अच्छा कुम्भकरण
1: कुम्भकरण की नींद सोवा थी
0: अच्छा
1: जागी में सुटके से चाय पी ली अब जो उठी
0: हाँ
1: तो बस चवा बनी रखी है तुम लोग अभी पियो हो ना बची गई है
0: हाँ हाँ
1: बस वो सुटके से पी के
0: फिर सो जाइए अरे मोरी मैया ये कस पतो हिया दादा
1: ऐसा हो ना हम परपंचिन हो अब तुसे बताए थे तो तू कहो कि हम परपंचिन हो पूरे बतवाए भर का नहीं है
0: पूरा ही बतिया तो पूरा कहूँ बहनी अपने हमारे घर का हलवा है का हाँ।
1: अब देखो कैसे ऐसे जैसे मगरमच्छ नहीं होते हैं, पड़े रहा थे
0: हाँ।
1: ऐसे पड़ी है कोनो काम नहीं कोनो धंधा नहीं
0: हाँ।
1: और हम लोगों के पास ना काम है कि
0: बहुत काम करे बहुत काम
1: काम ना हो रहा है बहनी काम ना हो रहा है
0: काम है कि हम लोग के कोनो उठा नहीं बहनी रतिया ना होए रतिया ना होए
1: हाँ
0: तो हमें लगन का वल्लक नहीं बता है इन्हों पतो हमरो पतो
1: अब ये कही था कि ऐसे जैसे हम लोग काम करी थे और करे
0: हाँ।
1: आगे करत रहा
0: हाँ।
1: ऐसे सबे करत रहे सबका सब कुछ ठीक रहा
0: और का भगवान नीक हाँ, सुख नी,
1: नी, राखे सबका
3: तब चलो
1: चलो चला जाए
0: बहुत देर होएगा
1: हमें इनके संगे जाए के गोड़ा बाजार
0: बाजार हाँ बाजारिया हमें चले जाए के बहनी
1: हम कुछ ले लेगा दान पुण्य करे खातिर
0: हाँ चली हम समनवा खरीद ले आए
1: हाँ
0: अब तब फिर मीटिंग हो तब फिर बैठे हो चली आयो तोरे लोग
1: तो मैं अपने दर्शकों से दर्श और देखो बोल नहीं पाए थे यहाँ कही था कि
0: ये तो अपने लौटन के फनवा जो पीर पीर पीर पीर कही दो उनसे उनसे ही कही दो कि फनवा ना लगाओ हम बैठन मीटिंग में
1: हाँ तो यह कहे पड़ी आ जाओ अब हम कही दे उनसे कि देखो हम बीचे बीचे में आपका फोन नहीं
0: हाँ, ये डिस्टर्ब करते हैं डिस्टर्ब
1: हाँ
0: हाँ अंग्रेजी बोल देंगे देखो
1: डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब
0: डिस्टर्ब
3: डिस्टर्ब
1: डिस्टर्ब
0: डिस्टर्ब
1: ऐसे बोलो ना डिस्टर्ब
0: ये तो हर गोल गोल मुंह हम कटोरिया से नहीं कह पाई थे डिस्टर्ब डिस्टर्ब
1: तो दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का और आप अच्छे रहें चुस्त रहें दुरुस्त रहें मस्त रहें हमारी तो यही कामना है और सुनते रहिए हमारा प्यारा सा रेडियो प्रोग्राम यानी चटपटी चाची और सुनते रहिए
0: 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर एडमिशंस ओपन जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584 88 40 35 95 84 अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो क्या स्थली 99.6 एफएम गोड़ा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम, जो कि HOD हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज। अभी चूंकि आपका हमने जिक्र किया था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस कॉलेज में कब जुड़ी, क्योंकि आपने यहाँ पे इसी के लिए वैकेंसी थी मनोवैज्ञानिक।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो उसके लिए आप कब यहाँ से जुड़ी इस कॉलेज से?
1: जी 2004 में ही यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, ये सब्जेक्ट 2004 में आया और मैं कॉलेज में जब आई तो यहाँ पर वैकेंसी थी साइकोलॉजी टीचर की। एक टीचर यहाँ पर अपॉइंट हो चुकी थी लेकिन फिर उनकी कहीं जॉब लग गई थी, वो चली गई थी, फैजाबाद की थी, प्रीति पांडे, और यहाँ पर वैकेंसी थी। तुरंत मेरे पास फोन आया, मैं यहाँ आ चुकी थी, मैम से मिल चुकी थी, तो मैम ने कहा रानी तुम रहती कहाँ हो? तो मैंने कहा पटेल नगर। बोली पटेल नगर में तो मैं भी रहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहीं पास में, और मेरी सिस्टर, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी सगी बड़ी बहन यहीं पास में ही मेरे साथ रहती हैं, और बड़ी मैम और उनके यहाँ आना जाना रिश्ता भी है। तो जब उन्होंने मिलवाया मुझे बड़ी मैम से तो मैंने बताया पटेल नगर में ही रहती हूँ। फिर मैम का फोन आया और 2 अगस्त 2004 का दिन था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और तभी से मैं यहाँ साइकोलॉजी टीचर। पहला बैच मैंने भी यहाँ पर पढ़ाया जो 101 स्टूडेंट, तो बहुत बड़ी चीज थी कि पहला बैच इतना बड़ा था, और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ता चला गया, और बड़ी मैम ने भी जब देखा 85% बच्चों के मार्क्स आते गए, बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, तो उन्होंने एज ए गिफ्ट मुझे यहाँ पर जो 15 नंबर कमरा नंबर 15 है वो मुझे एज ए गिफ्ट दिया बनाकर, कि ये साइकोलॉजी का लैब है जिसका फर्श भी टाइल्स, जिसके टेबल और चेयर भी उन्होंने माइका से लगाकर डैश मैचिंग, अलमारियां मैचिंग करके, कहा ये तुम्हारा एक उपहार है।
3: क्या
1: तो यहाँ भी मुझे उपहार मिले।
3: वाओ।
1: मेरे गाइड सर जब रिटायर हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, और उसके बाद मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जितनी बुक्स हैं मेरी वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी हकदार तुम। उनके अंडर में बहुत से PhD लोग कर रहे थे लेकिन मेरे सर ने सारी बुक्स राम कल्लभ तिवारी सर ने मुझे दी।
3: क्या बात है।
1: और मैं अपनी बुक्स लेकर यहाँ कॉलेज आ गई। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज में रख रही हो तो फिर 4000 रुपए मुझे दिए कि एक अलमारी खरीदना और अपने कॉलेज में ये बुक्स रख लेना।
3: वाओ।
1: तो यहाँ भी मुझे बहुत उपहार।
3: सच में काफी मायनों में आप बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ है, क्योंकि हर जगह आपको बहुत प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिला, और आज भी लगातार मिलता चला आ रहा है। अभी चूंकि आपके सब्जेक्ट का हमने नाम लिया मनोविज्ञान, तो सबसे पहले तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, मनो के साथ विज्ञान लगा है, इसकी क्या वजह है?
1: देखिए विज्ञान क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9216-9976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
1: मुझे मत रोको।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला, ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। मैं हूं आप सभी का दोस्त मनु, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी को होस्ट आरजे, मतलब जिनकी तलाश सभी को है। जी हाँ, उन खजाना कह सकते हैं उनको, लेकिन प्यार से हम उन्हें कहते हैं निधि जी। तो सबसे पहले निधि जी, आपका वेलकम है आपके ही शो गोंडा मैसेज मसाला में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: और कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस अब जैसा भगवान रख ले, जैसा हमारे श्रोताओं की कृपा बनी रहे, वैसे ही हैं। और आज आपने दिन भर क्या किया?
1: सर आज संडे था, संडे स्पेशल।
0: हाँ,
1: अपने पूरे हफ्ते का काम किया मैंने।
0: मतलब क्या मतलब, कई घर पकड़ रखे हैं?
1: जी सर, बिल्कुल पकड़ रखे हैं।
0: अच्छा, लगभग कितने घर पकड़ रखे हैं?
1: सर बस जितने आपने पकड़ रखे थे उससे एक कम।
0: अच्छा, हमने 11 पकड़ रखे थे।
1: चलिए, आप शुभ शुभ काम करते हैं।
0: तो भाई मतलब आपने 10 पकड़ रखे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: मतलब 10 घरों में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है?
1: सर मुझे कोई काम नहीं करना है, पकड़ रखने का मतलब काम ही करना नहीं होता।
0: अच्छा, ये मतलब है, मतलब आपने घर पकड़ रखा है, मतलब काम नहीं करती हैं, जाके घर को पकड़ लेती हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी। और धर्मेंद्र मोहन ने लिखा है, निधि जी गुड इवनिंग, आपको भी राम राम।
1: गुड इवनिंग धर्मेंद्र मोहन जी।
0: और अमरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या हमारी तरफ से भी, और हमारी को होस्ट
1: मेरी तरफ से भी आपको शुभ संध्या अमरेंद्र जी।
0: जी हाँ, तो आज सवाल के खजानों में क्या सवाल है आपके पास?
1: सर आज हमारे लिसनर्स के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए।
0: ओहो क्या बात है, मतलब स्पेशल दिन है तो कुछ खास होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो क्या खास होना चाहिए?
1: सर मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए उनको कि कभी कभी जो उनका नेचर ऐसे चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा।
0: अच्छा, मतलब क्या चेंज होता है जरा बताइए।
1: आप अचानक से फ़ोन देख रहे हैं, फिर एक झटके में फ़ोन रखते हैं, फिर आपको याद आता है मेरा बहुत वर्क पेंडिंग पड़ा है, मैंने आज कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो बहुत क्रिएटिव हो।
0: हाँ।
1: और फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके सामने कोई भी आता है आप चिल्ला देते हैं या कुछ कह देते हैं।
0: अच्छा, तो मतलब
1: तो मेरा सवाल आपसे ये है।
0: हाँ।
1: कि कभी कभी आप मुझे भी पढ़ाए हैं या यहाँ भी 6 महीने और कॉलेज में भी आपने कई क्लास ली है मेरी, तो बच्चों के साथ ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे जो एज मेरी है मैं रिलेट कर पाती हूँ चीज़ों से, या मुझसे छोटे जो हैं और जो मुझसे बहुत बड़े हैं 40, 45, 60, 70, तो मैं मतलब सबके साथ रही हूँ, हमारे घर में हर एज के लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत शांत ही रहती हूँ और मुझे अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है।
0: अच्छा,
1: जैसे मुझसे कोई चीज़ 2 बार रिपीट हो गई, किसी ने कह दी, तो मुझे लगता है कि मुझे इरिटेट कर रहे हैं भाई।
0: ये बात है,
1: इसके पीछे का आप कारण बता सकते हैं?
0: अच्छा, मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि गुस्सा आता नहीं है।
1: जी,
0: गुस्सा हम लोग करते हैं।
1: हम लोग को गुस्सा आता नहीं, हम लोग गुस्सा करते हैं।
0: हाँ, पूछिए कैसे।
1: कैसे?
0: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्लास में आपको बिना किसी गलती के किसी टीचर ने कभी डांट दिया हो?
1: सर कई बार हुआ है ऐसा।
0: तो आपने गुस्सा किया?
1: हाँ थोड़ा तो गुस्सा आता ही।

0: मतलब गुस्सा उसमें अपने टीचर से आप लड़ी भिड़ी?
1: नहीं नहीं, ये नहीं हो पाता सर।
0: क्यों नहीं किया?
1: वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो बड़े रहते हैं ना।
0: जानते हैं, हमको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हमको गुस्सा आता नहीं है, हम लोग गुस्सा करते हैं।
1: जी।
0: और गुस्सा वहाँ करते हैं जहाँ हमको पता चलता है कि सामने वाला हमसे कमज़ोर है, या हमको बहुत मानता है, या हम इससे जीत लेंगे।
1: जी।
0: तो वहाँ पर तो हमको गुस्सा हम कर देते हैं।
1: जी।
0: लेकिन जब ये पता चलता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है और हम इससे जीत नहीं पाएंगे,
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में हमको गुस्सा नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने घर में किसी चीज़ की मांग की,
1: जी,
0: मम्मी से आप नहीं डरती हैं, यूज्ड टू हैं उनकी, पापा से डर लगता है, हो मान लीजिए ऐसा सपोज,
1: जी, मान लेते हैं।
0: तो ऐसी स्थिति मेरे साथ क्या होता है कि मतलब हमने अपनी मम्मी के साथ गुस्सा किया कि खाना नहीं खाएंगे,
1: जी,
0: नहीं मिला ले जाओ, खाना नहीं खाना है, तब तक पिताजी की रौब दादावाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुरंत भोजन करना शुरू कर दिया। क्योंकि जानते हैं, अगर पापा के सामने गुस्सा करेंगे तो वो मुझको अपना समय याद आता है कि कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है।
1: जी।
0: मतलब ये गाना हमको बहुत पसंद था, लेकिन मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ रहा था और कुछ गलती हो गई हमसे, तो पिताजी ने मुझको कायदे से कूटा। वैसे भी भारतीय पिता इसलिए होता है कि वो कूट पाए।
1: जी सर।
0: तो जब वो हमको कायदे से कूट चुके,
1: जी,
0: अब सोचिए उस समय का मेरा सबसे फेवरेट गीत था, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक,
1: जी,
0: लड़की है। मेरी मम्मी ने मुझसे देखा और कहा, भैया हूर दीन गो। तो हमको ये समझ में आया, क्या इसी को हूर कहते हैं? आप यकीन मानिए, उस दिन से हूर शब्द से मेरा विश्वास उठ गया कि मतलब ये जो हूर दिया जाता है ये बड़ा गड़बड़ होता है। तो हमने उसने एक चीज़ सीखी कि गुस्सा हम अपने से कमज़ोर के ऊपर करते हैं, और गुस्सा होने का कारण जो होता है वो होता है, हमको लगता है इनपुट अगर आपका अच्छा है तो आउटपुट अच्छा होगा।
1: ये बात आप सही कह रहे हैं, पर सर कभी कभी होता है आपका गुस्सा, आप जहाँ रह रहे हैं, आपका खाना पीना और व्यवहार पे भी निर्भर करता है। तो क्या ये सच है कि जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं वो हमारे मूड को बैलेंस करता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे अगर आपने तामसी भोजन किया हुआ है,
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ अन्न का प्रभाव, कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा रहो, वैसा
1: रहे मन,
0: और जैसी पियो पानी वैसी रहे बानी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर होता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारा इनपुट अगर अच्छा है, इनपुट तो दो ही तरीके से होता है, या तो आँख होती है या तो कान होता है।
1: जी।
0: कभी आपने देखा होगा घर पर पापा आते हैं तो बहुत खुश होकर आते हैं, मिठाई भी लेकर आए, मूंगफली भी लेकर आए, चॉकलेट भी ले आए, अरे हमारे बच्चों कैसे हो, ये लो, साथ में बैठकर टीवी देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं। और वही पापा किसी दिन लौट करके आते हैं तो टीवी चल रही है, तो बस उठाए टीवी आप पटक दे, फूट जाए, एक अक्षर की पढ़ाई नहीं होनी है, पढ़ाई के नाम पर सुबह से लेकर शाम तक हम जो एकदम झेल जाते हैं, किस तरीके से 4 पैसा कमाते हैं इसकी परवाह न बच्चों को है न बच्चों की माँ को है, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। कभी ऐसा भी हुआ?
1: जी ऐसा होता है, पर सर ये माता पिता की बात, उनका गुस्सा तो चलिए सबके माता पिता गुस्सा करते हैं, ये सब हो गया, पर जो हम जैसे बच्चे हैं,
0: हाँ,
1: वो कहाँ जाएं?
0: अब वही हम आपको समझा रहे हैं, वही उसी पॉइंट पर आ रहे हैं।
1: जी।
0: जैसे आपके हमारे पिताजी हैं तो उनका इनपुट अच्छा रहा कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे हैं, और लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ पैसे भी मिल गए, तो ऐसी स्थिति में उनका इनपुट अच्छा हो गया, तो जब घर पर आएंगे तो उनका आउटपुट स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। और अगर कहीं उनका इनपुट खराब है, ऑफिस में देर से पहुँचे, देखिए भाई साहब आप रोज देर से आएंगे तब तो एब्सेंट लग जाएगा, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाइए, या आपने अभी अपना टारगेट नहीं पूरा किया, या ऐसा कुछ निगेटिव बात सुनने को मिल गई, तो सुबह सुबह ही जो इनपुट है वो निगेटिव हो गया, तो जो आउटपुट घर पर जाएगा वो निगेटिव ही जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट अच्छा हो तो अपना इनपुट बेहतर करें।
1: यानी आप कहना चाहते हैं कि इसके लिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए
0: एग्जैक्टली मतलब
1: अपने आसपास का वातावरण देखना चाहिए कैसा है।
0: हाँ मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कहीं पर लोग जो है वो परपंच की बात कर रहे हैं या इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो मैं जो है ऐसी स्थिति में वहाँ से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है या मैंने कहीं अगर ऐसी न्यूज़ देखी जहाँ पर हम बायस्ड हो रहे हैं तो टीवी बंद करके कोई दूसरा मैच लगा लिया, कुछ और करने लगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो बात मेरे कान तक पहुँचे, क्योंकि अगर कान तक जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि वो मेरा इनपुट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात आएगी। तो इसलिए कहता है ए मैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति जो है वो अपनी सोहबत से, अपनी संगत से जाना जाता है। तो आपके आसपास के लोग कैसे हैं इसका बहुत बड़ा असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है।
1: जी ये आपने तो चलिए हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी दी। और कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे उदास लोग रहते हैं, या कोई आपका दोस्त होगा, या कभी कभी परिवार में ही कोई रहता है,
0: हाँ।
1: तो आप उनकी मदद करना तो चाहते हैं पर उनके अंदर कोई हिचकिचाहट रहती है या कोई दिक्कत, तो वो आपसे वो परेशानी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उदासी मतलब कैसे आती है? कई जगह सर्च किया गया तो पता चला ऐसे आती है, कुछ लोग बहुत अकेले होते हैं, पर इस ज़माने में भी लोग अकेले कैसे हैं?
0: इस ज़माने में ही तो लोग अकेले हैं निधि जी, इसके पहले वाले ज़माने में लोगों के पास सेलफोन नहीं थे
1: जी,
0: मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, अपने सुख दुख बताते थे। अब आप देखिए आप शादियों में, त्यौहार में, पार्टीज़ में अगर आप जा रही हैं तो सब अपने अपने फ़ोन के साथ बिजी हैं, सब लोग अपनी सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पर एकाकीपन है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो इंसान इंसान से मिलता था, इसमें अगर आप देखिए तो फिर ऐसा लगता है जैसे सब अपने आप में मस्त हैं।
1: तो आपको क्या लगता है इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: इसको ख़त्म करने के लिए हमको ये चाहिए कि जब हम पार्टीज़ में जाएँ तो फ़ोन लेकर बिल्कुल ना जाएँ, अगर बहुत आवश्यक है तो कीपैड वाला फ़ोन लेकर हम लोग जाएँ।
1: सर पार्टी में कीपैड वाला?
0: हाँ सोचिए, मतलब अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन सोचिए जब आजकल के पहले फ़ोन नहीं था
1: जी
0: और लोग विवाह में जाते थे तो क्या विवाह नहीं होते थे?
1: जी सर बिल्कुल होता था।
0: बिल्कुल होते थे और बहुत शानदार ढंग से होते थे, लोग बातचीत करते थे, लेकिन अब तो लगता है ऐसे फ़ोन ही सब कुछ हो गया है। तो जब कभी भी आप मुझे जब कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके एक मेरा छोटा वाला की पैड फ़ोन है उसमें सिम लगाई कि बातचीत हो सके और चल देता हूँ।
1: मतलब आप ऐसी चीज़ें अभी भी फॉलो करते हैं?
0: अभी भी फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ोन साथ में रहेगा तो जो लोग होंगे साथ में उनसे बातचीत करने का आनंद नहीं आएगा, और वो लम्हे हम खो देंगे। फ़ोन तो हम कभी भी चला सकते हैं ना, जब आप बैठे अकेले बैठे हो फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन जब आपके अपने आस पास के चार लोग आपके साथ हों तो प्रयास ही कीजिए कि आपका फ़ोन ज़रा बंद रहे तो आप बात कर पाएंगे। हमारे पास इंस्टाग्राम पर 5K फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पर दोस्त होते हैं, व्हाट्सएप पर होते हैं, लेकिन वास्तव में जिनसे आप अपने दिल की बात कह पाएँ ऐसे दोस्त आपकी उंगलियों पर अगर आप गिनने लगे कि आप कितने लोगों से अपने मन की बात कह सकते हैं, तो शायद एक दो और तीसरा नाम आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा कौन है जिसके साथ हम सब बात कह सकते हैं।
1: जी ये आपने बहुत सही बात कही है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मन में, या हो सकता है कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि मन में बहुत सी बातें रहती हैं, फैमिली को बताना चाहें बता सकते हैं पर उतना बता नहीं पाते हैं, जो अंदर चल रही होती हैं उस चीज़ों को लेके मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ।
0: ऐसी स्थिति में म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मतलब अपना दिमाग जो है वो बीमारी से हटा लेना या निगेटिव चीज़। देखिए एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, रोना पैदा होते ही आ जाता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है।
1: जी ये आपने सही कहा,
0: पैदा होता है तो रोना उसे आ जाता है, मुस्कुराना उसको सीखना पड़ता है। आपसे करेंगे ढेर सारी बात, लेकिन फिलहाल अपने श्रोताओं को सुना दें प्यारा सा गीत और फिर मिले।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, हमारे साथ गौरव जी भी है आज जैसे आप रेडियो गौरव जी नमस्कार करते हैं, आपको कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ ये देख करके अच्छा लग रहा है। और क्या बात है भाई, चाय पी जा रही है, और देखिए भाई हमारे चाय पीने वाले, वाह 1980 के दशक की चाय पी जा रही है गौरव जी के द्वारा, अच्छा लगा। गुस्साने का कारण नहीं, कहीं ना कहीं मन होता है, कभी हमारे मन के जी सोचने के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तब भी गुस्सा लग जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात
1: लखनऊ,
0: लखनऊ से हमको सुनते हैं आशु मिश्रा जी, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको, शुभ संध्या। और अगर आप चार शराबी के साथ रहते हो तो पांचवा शराबी आप बनोगे, और अगर आप चार बिजनेसमैन के साथ रहते हो तो पांचवा बिजनेसमैन
1: आप बनोगे।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आइए अब आपको ले चलते हैं सर जी, घर में जितने सदस्य हैं उन सबके हाथ में एक एक मोबाइल है और एक दूसरे से बात करने का, देखिए देखिए मेरी बात को एकदम सही कहा, घर में ही लोग बात करने का, यानी पति पत्नी रात में लेटे, पत्नी ने अपना फ़ोन, पति अपना फ़ोन, चेक करा रहे यार रात हो गई है, जरा कुछ बात करो। मतलब मुझे लगता है कि फ़ोन ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। अभी आपको एक कविता सुनाऊंगा
1: जी, बिल्कुल, और इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने रिश्ते को बचाना है और ये दूरियां खत्म करनी है,
0: खत्म करनी है। लेकिन फिलहाल इस प्यारे से गीत के उस पार आपसे मिलते हैं, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, ये है घोड़ा शहर की।
1: जी सर, और धर्मेंद्र मोहन जी का भी मैसेज चेक कर लीजिए।
0: जी बिल्कुल चेक कर लेते हैं, वह आपने कहा तो आपका, आपकी आज्ञा का पालन बिल्कुल किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, हमारे लिसनर्स की शिकायत रहती है कि निधि जी चैट नहीं देखती हैं, तो आज मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ।
0: निधि जी चैट बहुत देखती हैं, जान लीजिए बहुत चैटी आती हैं ये
1: ऐसा नहीं है।
0: चलिए आपको ले चलते हैं गीत की ओर।

0: जी हाँ भाई, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं हम का मतलब मैं आपका दोस्त मनु और हमारी फेवरेट वाली को आज यानी आपकी वाली आज निधि जी। जी निधि जी, कैसी हैं आप और क्या प्रश्न चल रहा है आपके दिमाग में?
1: सर, मेरे दिमाग में प्रश्न तो बहुत सारे चल रहे हैं, पर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सामने वाला जो इंसान होता है, मम्मी पापा भाई बहन, मैं बिना वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पूरा दिन पछतावा रहता है। पर उस हिसाब से मुझे लगता है जो सामने से मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे लगता है कम बोलना चाहिए, पर मैं ज़्यादा बोल देती हूँ।
0: अच्छा, ये बात है।
1: उसके लिए मुझे पछतावा रहता है, पर मैं वो कह नहीं पाती हूँ कि मुझे पछतावा है, मैंने आपको बोल दिया।
0: अच्छा, एक मतलब आपने 10 सेकंड में किसी को कुछ ख़राब बोला या किसी ने कुछ ख़राब बोल दिया आपको, तो आपसे एक प्रश्न करता हूँ मैं
1: जी।
0: अगर आपके पास 86,400 रुपये हैं, कितने?
1: 86,400,
0: और अगर उसमें से 10 रुपये आपके गिर जाएं
1: जी,
0: तो आपको इस बात की खुशी होगी कि 86,390 हैं, या इस बात का अफसोस होगा कि 10 रुपया गिर गया?
1: जी, इस बात की खुशी होगी कि 86,390 हैं।
0: जी
1: जी, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरे पास 86,390 हैं।
0: अच्छा, मतलब अगर आप कहें, रोती रहें, सोचती रहें कि 10 रुपये गिर गया, तो लोग आपको क्या कहेंगे?
1: कहेंगे बस 10 ही रुपये तो गिरे हैं, इसमें क्या इतना सोच रही हो।
0: अच्छा, आप अपने आप को क्या कहेंगे अगर आप रोएं तो 10 रुपये के लिए, लोग आपको क्या कहेंगे?
1: हो सकता है वो मैंने बहुत मेहनत से कमाए हूँ।
0: नहीं, मतलब अगर आप 10 रुपये के लिए रो रही हैं
1: जी,
0: 86,390 बचा है
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में अगर आप 10 रुपये के लिए परेशान हैं तो लोग आपको क्या कहेंगे कि आप कैसी हैं? कहेंगे नहीं, हल्का सा दिमाग नहीं है क्या?
1: जी सर, कह सकते हैं, पर सर इसमें पैसे क्यों, और उसमें मतलब आपको कभी नहीं लगता कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने आप मैथ का सवाल दिए थे, उसने नहीं किया, हो सकता है कल नहीं समझ में आया हो, उसे टाइम नहीं, तो क्या आप उसे एकदम से डांट देंगे और डांटने के बाद क्या आपको पछतावा नहीं होगा?
0: नहीं, अब देखिए, मैंने 86,400 क्यों लिए, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे?
1: 24।
0: एक घंटे में कितने मिनट?
1: 60।
0: एक मिनट में कितने सेकंड?
1: सर ये तो मुझे जोड़ना पड़ेगा।
0: एक मिनट में 60 सेकंड
1: जी।
0: तो उस प्रकार से एक दिन में जो सेकंड हुए वो कितने हुए जरा बताइए। एक दिन में
1: जी
0: सेकंड की संख्या कितनी है?
1: 86,400।
0: क्या बात है, गणित आपकी अच्छी है। 86,400।
1: सर गणित मेरी अच्छी नहीं है, हमारे पिताजी हैं तो थोड़ा वो मुझे बहुत डांटते रहते हैं,
0: इसीलिए अच्छी कर दी है।
1: नहीं, अच्छी नहीं कर दी, ये सारी चीज़ें
0: मतलब आपने तुरंत बता दिया कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर पाता।
1: सर मैंने कल न्यूज़पेपर में देखा था ये।
0: अच्छा, तो सोचिए 86,400 सेकंड है हमारे पास
1: जी,
0: और अगर 10 सेकंड के लिए हम किसी को कुछ बुरा भला बोल दें
1: जी,
0: या 10 सेकंड के लिए कोई हमको बुरा भला कह दे
1: जी,
0: तो उसके बारे में सोचकर क्या 86,390 सेकंड खराब करना आपको लगता है कि ये बुद्धिमानी है?
1: जी बिल्कुल, ये बुद्धिमानी नहीं है।
0: नहीं है, ये मूर्खता है
1: जी।
0: तो अगर 10 सेकंड में कोई बातचीत हो गई, चलो अच्छा हो गया, कुछ हो गया, तो उसके पश्चात थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अच्छी जिंदगी जीने का दो ही तरीका है, एक आपका अंदाज और दूसरा नज़रअंदाज, तो थोड़ा सा इग्नोर करना भी आना चाहिए मुझको लगता है
1: जी। तो आप कहना चाह रहे हैं हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, वो हमारे आसपास हो रहा हो या हम ही से हो रहा हो?
0: या हम ही से हो रहा। देखिए, जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो छोटे अक्षर उसको नहीं दिखाई पड़ने लगते हैं
1: जी,
0: देखा ना आपने
1: जी,
0: छोटे
1: बिल्कुल
0: अक्षर नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ज़िंदगी हमको बताती है कि जब आप बड़े होने लगे तो छोटी चीज़ों को महत्व देना कम कर दीजिए, क्योंकि अगर छोटी मोटी गलती किसी से हो गई और आप उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो फिर आप तनाव में रहेंगे। जाने दो, अरे छड्डो जी, हो गया
1: जी, बिल्कुल
0: ऐसे होता नहीं है।
1: जी आपने पंजाबी भी सीख रखी है।
0: नहीं नहीं सीख नहीं, हमने ऐसे सुना है ऐसे कि छोड़ यार
1: जाने दो
0: जाने है, क्या बात है। तो अगर ऐसी लाइफ में 10 सेकंड की कोई बात आ भी गई तो अच्छा, मैंने तो एक जो है वो मूल मंत्र अपना रखा है
1: जी, मुझे भी बता दीजिए। हाँ,
0: जब मुझे कोई डांटता है या बुरा भला कहता है तो मैं मन में बोलता हूँ पागल है साला।
1: सर सेम मुझे एक लोगों ने यही मुझे बताया था, मतलब हमारे घर आते थे एक भैया थे। हाँ? तो हम लोग बातें करते थे तो वो मुझसे कहते थे कि कोई कुछ भी बोले तुम समझा करो पागल है। अब मैंने अपनी बहन को भी यही बताया है कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम समझो वो पागल है,
0: बस मामला ख़त्म। मतलब दुनिया की सारी जो है वो लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हम सामने वाले को बुद्धिमान समझ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: वो बुद्धिमान होता तो इस प्रकार की बात ही मत न करता। हमारे साथ आशु मिश्रा जी हैं, भाई लिखती हैं, घमंड है मुझे मेरी माँ की परवरिश पर क्योंकि उन्होंने मुझे एक सूरत संवारने से ज़्यादा घर के हालात संवारने का हुनर सिखाया है। क्या बात है
1: जी, बहुत अच्छी बात कही,
0: बहुत अच्छी बात कही आपने भाई। और आशु मिश्रा
1: जी को कोई भी संवार लेता है।
0: हाँ भाई, वेरी नाइस सॉन्ग भाई, गीतों की प्रशंसा हो गई भाई। हम गीत सोचते हैं कि भाई जब हम आए हैं तो गीत ऐसे बजे जो थोड़ा सा दिल को छुए।
1: जी बिल्कुल,
0: वैसे ही गीत यूँ ही तुम मुझसे बात करती हो पसंद आया आपको। और इसके पश्चात सचिन राज चौहान जी हैं, मैं एक बार स्टूडियो आया था मैम आपके अपने स्कूल की तरफ से, आप जरा हमको बताइए सचिन राज जी कि आपका विद्यालय कौन सा है। गौरव जी लिखते हैं, रिश्ते जो बनाया जाता है, जो रिश्ते अक्सर लड़के और लड़कियों के बीच होते हैं चाहे वो दोस्ती के हों या प्यार के, मगर जो लड़कों के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है ना, उसमें अगर सालों के बाद भी कोई मिलता है तो बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से उन्होंने पहले से बात छोड़ी होती है।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ऐसी बात अब लड़का या लड़की की नहीं, आप सब में ऐसी ही बात होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की।
0: भाई गौरव जी, भाई नारी सशक्तिकरण चल रहा है, वहाँ पर बोलेंगे तो जननी निधि जी यहाँ से छोड़ने वाली नहीं है।
1: जी नहीं बिल्कुल गौरव जी, ऐसा नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जितना लड़कियों के साथ हूँ उतना ही लड़कों के साथ।
0: वक्त घसीट कर उसी चौराहे पर ले आएगा उन्हें जहाँ उन्हें कभी किसी के मान सम्मान की नीलामी की थी, क्योंकि वक्त की अदालत में न कोई रसूख चलता है न कोई षड्यंत्र, वहाँ सिर्फ कर्मों का फैसला होता है। क्या बात लिखी है आशु से।
1: जी बिल्कुल,
0: रिश्तों में बदलता हुआ व्यवहार सबको चुभता है पर बदलने की वजह कोई नहीं पूछता। कितनी अच्छी बात कह दी आपने,
1: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम किस वजह से बदल रही है कोई जानना ही नहीं चाहता है।
0: हाँ, जिसके पश्चात बैट्स कुमार जी हैं, बात कोई भी हो कैसा भी हो रिश्ता भी रिश्ता है, अंत में जाकर रिश्ता ही पिसता है। बैट्स कुमार जी भाई, शुभ संध्या आरजे मनु महान, अरे प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्राची सिंह जी हैं, आज निधि जी यू आर डूइंग ग्रेट इन सच फ्यू डेज, आई लव योर काम वॉइस।
1: थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है जी। हाँ, ये प्राची जी को आप जानते हैं?
1: जी मेरी बहन है।
0: ओहो, छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तौला बलरामपुर। जी हाँ सचिन जी, बिल्कुल कहा, वहाँ के बच्चे आए थे और इत्तेफाक से शायद मैं भी आप लोगों से मिला हूँ।
1: जी हिंदी दिवस का कोई कार्यक्रम था हमारे कॉलेज में।
0: नहीं, ये छत्रपति ये पॉलिटेक्निक से आए थे और हम लोग का FM विजिट करने आए थे। अच्छा। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उस समय मैं भी आदमपुर में CS कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा था बच्चों को।
1: जी अभी फिलहाल में कुछ और भी बच्चे आए थे, मुझे लगा वही हैं।
0: हाँ, तो अब हमने बात की थी कि फोन ने बहुत कुछ
1: छीना हमसे।
0: अब आपको फोन पर एक कविता सुना।
1: जी सुना दीजिए।
0: और प्रयत्न कीजिएगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोन से थोड़ा सा दूर रहूँ।
1: सर आप कैसे रह लेते हैं?
0: काम ज्यादा होता है, पढ़ाना रहता है। हमने मस्त रहने का एक तरीका सीखा निधि जी।
1: जी सर।
0: और वो तरीका सीखा व्यस्त रहना।
1: ये आपने बहुत सही बात कही है और ये तरीका मैंने भी सीखा है, खुद को इतना व्यस्त रखना चाहिए।
0: हाँ, फालतू के प्रपंच आपके दिमाग में तभी आते हैं जब आप खाली होते हैं।
1: जी, और ये मैंने सीखा है मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। मुझे लगता है मैं जितना फ्री रहती हूँ उतनी ही चीज़ें मुझे, जो अभी हमने बात की कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खाली रहती हूँ इसलिए हो जाती हूँ। अगर आपके पास काम है तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है।
0: रहेगा, मुझे सुख और दुख अनुभव करने का समय ही नहीं मिलता।
1: जी सर।
0: हाँ, अब लेकिन फ़ोन को से बचना है।
1: सर मुझे इसी बात पे एक गाना याद आ गया, मैं सुख और दुख को एक रास्ते पे लाता चला गया।
0: नहीं, वो पंक्ति ये है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया।
1: वाओ सर, आपको हर बात पता है, आपको कैसे पता मुझे यही गाना पता था?
0: नहीं, आपने जो बात बोली उसकी लाइन ये है, गम

0: चला गया। देवानंद जी के ऊपर ये फिल्म, ये गीत फिल्माया गया है, ब्लैक एंड वाइट मूवी है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को आवाज़ दी है।
1: जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने ये गाना बहुत अच्छा सुनाया है।
0: या तो मतलब गम और खुशी इन दोनों में फर्क न महसूस हो, जहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही
1: जी। इसी बात पे आप अपनी कविता सुना।
0: हाँ हाँ, मोबाइल पर कविता। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साधु हो आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पर नज़र रहती थी, समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था, और जब वो खेल कर आता था पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था तो उसकी माँ न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, दो फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी।
1: वाह सर, क्या बात कही आपने,
0: महसूस किया है आपने?
1: जी बिल्कुल किया है।
0: बच्चे आते हैं और उसे फूंक मार दिया, भाई देखो बेटा आराम हो गया कि नहीं
1: जी।
0: लेकिन अब वो माँ परेशान है, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है, उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है। न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है, इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी माँ ने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि मोबाइल ने उसे जवान कर दिया है।
1: वाह क्या बात कही आपने सर, और ये आजकल सच में हो रहा है। बच्चे जो बड़े हैं उनका तो चलो कह दो बड़े हैं, उनको काम लगता है, जो छोटे हैं वो बिना फोन के उठते ही नहीं। हाँ, हैं।
0: ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है
1: जी।
0: ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: लेकिन इसके कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है।
1: ये बिल्कुल सही बात कही सर आपने।
0: मतलब कई सारे बच्चों को तो मैं ऐसे जानता हूँ जिनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर जी मोबाइल ना दो तो लड़का मेरा खाना नहीं खाता है
1: जी।
0: हाँ, इसने हमारा सुकून छीना है। अब देखिए क्या क्या छीना है मोबाइल ने। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ घर में बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना है।
1: वाह।
0: इसने छीना है नई किताबों की सुगंध को। किताब बच्चे पढ़ते थे, नई नई किताब, अब सब पीडीएफ पर है, यूट्यूब पर है
1: और वो पढ़ते भी नहीं है
0: जी। कहता है कि इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीना है बेटी के शादी पर निमंत्रण पत्र पर लगी हल्दी की गंध को
1: जी।
0: अब व्हाट्सएप का जमाना है, लोग व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है।
1: यस सर।
0: आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, घर में एक दिन बैठ करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीने का आधार यानी उत्सुकता छीनी है। दुनिया इस 4 इंच की दुनिया तूने अजीब सा परोसा है। अब पंक्ति आती है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है।
1: यस सर बिल्कुल।
0: आज हमें गुरु से ज्यादा गुजहाम कहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद त्यों बताए, वहां पर गूगल गुरु से बड़ा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है, ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है।
1: ये आपने सही कहा,
0: नेट को ही तो जाल कहते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो नेट है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ तो इससे जूझ रहे हैं, कुछ जुड़ करके थक चुके हैं, माने या ना माने हम इसमें थोड़ा थोड़ा फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं जंजाल है, समस्या है, इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अभी आपने कहा था कि कैसे दूर रह लेते हैं, ये साधना है। अगर आप चाहते हैं खुद को बचाना तो इस 4 इंच की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है, अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है। एक दिन अपने घर के कोने में बैठकर ये जरूर सोचिएगा कि मोबाइल के संसार ने आपका क्या क्या छीना है। बस इतना सा हाथ जोड़कर बड़े लोगों से निवेदन है, आप सभी से भी बस इतना सा हाथ जोड़कर बड़े लोगों से निवेदन है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए।
1: वाह क्या बात कही सर आपने। और हमारे लिसनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फ़ोन यूज कर रहे हैं वो आपको कितना जानता है और आप उसे कितना जानते हैं, और जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको एक लिमिट तक इस्तेमाल करें, और इसमें हर ऐप पे लिमिट लगा के रखें, 15, 20, 30 जितने भी देर आपको काम लगे, और आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इससे आप और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों ठीक ही रहेंगे।
0: हाँ मतलब मुझे लगता है ना निधि जी, पहले बच्चे पीटे जाते थे
1: जी,
0: और
1: सर आप बार बार पीटे जाते हैं, हाँ, ही आ मतलब जाते हैं।
0: आपने सुना है कभी कि पहले जो टीचर्स होते थे वो बच्चों के कान पकड़ते थे
1: जी,
0: ऐसे जानते क्या होता है, उससे इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। उसका एक पर्टिकुलर प्रक्रिया थी कि कान पकड़ के क्यों खींचा जाता था, तो मतलब उससे जो इंसान का जो ब्रेन है वो फास्टर वर्क करता है, ये साइकोलॉजी कहती है
1: जी।
0: तो पहले बच्चों फिर हाथ पर डंडे पड़ते थे, अब तो नियम आ चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि आप 30 सेकंड से ऊपर अगर आपने किसी बच्चे को घूस दिया तो ये क्राइम है
1: जी बिल्कुल।
0: अब आप सोचिए जो बच्चा शुरुआत से बहुत ही पैम्पर्ड हो गया, शुरुआत से बहुत ही दुलदुआ हो गया
1: जी,
0: वो जिंदगी के झंझावातों को कैसे झेलेगा। आज के 15, 20, 25 साल पहले भी IAS होते थे, PCS होते थे, लेकिन इतने सुसाइड नहीं होते थे
1: जी। सर यही मैं आपसे बार बार पूछना चाह रही हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहे हैं, तो उसको कैसे समझे। एक एज तक लगता है जैसे बच्चा बढ़ रहा है, तो आपके घर में भी बच्चे होंगे तो 12-13 ऐसे, तो आपको लगता होगा कि ठीक है एज की वजह से बच्चे ऐसे होते हैं, पर एज के बाद वो बिल्कुल वैसे ही रह जाते हैं।
0: उनको जैसे अभाव दीजिए थोड़ा सा, जो चीज़ हर वो चीज़ मांगे वो पूरी मत कीजिए
1: जी,
0: उनको थोड़ा सा गरीबी सिखाइए। वो अगर चॉकलेट मांग रहे हैं तो कहिए कि बेटा आज पैसे नहीं है, कल ला कर देंगे। उनको पैसे का महत्व समझाइए
1: जी।
0: हम लोग को क्या होता है, पेंसिल मांगा तुरंत ला कर दे दिया, अभी देखो उतनी पेंसिल है, थोड़ा सा काम चलाओ कल ला कर देंगे। तो अगर आपने बच्चों को शुरुआत से एहसास कराया कि पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से, पहले हम इंटर में पढ़ते थे, मैथ्स थी तो मैथ्स के 6 किताबें होती थी
1: जी सर।
0: 6 किताबों को पढ़ने के बाद बच्चे इंटर में जब मैथ लेते थे तो उनके पास योग्यता होती थी। इतनी पतली पतली आजकल 2 किताबें हैं जिनको पढ़कर बच्चा इंटर मैथमेटिक्स से पास हो जाता है। 18% 20% रिजल्ट आता था लेकिन आत्महत्याएँ नहीं होती थी। अब 98% रिजल्ट आता है और आत्महत्याएँ हो रही हैं उसका। हाँ उसका बेसिक कारण ये है, बच्चे शुरुआत से उनको तपस्या उनके साथ की जाए, मतलब आसानी से चीज़ें अगर उपलब्ध हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि बच्चा पैम्पर्ड हो जाएगा। और अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया, दुलदुआ बनाया, तो वो जिंदगी के झंझावातों से नहीं लड़ पाएगा। आप अपने बच्चे को एसी में सुला रहे हो, एसी में रख रहे हो, एसी वाले स्कूल में भेज रहे हैं, अब वो बच्चे आधा घंटा अगर धूप में खड़ा हो जाएगा तो उसको लगता है अभी बेहोशी आ जाएगी। तो थोड़ा सा जुझारूपन बच्चों को अंदर, हाँ उनको मिट्टी में खेलने दीजिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सा गिरे, हल्की फुल्की चोट लगे, जिंदगी के झंझावातों को आज जब वो सहेंगे तो कल उनका सामना करेंगे।
1: जी सर, और मैंने जो देखा है अभी कि अगर हम एक 60 साल के औरत को देखें या जो भी पुरुष को भी देखें और इस एज के 24 या 25 साल के बच्चे को, तो जो उनके अंदर ये होता, ये नहीं कि उनकी एज है, एक्सपीरियंस है, पर जो उनका माइंड सेट होता है, जो उनके अंदर हर बात पे पैनिक करने वाली आदत नहीं होती है, और हम जैसे बच्चे जो अभी नई नई एज है, अभी पूरी दुनिया जी सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाते हैं।
0: हाँ।
1: ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने शुरुआत से बचपन नहीं देखा, मतलब बचपन में अभाव नहीं देखा, संघर्ष नहीं देखा, उसको देखना चाहिए मुझको लगता है। और बच्चे को शुरुआत से थोड़ा सा परिश्रमी बनाइए, उसे हर चीज़ें आसानी के साथ ना उपलब्ध हों, बच्चा सीखे कि हमारे पिता कितना श्रम करते हैं, तो शायद वो आपकी मेहनत की कद्र करेगा
1: और इससे वो भी स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जितने भी आप देखिए, जो जिन्होंने सोशल मीडिया बनाई है, उन्होंने अपने बच्चों को इससे दूर रखा है
1: जी।
0: चाहे वो मार्क जुकरबर्ग से लेकर के, मैंने भी देख रहा था, एक बहुत पर सर्वे आया, उन्होंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं। हमारे साथ भाई अंबुज पांडे जी हैं और अमरेंद्र लिखते हैं, आर्य निधि महान, क्या बात है,
1: धन्यवाद अमरेंद्र।
0: हाँ, और हमारे साथ गोंडा की थोड़ी ही दूर पर बहराइच पड़ता है, वहाँ से प्रीति शुक्ला जी सुनती हैं। चरण स्पर्श बहन जी, आपको शुभ संध्या, आपको भी। और नहीं नहीं नहीं यार, पुरानी पुरानी आर्य हैं, हमने बनाया है तो हमसे श्रेष्ठ न हो सकता, मतलब इसमें हजारों लाखों अनगिनत आविष्कार छिपे हैं इस दिमाग में, प्लीज़ एक उपकरण का गुलाम तो न बनाओ अपने आप को। बिल्कुल इस कुमार जी, आपने सही कहा। और संजय जी हैं पटना से, वाह वाह क्या खूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अनिल शास्त्री जी हैं चरण स्पर्श दादा गोरखपुर से, जी आपको शुभ संध्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों के मन में ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्या शब्दों में पिरोया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आज से रेडियो गणेशली बंद? जी नहीं, यही तो मैंने कहा, आपने मोबाइल को लगा दिया, ऐप पर लगा दिया और आप सुन रहे हैं, ये अच्छा है, आप लगातार उसी में घुसे जा रहे हैं, ये खराब है। रेडियो सुनना अच्छी बात है, रेडियो तो हम तब भी सुनते थे जब हमारे बाबा जी का जमाना था
1: जी, और आप इसे सुन रहे हैं,
0: सुन रहे हैं, देख थोड़े रहे हैं कि निधि जी और मनु कहाँ हैं,
1: और ये आपको नहीं सुन रहा है, पहली बात ये ध्यान दीजिए, और जो आप ऐप इस्तेमाल करते हैं वो आपको सुन रहा होता है।
0: हाँ भाई, तो प्राची जी हमारे साथ हैं, मोबाइल हमारे हाथ में रहे तो उपयोगी है, लेकिन जब मोबाइल हमारे समय और व्यवहार को नियंत्रण करने लगे तो भाई उसका दुरुपयोग बन जाता है। जी, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या रिश्तों में किसी तीसरे का दखल, हर ग्रहण रिश्तों की रोशनी को धीरे धीरे कम कर देता है।
1: जी बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही,
0: बहुत अच्छी बात बोली जी। और अब आप चल कुल भाई, भाई बात बहुत ढेर सारी हो गई, चलिए कुछ दिले से, अवसर जी आपके अल्फाज प्रेरणादायक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र मोहन जी, आप लोगों के ही बीच में रहकर थोड़ा बहुत सीख पाता हूँ मैं। और अब चलते हैं भाई एक प्यारे से गीत की तरफ, क्यों
1: जी, इसके बाद हम बताते हैं आपके रिश्तों में ग्रहण जो लगे उससे आप कैसे बच सकते हैं,
0: कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, तो सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की
1: धड़कन
0: जी।

0: जी हाँ, वो घड़ी आ गई आ गई। कौन सी घड़ी? जिस घड़ी पर गीत तो बजेंगे, लेकिन वो बजेंगे जो
1: आप चाहेंगे।
0: जी आप चाहेंगे। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में काट कर, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मचली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब आप सभी के फ़ोन की प्रतीक्षा होगी और अब गीत वो बजेगा भाई जो गीत चाहेंगे आप। और हमारे साथ के गुप्ता जी भाई जुड़े हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। के गुप्ता जी कैसे हैं आप? अरविंद जी हमारे साथ हैं भाई, शुभ संध्या सभी को जी। और मस्त गीत है, क्या बात है, जो हो क्या बात है भाई। संजय पटना जी और हमारे साथ हैं, और सर जी बहुत खूब सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज सिंह जी भी उपस्थित हैं, और गुरु जी एंड मैम जी शुभ संध्या, आप दोनों कैसे हैं? जी हम दोनों अच्छे हैं, आप बताइए। कृष्ण कुमार जी कैसे हैं आप? और उषा कश्यप जी भी हमारे साथ हैं। सोनिया तिवारी जी हेलो, रिवन जी हाँ हेलो आपको भी। गुनगुन भी है हमारे साथ, नीरज सिंह भी हैं। तो भाई अजीब सी रूप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में काट, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मचली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई से तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आपके फरमाइशों की तरफ। इस प्यारे से गीत के बाद आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ।

जी हाँ जी हाँ, हम आ चुके हैं अपनी फरमाइश की तरफ। तो पहली फरमाइश है हमारी उषा कश्यप जी की तरफ से, सब कुछ सीखा मैंने। जी हाँ उषा कश्यप जी, आपने सब कुछ सीख लिया होगा और हम अपने दर्शकों को ये गाना सुना देते हैं, श्रोतागण को।

जी हाँ, इसी फरमाइश की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला गाना है हमारा राजू सलमानी जी का, ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाज़ा तो खोलो। जी हाँ, इस गाने को हम सुनते हैं और गुनगुनाते हैं और चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ इसके बाद।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और हमारा कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला। तो हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है गुनगुन जी की तरफ से, और उनका गाना है आज दिन चढ़िया बे। जी हाँ, दिन तो ढल चुका है पर हम दिन को ढलने नहीं देंगे, और चलते हैं इस गाने की तरफ और सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मिलते हैं आपको इस गाने के बाद।

जी हाँ, हम आ चुके हैं फिर से। और जी नागेश्वर धाकड़ जी, मैं आपकी चैट जरूर पढ़ती हूँ। और हम सुनाते हैं आपको अगला गाना, जो है हमारी निधि कश्यप जी की तरफ से, आवाज़ हमारी इस वादियों में रहेगी। और मैं आप सभी के चैट पढ़ती हूँ, और हमारा शो चल रहा है अभी फरमाइश, तो अभी आप अपने गाने भेजिए, आपके चैट बाद में देखते हैं।

जी हाँ, हमारा कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसन मसाला, और आप सुन रहे हैं फरमाइश। और अगली फरमाइश है हमारी निब्बर भाई की तरफ से, और उनका गाना है मनु भाई मोटर चले पम पम पम। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं और थोड़ा गुनगुनाते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: अरे ओए तेरा नाम क्या?
1: मन्नू
0: क्या?
1: मन्नू भाई।
0: मन्नू भाई
2: मन्नू
0: भाई
2: मन्नू भाई।
3: मन्नू भाई।

0: झिझक रहा
1: झूठ मत बोल आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: अल्लाह मचाएंगे, हुल्ला मचाएंगे।
1: जी हाँ, अब आपने सुन लिया है गाना मनु जी पम पम पम। इसके बाद हम सुनेंगे निशा जी की फरमाइश, जाने मन चुपके चुपके तुमने ऐसी बात कही। अब इनसे किसने चुपके चुपके बात कही ये हम नहीं जानते हैं, पर हम इनका गाना सभी को सुनाएंगे। तो चलिए हम इस गाने को सुनते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं।

जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ से, जो है सुरेश कुमार उर्फ दर्द कुमार जी की। अब इनके दर्द क्या हैं ये हम नहीं जानते हैं, पर हम सुनेंगे इनका गाना जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए। वाह, ये ही बहुत सुंदर गीत है, और हम चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने फरमाइश की तरफ। और गुलफ्सा सिद्दीकी जी, मेरा नाम निधि है और आप सुन रहे हैं नारी ज्ञान स्थली का रेडियो। सर, नारी ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। तो हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है धर्मेंद्र मोहन जी की। चार दिनों की प्रीत जगन में, चार दिनों के नाते हैं, कभी कोई आते हैं और कभी कोई चले जाते हैं, और हम ऐसे ही गाने सुनते रह जाते हैं। तो चलिए धर्मेंद्र मोहन जी का गाना सुनते हैं और थोड़ा गाते हैं और वापस फिर आते हैं।
1: हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
2: कई तरीके की LED लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट।

जी हाँ, अब हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है अनुष्का जी की तरफ से, और उनका गाना है तेरा फितूर। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं और थोड़ा गाते हैं।

जी हाँ, जिस तरह ये दुनिया बदल रही है और लोग बदल रहे हैं, वैसे ही हमारे पास एक फरमाइश भी आई है जो है मुमताज अंसारी जी की तरफ से। बदल गई ये दुनिया, बदल गए ये लोग। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं और देखते हैं दुनिया कितनी बदलती है।

0: जी हाँ, हम आ जी हाँ हम आ चुके हैं अपनी फरमाइश की तरफ। जी अरविंद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और हम चलते हैं इन रासनी जी की तरफ, जिनका गाना है रोते रोते हंसना सीखो। जी हाँ, हमें रोते रोते हंसना तो सीख लेना चाहिए, पर हमें गाते गाते हंसना यहाँ सीखना है, वो भी इस गाने के साथ। तो चलिए हम सुनते हैं अपनी अगली फरमाइश रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM की तरफ से।
1: हाँ,

जी हाँ, हमारे साथ एक और फरमाइश जुड़ चुकी है जो है के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स की तरफ से। जी हाँ, तो हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ से जो है के गुप्ता जी का तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। प्यार मैंने दिल दे दिया, प्यार में मैंने दिल दे दिया। जी हाँ, प्यार में इन्होंने दिल दे दिया है। अब इनका गाना भी हम सुन लेते हैं।

और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली फरमाइश की तरफ से, जो है इश्क कुमार जी की, बंधन दिलों का बंधन। चलिए इस गाने को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरते और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
6: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
7: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
6: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
8: तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
6: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
9: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फिर होता है। प्रारंभ और चलते हैं बहराइच से। प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते।

जी हाँ बिल्कुल, दुनिया बदलेगी लेकिन हम नहीं बदलेंगे। अब चलते हैं भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आशु मिश्रा जी की फरमाइश है, मराठम का बदल गई चाल मित्रवत।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई गोरखपुर की तरफ, और वहाँ पर हमारे अनिल दादा जी की फरमाइश है, बहुत ही प्यारा गीत भेजा है, एक चतुर नार बड़ी होशियार, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये श्री अनिल बनर्जी जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, बहुत अच्छा सा दृश्य है ये, हम भी पागल तुम भी पागल चलते हैं श्रीमती शशि सिंह जी की तरफ, जिनके हाथों में जादू है। जी हाँ, और गीत है ये मेरा दीवानापन है।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा ही नहीं बल्कि हमारे और आपके दिलों की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, और अब मेरे साथ भाई क्या बात है। और हम जब बात करते हैं तो बात करते हैं न्यू केट की, दानिश्वरों की, उन कलमकारों की जिनकी वजह से शायद गजलें बच पाती हैं, नगमे सुने जाते हैं, साहित्य अपनी उड़ान पर आता है। और वो होते हैं हमारे कलमकार। आज जिस कलमकार को लेकर आपके बीच आए हैं वो एक दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो दक्षिण भारतीय हैं उनकी हिंदी और उर्दू पर पकड़ बहुत शानदार है। नाम है राजेश रेड्डी। उन्होंने लिखा कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, न बस में जिंदगी उसके न काबू मौत पर उसका, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है पर रिहा होने से डरता है। हम चाहते हैं, कभी कभी मन में आता है कि हे भगवान अब यहाँ दिल नहीं लगता, बुला लो, कहीं अगर थोड़ा सा भी एहसास होता है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं, शायद मृत्यु जीवन का वह सच है जो हकीकत के मुंह पर तमाचा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। आइए जी, हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, क्षण स्पर्श करते हैं आपको। और कैसी हैं आप भाभी माँ? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और अब चलिए आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी गजल की तरफ। सुनते रहिए और रेडियो गणेश के लिए 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, कुछ श्रोता हमारे ऐसे थे जिन्होंने पंक्ति में लिख करके गाना भेजा और वो लिंक नहीं थी तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साहब उनको समझ नहीं पाए तो उनके गीत रह गए, लेकिन चलिए अगले रविवार को आपका गीत ज़रूर बजाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। फिलहाल ये

माँ ने तो आज भी बेटे के लिए दुआ की, बाप ने भी उसकी हर गलती माफ कर दी। दिल तो चाहता था कि बस एक बार वो कह दे, आ जाओ घर, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मगर उस दरवाजे पर अब दस्तक की इजाजत नहीं थी, घर अपना था मगर रहने की इजाजत नहीं।

बड़ी खूबसूरत सी गजल है। और आज का जो दौर है कि हर बात हर फीलिंग आप किसी को अगर बताते हैं तो उसका फायदा लोग बहुत जल्दी उठा ले रहे हैं, इसलिए आज के दौर में बड़ा सोच समझ कर कोई भी कदम उठाना पड़ रहा है, कोई बात भी किसी को बतानी पड़ रही है। तो ये खूबसूरत गजल उस फीलिंग के लिए, उस बात के लिए आप सभी की नजर कर रही है।

इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी तो बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, जी आपको चेहरे से भी तो बीमार होना चाहिए। कब तक भटकते फिरोगे मुसाफिरों की तरह, कब तक भटकते फिरोगे मुसाफिरों की तरह, कि टूटा फूटा ही सही मगर अपना घर।

जी हाँ, बहुत ही कम समय में डिंपल भूमि जी ने अपना नाम गजल की दुनिया में बाखूबी पैदा किया। बात दिल की छुपाना नहीं चाहिए, बहुत ही प्यारी सी गजल और उतनी ही प्यारी आवाज। और अब चलते हैं साहब अपने राजेश रेड्डी साहब के पास, जहाँ से हमने बात को शुरू किया था। मेरे साथ विजय रावत जी हैं। हेलो सर, आपको भी हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। राजेश रेड्डी साहब लिखते हैं कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं छाव है कहीं धूप है, कहीं छाव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कई चेहरे इसमें छुपे हुए, एक अजीब सी ये नकाब है, कहीं खो दिया कहीं पा लिया, कहीं खो दिया कहीं पा लिया, कहीं रो लिया कहीं गा लिया, कहीं खो दिया कहीं पा लिया, कहीं रो लिया कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबा बेहिसाब है, ये जो जिंदगी की किताब है, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां, कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तृष्णगी, तृष्णगी मतलब प्यास, कहीं तृष्णगी बेहिसाब है। वास्तव में साहब ने जीवन को समझना, जीवन को पढ़ना और जीवन को परिभाषित कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। हम कुछ निश्चित नहीं कर सकते कि सच्चाई क्या है, दुख है सुख है, अपने हैं पराए हैं। राजेश जी साहब की ये गजल दिल को छूती हुई जाती है। और आपको बताऊं कि राजेश जी साहब की इस गजल को जगजीत सिंह साहब ने अपनी आवाज दी है, ये जो जिंदगी की किताब है। आइए, जब उन्होंने इस गजल को लिखा है और जगजीत सिंह साहब यानी मखमली आवाज के मालिक हैं, तो क्यों ना इस गजल को हमने आपको सुनाया। अब इसे संगीत के साथ सुनते हैं, जगजीत सिंह की प्यारी सी आवाज में। जी हाँ, आइए इसी गजल को सुनते हैं जगजीत सिंह की मखमली आवाज में, ये जो जिंदगी की किताब है, जिसे लिखा है राजेश रेड्डी ने।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज एक नगमा एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

गजल की दुनिया का शायद सबसे मशहूर नाम, आप सभी लोग उनके नाम से परिचित होंगे, मीर तकी मीर। वहां से लेकर यहां तक का सफर तय किया और फिल्म का नाम बाजार, आवाज आप पहचान गए होंगे लता मंगेशकर की, मीर तकी मीर ने यह गजल लिखी थी। खय्याम साहब का संगीत था और आवाज थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमको लगता है बहुत दिन के बाद सुनी होगी, और अगर सुनी होगी तो कहीं ना कहीं पक्की बात है कि दिल को छू गई होगी। और हेमेंद्र मोहन जी सब तरह ने लिख दिया है, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मनुष्य जी गुड इवनिंग, आपको भी राम राम। ना दौलत ना ताजमहल छोड़ जाएंगे, बस मनु जी हम लोगों की याद में गज़ल छोड़ जाएंगे और ईमान से मेरे प्यारे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र मोहन जी। और अब आइए चलते हैं राजेश रेड्डी साहब की तरफ। उन्होंने लिखा कि जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, खून लिया कुछ बदले में दिया नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। आप इन हाथों की चाहें तो तलाशी ले लें, आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने, जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा अब के किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, पीला ही पीला है। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, या तो पूरा लेंगे या तो हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब बात छोटे बच्चों की आती है तो हमारी आंखों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा नगमा गूंजता है रफ़ी साहब का। छोटे छोटे बच्चे हैं और पिता संदेश दे रहा है अपने बच्चों को कुछ इस अंदाज में। आइए भाई, हमने बहन को सुन लिया है तो भाई को भी सुन लेते हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की प्यारी सी आवाज़ आपको सुनाई। अब ये अनुचित होगा कि हम रफ़ी साहब को न लाएं, चलिए लाते हैं रफ़ी साहब को इस नगमे के माध्यम से।

जी हाँ, और इसी लोरी के साथ आपसे लेंगे अनुमति। शुभदात्री, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान आसमान वाले ने चाहा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहार है गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गंज 89.6 FM। ये गुंडा ही नहीं, अब है हमारे और आपके।

0: हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति
1: और मैं आपकी होस्ट आयुषी,
0: और ये है पर्दा। और आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर केस माना जाता है। एक ऐसा केस जिसे पूरी दुनिया ग्रीन रिवर सीरियल किलर के नाम से जानती है।
1: नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसका कनेक्शन किसी नदी से है।
0: और सच में है, इस केस का नाम उसी नदी से पड़ा जहां पहली बार कुछ लाशें मिली थी। ग्रीन रिवर जो अमेरिका के सिएटल इलाके के पास बहती है।
1: तो क्या यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी?
0: हाँ, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 15 जुलाई 1982। सिएटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के किनारे कुछ लोगों को पानी में बहती हुई कुछ लाशें दिखाई पड़ती हैं।
1: और जाहिर है कि ये किसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य रहा होगा।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। लोगों की निगाह जैसे ही इस मंजर पर पड़ती है वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही वक्त बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है और पहचान की प्रोसेस शुरू की जाती है।
1: तो क्या उस लाश की पहचान हो पाई थी?
0: हाँ, जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह लाश 16 साल की लड़की जिसका नाम था वेंडीली कोफील्ड।
1: ओह, सिर्फ 16 साल? इसका मतलब अभी तो उसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी।
0: और किसी ने उसे खत्म कर दिया। फिलहाल जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लड़की के साथ पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था।
1: यानी कि ये तो साफ साफ एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था।
0: हाँ, पुलिस तुरंत ही इस केस को प्रायोरिटी देती है और सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन कई हफ्तों की जांच के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग मिल ही नहीं पाता।
1: हाँ, और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है जब कोई क्लियर एविडेंस ना मिले।
0: बिल्कुल, लेकिन इस केस की असली खौफनाक बात अभी सामने आना बाकी था।
1: मतलब
0: करीब एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को उसी ग्रीन रिवर के इलाके में तीन और लाशें बरामद होती हैं।
1: तीन और?
0: हाँ, और ये तीनों भी महिलाओं की लाशें थी जिनकी उम्र लगभग 17 साल 23 साल और 31 साल बताई जा रही थी।
1: तो अब तो पुलिस को शक होने लगा होगा कि ये किसी सीरियल किलर का काम है।
0: बिल्कुल, लगातार मिलती इन लाशों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सिएटल और उसके आसपास के इलाके में कोई ऐसा इंसान जरूर घूम रहा है जो महिलाओं को ही अपना निशाना बना रहा है।
1: और यहीं से शुरू हुई वो इन्वेस्टिगेशन जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे लंबी और खौफनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन बन गई।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन तीनों लाशों का भी पोस्टमार्टम करवाया और जो रिपोर्ट में सामने आया उसने सबके दिल को झकझोर के रख दिया।
1: क्या?
0: तीनों महिलाओं की हत्या का तरीका लगभग वही था जैसे 16 साल की वेंडीली का केस था।
1: यानी कि इन तीनों हत्याओं का एक ही पैटर्न था।
0: बिल्कुल, जांच में पाया गया कि इन तीनों के साथ भी पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई।
1: तो अब पुलिस के लिए ये साफ संकेत था कि शायद ये एक सीरियल ऑफेंडर का काम हो सकता है।
0: और मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस पहले से मिले मामलों को समझने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच उसी इलाके में नदी के आसपास तीन और महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं।
1: मतलब अब कुल कितनी लाशें हो गई होंगी?
0: उस समय तक लगभग 7 लाशें।
1: सिर्फ कुछ महीनों में 7 हत्याएं? ये तो पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा दहशतगर्द होगा।
0: बिल्कुल, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर किसी और को नहीं फीमेल्स को टारगेट कर रहा था। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में डर का माहौल फैल रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो गई। और भी तेज हो गई। पुलिस पर भारी दबाव बढ़ने लगा और जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
1: और जब कोई स्पष्ट सबूत ना हो तो इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।

0: था।
1: हाँ, लेकिन उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था।
0: तो फिर क्या वजह थी जो पुलिस ने उसे सस्पेक्ट माना?
1: एक्चुअली हुआ क्या था, एक परिवार ने पुलिस को बताया था कि जिन लड़कियों की लाशें मिली थीं, उनमें से एक लड़की को उन्होंने ट्रक में बैठते हुए देखा था, और अगले दिन उसी तरह का सेम ट्रक गैरी रिजवे के घर के सामने खड़ा था।
0: यानी शक की एक छोटी सी कड़ी गैरी तक पहुंच रही थी।
1: इसी वजह से गैरी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने गैरी समेत कई सस्पेक्ट के सीमन सैंपल को भी लिया और उन्हें विक्टिम के शरीर से मिले सैंपल के साथ फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी भेजा था।
0: और क्या कोई मैच मिला?
1: नहीं, किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल उन विक्टिम से मिले सैंपल से मैच ही नहीं हुआ।
0: यानी कि अभी भी पुलिस के पास गैरी के लिए कोई भी सबूत नहीं है।
1: सबूतों की कमी और फॉरेंसिक मैच ना होने की वजह से गैरी सहित सभी सस्पेक्ट को रिहा कर दिया गया।
0: और शायद उसी समय पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो जाने दे रहे हैं आगे चलकर वही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक किलर निकलेगा।
1: और यहीं से ये मामला और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का नाम बार बार घूम घूम कर पुलिस के सामने पहले ही आ चुका था।
0: पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पर फिर भी एविडेंस की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया जा रहा था। और अब गैरी लियोन रिजवे, ये नाम बुलाना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है।
1: खैर, हाँ सही कहा, ये नाम हिस्ट्री के उन पेजेस में शामिल हो गया है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। खैर, गैरी लियोन रिजवे, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहा राज्य में हुआ था।
0: उसका परिवार कैसा था? लेकिन
1: गैरी के पिता ट्रक ड्राइवर थे। स्कूल खत्म होने के बाद गैरी ने अपने स्कूल गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी।
0: तो मतलब शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी।
1: ऊपर से दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर अंदर कुछ और था।
0: अंदर क्या था?
1: ऊपर से जितनी नॉर्मल जिंदगी दिख रही है गैरी की, अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। गैरी ने यूनाइटेड स्टेट नेवी ज्वाइन कर ली थी और उसे वियतनाम वॉर में भी भेज दिया गया था।
0: वियतनाम वॉर, यानी कि उस समय के सैनिक के भी मन में इसका गहरा प्रभाव रहा होगा।
1: सही कहा, वियतनाम में रहते हुए गैरी का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। बताया जाता है कि वह वहाँ अपना ज्यादातर समय अलग अलग सेक्स वर्कर्स और महिलाओं के साथ बिताता था।
0: तो फिर इसका असर तो उसकी शादी पे भी पड़ा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जो कि काफी आक्रामक और गलत होता। लगातार झगड़े, खराब रिश्ते की वजह से एक साल के अंदर ही उसकी पहली शादी टूट भी जाती है।
0: और उसके बाद
1: पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद 1973 में गैरी ने दूसरी शादी कर ली।
0: दूसरी शादी, अब ये किससे?
1: उसकी दूसरी पत्नी का नाम था मार्सिया लोरेन ब्राउन।
0: तब फिर क्या ये शादी उसकी सफल रही?
1: नहीं, ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बताया जाता है कि गैरी का जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहा, अपनी पत्नी के साथ काफी कठोर, काफी हिंसक और काफी खराब।
0: यानी उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर लगातार खराब होता जा रहा था।
1: बिल्कुल, और आखिरकार 1981 में उसकी दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है। और इसी के लगभग एक साल बाद यानी कि 1982 में गैरी रिजवे ने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे आगे चलकर उसे अमेरिका का सबसे फेमस और खतरनाक सीरियल किलर में शामिल कर दिया गया।
0: यानी वही समय जब ग्रीन रिवर के आसपास लाशें मिल रही थी।
1: बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक कई महिलाओं के मर्डर होने लगे और उनकी लाशें अक्सर ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में मिलती रही।
0: लेकिन पुलिस गैरी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही थी?
1: सबसे बड़ी एक ही वजह है ना, एविडेंस की कमी।
0: यानी एविडेंस की कमी से बार बार कातिल भटक रहा था और आजाद दुनिया के सामने घूम रहा था।
1: बिल्कुल, और शायद उसके बिहेवियर पे भी किसी ने अभी तक नजर ही नहीं दौड़ाई थी।
0: हालांकि तुमने अभी बताया था कि 1982 में उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा भी गया था, वो कैसे?
1: सही कहा, उस समय जब एक परिवार ने आकर बताया था तो उसे सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा जरूर गया था, बट क्योंकि उस वक्त की फॉरेंसिक सैंपल्स में उसका नाम, उसका एविडेंस कहीं मैच ही नहीं हुआ तो उसे जाने दिया गया।
0: फिर भी वो बचा कैसे?
1: क्योंकि उस समय की डीएनए टेक्नोलॉजी आज की तरह इतनी एडवांस नहीं थी। जो सैंपल पुलिस के पास थे उनसे गैरी के खिलाफ कोई पक्का मैच ही नहीं हुआ और यही वजह थी कि गैरी खुला छूट गया। और मुझे लगता है ना, गैरी को खुला छोड़ना ये पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था।
0: जब कोई कातिल ऐसे खुलेआम घूमेगा और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और हत्याएं

0: करने के लिए।
1: अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला था?
2: आगे आगे लाशें मिलती जा रही थी, तब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के बैकग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया और वहाँ एक पैटर्न दिखाई पड़ता है।
1: पैटर्न? कैसा पैटर्न?
2: ज्यादातर पीड़ित ऐसी लड़कियां थीं जो या तो घर से भागकर आई थीं, या सेक्स वर्क में शामिल थीं, या फिर जिनका कोई परिवार नहीं था या परिवार से लगभग कम संपर्क बाकी था, यानी कि ना के बराबर।
1: यानी कि किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनकी गुमशुदगी शायद तुरंत नोटिस में ना आए।
2: बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोई नहीं लिखाता, उन्हें ढूंढने कोई नहीं आता, और यही किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये ख्याल आया और उसी की वजह से उन्होंने उन इलाकों में नजर रखना शुरू की जहां पर सेक्स वर्कर्स काम करते थे, उनके ऊपर निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हीं के बीच में कोई ऐसा सुराग मिलेगा या फिर वो व्यक्ति सामने आएगा जो इन हत्याओं के पीछे है और ये केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
1: तो क्या फिर कुछ पता चला?
2: हाँ, इसी निगरानी के दौरान एक दिन पुलिस की नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
1: क्या हुआ था?
2: पुलिस ने देखा था कि गैरी रिचवे एक सेक्स वर्कर के साथ बेहद ही आक्रामक तरीके से उलझा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार वह उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार कर रहा था और स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही थी।
1: तो फिर पुलिस ने तुरंत जाके इंटरफेयर तो जरूर किया होगा।
2: हाँ, पुलिस ने वहीं गैरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए फिर से थाने ले गई।
1: क्या इस बार पुलिस को गैरी के खिलाफ कोई सबूत मिला या फिर इन हत्याओं के पीछे का कोई सबूत?
2: चीजों को देखते हुए एक बार फिर से गैरी को सस्पेक्ट माना गया और इस बार एक बहुत ही लंबी पूछताछ भी की गई। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया।
1: अच्छा, पॉलीग्राफी यानी कि वो टेस्ट जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है?
2: सही कहा, इसी टेस्ट से व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट एंड अन्य फिजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इनकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई पड़ता है।
1: तो क्या इस टेस्ट से गैरी के खिलाफ कुछ सामने आया?
2: नहीं, गैरी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक था और उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया।
1: यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे दी उसने।
2: बिल्कुल सही कहा, और इस बार फिर से पुलिस के हाथ खाली थे।
1: यानी कि पुलिस को इस बार भी उसे रोकने के कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले।
2: बिल्कुल, इसी वजह से गैरी को फिर से छोड़ दिया गया।
1: और यही वो मोड़ आता है जहां शायद ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था।
2: गैरी को अब पूरी तरह से यकीन भी आई थिंक हो चला था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। रिहा होने के बाद गैरी ने अपने अपराध बंद नहीं किए, बल्कि वह पहले की तरह और भी महिलाओं को निशाना बनाता रहा।
1: और हर बार वही पैटर्न दोहराता था क्या?
2: लगभग। हत्या के बाद वह अक्सर लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
1: और पुलिस को बार बार सिर्फ एक ही चीज मिलती, वो थी लाश।
2: बिल्कुल, इसी वजह से मीडिया ने इस अननोन किलर को एक नाम देना शुरू कर दिया
1: और वही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया,
3: द ग्रीन रिवर सीरियल किलर।
1: इतने सारे शक होने के बावजूद भी पुलिस गैरी तक नहीं पहुंच पा रही थी।
2: हाँ, और इसी दौरान उसकी जिंदगी जो ऊपर से एकदम सामान्य दिख रही थी, उसी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। 1985 के आसपास गैरी एक और महिला को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम था जूरियत माउसन। बाद में वही उसकी तीसरी पत्नी बनती है।
1: यानी बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी लग रही थी।
2: बिल्कुल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद गैरी का सेक्स वर्कर के पास जाना बंद नहीं हुआ और इसी दौरान वह लगातार महिलाओं की हत्या करता जा रहा था। हत्या का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसे कहा गया ग्रीन रिवर टास्क फोर्स।
1: मतलब पूरी दुनिया की टीमें मिलके सिर्फ एक सीरियल किलर के पीछे हाथ धो के पड़ गईं,
2: जिनका अब सिर्फ एक ही टारगेट था, उस किलर तक पहुंचना जिसने इतनी महिलाओं की हत्या की है। इस टास्क फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लोगों से पूछताछ की, इलाके की जांच की, संभावित सस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जो सीधे हत्यारे तक पहुंच सके।
1: फिर पुलिस ने क्या किया?
2: एक बार फिर सस्पेक्ट की नई सूची तैयार की गई और इस बार फिर से इस लिस्ट में नाम था गैरी रिचवे का।
1: यानी कि अभी भी पुलिस को गैरी पे शक था।
2: हाँ, और इस बार पूछताछ के दौरान पुलिस ने गैरी के बाल और सलाइवा का सैंपल भी लिया था, लेकिन उस समय जो फॉरेंसिक टेक्निक्स उपलब्ध थी उससे पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली।
1: और नतीजा वही हुआ,
2: गैरी को एक बार फिर से छोड़ दिया गया
1: और यही उसकी आजादी को आगे लेके गई और लोगों के लिए ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हुआ।
2: सही कहा, गैरी अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से महिलाओं को निशाना बनाता जा रहा था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन पुलिस अभी तक उस किलर तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वक्त आता है साल 2001 का। तब तक गैरी पर शक तो था ही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।
1: 2001 यानी तब तक लगभग कितनी लाशें मिल चुकी होंगी?
2: शायद 50 से ज्यादा।
1: 50 लाशें, वो भी एक आदमी ने मारे थे?
2: और अभी तो इसकी गिनती बाकी है।
1: अच्छा, आगे बताओ, आगे क्या हुआ?
2: दरअसल पुलिस के पास 7 अप्रैल 1987 को लिया गया एक पुराना सैंपल मौजूद था। 2001 तक डीएनए टेक्नोलॉजी भी आगे हो चुकी थी, काफी विकसित हो चुकी थी, और वहां पर ये सैंपल मैच किया गया।
1: यानी कि वही पुराना एविडेंस फिर से जांचा गया?
2: हाँ, और इस बार डीएनए टेस्ट ने गैरी रिचवे को सीधे इन हत्याओं से जोड़ दिया। इसके बाद 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फाइनली इसके खिलाफ कोई सबूत तो मिला, लेकिन क्या गैरी ने अपना जुर्म को एक्सेप्ट किया?
2: नहीं, गिरफ्तारी के बाद गैरी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही, कई महीने गुजर गए, लेकिन गैरी मुंह नहीं खोल रहा था।
1: लेकिन आखिरकार सच सामने आया कैसे?
2: काफी समय के बाद गैरी ने पुलिस के सामने एक शर्त रखी।
1: शर्त?
2: हाँ, उसने कहा कि वह अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट करेगा, हर मामले की जानकारी भी देगा, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
1: यानी कि वो पुलिस के साथ डील करना चाहता था?
2: बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने ये शर्त मान भी ली, क्योंकि उस समय इन मामलों का सच जानना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद गैरी ने जो कबूल किया उसने सबको निशब्द कर दिया।
1: अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने?
2: उसने कहा कि उसकी पहली हत्या 1982 में थी, उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाता रहा और अक्सर उनकी लाशों को ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों में फेंक देता था।
1: तो फिर अभी तक लगभग कितनी लाशें थीं, उसको याद था ये?
2: उसने कहा कि उसे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो 70 से 90 के बीच हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है।
1: ओह माय गॉड, यानी 70, 80 और 100,
2: या फिर उससे भी ज्यादा।
1: आगे क्या हुआ फिर?
2: फिलहाल के लिए जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 48 विक्टिम की पहचान करने में सफलता मिली।
1: और आखिरकार अदालत ने फैसला क्या दिया?
2: अदालत ने गैरी रिचवे को 48 अलग अलग हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सबूत मिटाने और अपराध के लिए भी दूसरी सजा शामिल थी।
1: और उसे कभी पैरोल नहीं मिलेगा?
2: हाँ, अदालत के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह जा रहा है, एक साधारण सा सीधा साधा दिखने वाला आदमी एक खतरनाक सीरियल किलर आखिर बना कैसे?
2: और तुम्हारे इस सवाल का जवाब शायद उसके बचपन में छिपा है।
1: बचपन में छुपा है मतलब?
2: रिपोर्टर्स के अनुसार गैरी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां घर का वातावरण बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उसके पिता अक्सर ट्रक ड्राइवर के रूप में लंबे सफर पर रहते थे और परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
1: कहा जाता है कि घर का माहौल बच्चों पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है।
2: सही कहा, और ऐसी परिस्थितियों ने गैरी के बिहेवियर और उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। समय के साथ उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता दोनों बदलते गए, और वही बदलाव आगे चलकर उसे इस रास्ते पर ले गए जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना डाला।
1: और शायद यही वजह है कि आगे चलकर वो बच्चा इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर में से एक था।
2: बिल्कुल, गैरी रिचवे की कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अध्ययन मानी जाती है। इस खौफनाक केस पर समय समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और टीवी अडैप्टेशन भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच और उसके अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं।
1: और यही थी कहानी द ग्रीन रिवर किलर की, एक ऐसा मामला जिसने कई सालों तक पूरे अमेरिका को दहशत में रखा।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर के एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो। आज की रात हम आपको सुना रहे हैं मेक्सिको की तीन बेहद डरावनी कहानियाँ जिन्हें लोग आज तक सच मानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जो इस रात की सबसे रहस्यमयी कहानी है। ये कहानी हमें ले जा रहा है मेक्सिको के एक पुराने शहर ग्वाल राजा की ओर। करीब 1800 के दशक में एक छोटा सा शहर था। पत्थर की गलियां, पुराने चर्च और रात होते ही फैल जाने वाला गहरा सन्नाटा। लेकिन उसी समय शहर में एक अजीब सा डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि रात में कोई रहस्यमय प्राणी लोगों का पीछा करता है। कुछ दिनों बाद शहर के बाहर खेतों में एक आदमी की लाश मिली। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर से लगभग सारा खून गायब था। लोग डर गए। कुछ दिनों बाद फिर एक और लाश मिली और फिर एक और। हर बार एक ही अजीब बात सामने आती, शरीर में खून नहीं होता। धीरे धीरे शहर में एक शब्द फैल गया, वैम्पायर। लोग रात को घरों से निकलना बंद करने लगे, दरवाजों पे क्रॉस लगाने लगे और चर्च में प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक अजीब आदमी को देखा। बहुत पीला चेहरा, काली आंखें और बेहद तेज नजर। वो हमेशा रात में दिखाई देता और सुबह होने से पहले गायब हो जाता। आखिरकार एक रात कुछ लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। लोगों को यकीन था कि वही वैम्पायर है। डरे हुए लोगों ने एक पुरानी मान्यता का सहारा लिया। कहा जाता था कि अगर वैम्पायर के दिल में लकड़ी का खूंटा घोंप दिया जाए तो वो हमेशा के लिए मर जाता है। लोगों ने वही किया। उस आदमी को जमीन में लिटाया और उसके दिल में एक बड़ा लकड़ी का खूंटा घोंप दिया। फिर उसे उसी जगह मिट्टी में दबा दिया। शहर में धीरे धीरे मौतों का सिलसिला रुक गया। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि जहाँ वह खूंटा गड़ा था, वहाँ जमीन से एक छोटा सा पौधा उगाया। धीरे धीरे वो पौधा एक बड़े से पेड़ में बदल गया और लोग कहने लगे, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये उसी लकड़ी के खूंटे से उगा है जो वैम्पायर के दिल में घोपा गया था। शहर में फिर डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा इस पेड़ को काट देना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये पेड़ काट दिया गया तो वो खूंटा टूट जाएगा और तब शायद वो वैम्पायर फिर से जिंदा हो सकता है। आज भी मेक्सिको के उस शहर में वो पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं वैम्पायर का पेड़। और कई लोग कहते हैं कि रात के समय जब हवा उस पेड़ की शाखाओं को हिलाती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई धीरे धीरे जाग रहा हो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आज की इस गहरी और रहस्यमयी रात में हमने आपको सुनाई मेक्सिको की तीन बेहद डरावनी कहानियाँ। मेक्सिको एक ऐसा देश जो सिर्फ रंग बिरंगे त्योहारों और संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी लोक कथाओं और आत्माओं की कहानियों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी चलती है, आत्माओं की दुनिया। कई पुराने शहरों में आज भी लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी पुराने घर की खिड़की अपने आप खुल जाती है। कहीं

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यही कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट। अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल। पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हजारों तो हुई आदेशा, ना बहु सुर्खी मेरी नकली है तमाम, भले है दिन जो हजारों तो हुई आदेशा। ओ दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर
0: क्या